0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे, वही खाएंगे।
2: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाह बता हम कहां जाएं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति से खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

Chao.

0: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
0: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412111111
2: TNC अप्लाई।

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकोंग पीओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
5: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
6: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
5: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
7: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
5: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री

0: भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों की

0: दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह है, एक नई एनर्जी है, एक नया हफ्ता है और एक नई ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। दिस इज मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपने ट्यून इन कर लिया है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। प्रोग्राम का नाम है बिंदास मॉर्निंग। एक नए सफर की शुरुआत हो गई है। श्रोताओं, कैसे हालचाल है? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक होंगे और एकदम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत फैबुलस तरीके से कर चुके होंगे बहुत सारे लोग। और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज है 15 जून। बच्चों की छुट्टियां कैसे सेलिब्रेट हो रही हैं? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे चलना चाहिए। एक बेहतरीन सुबह है, एक बेहतरीन मॉर्निंग है, तो इस बेहतरीन मॉर्निंग में एटलीस्ट कुछ तो बेहतरीन सा होना चाहिए। और आज का विचार बहुत ही प्यारा आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज की सुबह, वो ये है कि देखिए भैया, सीरियसली ना हमें अक्सर उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिनका काम बोलता है। लोग तो बहुत बोलते हैं लेकिन ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से बंदे को कितना सीरियस लेना है। फिलहाल मैं भी भैया यहाँ पर बोलने आ गया हूँ, बोलने का है मेरा काम, क्योंकि आर जी आनंद है मेरा नाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मंडे की मॉर्निंग में आप सभी को करेंगे हाथ जोड़ के प्रणाम। थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो करेंगे आपसे ढेर सारी बात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल करते हैं आज के सफर की बेहतरीन शुरुआत एक बहुत ही फैंटास्टिक गाने के साथ। इस गाने के बाद लौट कर आएंगे तो करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है 9837896896। इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का, तो फटाक से मैसेज करो और अपने दिन की शुरुआत आरजे आनंद के साथ थोड़ी सी हैपनिंग वाली, थोड़ी सी ब्यूटीफुल वाली वाइब के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक खूबसूरत गाना इसी के साथ करते हैं आज की बेहतरीन शुरुआत। एक बेहतरीन ट्रैक है और इस गाने के साथ हम भी कहते हैं आपको मंडे की सुबह है। और अगर आप भी कुछ बेहतरीन सा शुरू कर रहे हैं आज की सुबह, तो बस उस सुबह को जो है पूरे दिन की एक्टिविटी में एनरोल रखिए, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी आपकी सुबह होती है ना, वही पूरे दिन आपकी रहती है। और आज की मॉर्निंग शो पे बहुत सारी बातें खास हैं, थोड़ी देर में आपको पता लगेंगी। आप कहीं में जाइए, अच्छे गाने और अच्छी बातें सब कुछ लेकर आ गया हूँ आपके लिए। 10 बजे तक मेरा और आपका साथ बना रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो दिल से कहिए जियो बिंदास।

मुझको हुई न खबर, मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: वेलकम बैक है जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, अच्छे गानों के साथ जब अच्छी शुरुआत होती है तो सुबह अपने आप ही अच्छी हो जाती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6। ये है मंडे की बेहतरीन सुबह, 15 जून है। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं क्योंकि आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, और बिल्कुल आपका दिल हमारे पास और हमारा दिल आपके पास है, क्योंकि ये कनेक्शन है दिल से दिल तक का। जी हाँ श्रोताओं, आज क्या स्पेशल है, आज क्या खास है, आज की तारीख को क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं आज अंबेडकर की गलियों में। आज अंबेडकर में कुछ स्पेशल है, मतलब क्या स्पेशल है, हम हर दिन आपको कुछ ना कुछ स्पेशल सुनवाते हैं। खाने पीने की बातें होती है, लजीज पकवान की बात होती है, हर शहर में कुछ ना कुछ स्पेशल चल रहा होता है, और आपको कहीं ना कहीं ढेर सारी जानकारियां भी मिल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो एक स्कीम, एक योजना चल रही है, एक जनपद एक डिस्ट्रिक्ट की योजना के अंतर्गत जो खूबसूरत चीजें आपके साथ साझा की जा रही है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन। जी हाँ श्रोताओं, इसके माध्यम से आपको ढेर सारी तरह तरह व्यंजनों की इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम्स के जरिए मिल रही है, तरह तरह की चीजें आपको मालूमात हो रही हैं, कहाँ कौन से शहर में क्या फेमस है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, तमाम तमाम जानकारियाँ जो आपकी सुबह को और भी बहुत ही खूबसूरत बना रही है। और आज की सुबह हम आपको लेके जाने वाले हैं अंबेडकर नगर, वहाँ क्या फेमस है। अगर आप कभी गलती से भी वहाँ पहुँच जाएं या कभी आप अपने काम के सिलसिले में जाएं तो अंबेडकर नगर जाके आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। कौन सी चीज़ है वो इस प्रोग्राम के जरिए पता लगेगा। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। थोड़ी सी देर में वापस आता हूं, करूंगा आपसे ढेर सारी बात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
1: देश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: आपकी अपनी आरजे ईशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अम्बेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास करके इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोयन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: घोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़ कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन है, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिए में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है। अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अंबेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए। यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
7: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
1: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते हैं आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
0: अंबेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
1: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
0: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
1: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
0: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोल कर, मरोड़ कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
1: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
0: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
1: लाल गन्ने की गोटी ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़क गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
0: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
1: अब बात करते हैं रोजगार।
0: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC योजना, सरकार का उद्देश्य साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: लेकिन RJ, सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ये जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है।
0: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान,
1: यानी अब चाट के ठेले से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने RJ जी, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान न रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
1: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
0: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता की असंगति, स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
1: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
0: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
8: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। तो शिका, आप चले?
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय
1: बाय।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

बहुत ही बेहतरीन गाना यार, इतने अच्छे गाने सुन के मैं आपको सच बता रहा हूँ कहीं जाएंगे यार, सुबह तो अच्छी हो जाएगी। वेलकम बैक ही वंस अगेन, ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर, कुसुम जी का लिखती है, आनंद जी सुप्रभात, हर हर महादेव, आपका प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगता है और आज सुमवती अमावस्या की सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास रेडियो वाला आनंद को, गुड मॉर्निंग, और आपकी बातें बहुत ही पॉजिटिव लगती हैं सर। हाई दिस इज मी प्रियांशु, हाई प्रियांशु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। राजीव जी का मेरे पास मैसेज पहुंचा है, राजीव जी लिखते हैं, आनंद जी हम तो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं और आपके मस्त गाने सुन के अपनी सुबह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग, आई एम गुड आई एम गुड। ये मेरे पास मैसेज आया है सुप्रिया अग्रवाल का, मैसेज करती है गायत्री नगर से, लिखती है सुबह सुबह अगर आप थोड़ी सी भी शुरुआत अगर पॉजिटिव होके करो, एक छोटी सी शुरुआत पॉजिटिव होके करो तो यकीन मानिए आनंद जी पूरा दिन और पूरा दिमाग दोनों ही आपके स्वस्थ हो जाते हैं, मतलब दिन भी आपका स्वस्थ हो जाता है और दिमाग भी, वाह वाह, मतलब दिन अच्छा हो सकता है दिमाग स्वस्थ हो सकता है ना, शायद आप कहना चाह रहे होंगे। एक संदेश हमारे पास पहुंचा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग लवली पीपल, हाउ आर यू। देखिए पीपल बहुत ही अच्छे हमारे, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग पीपल, मुरादाबाद की ऑडियंस बहुत ही प्यारी है। एंड अभी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:57, 8:57 हो गए, मंडे की सुबह है, थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे अपनी फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी को। यस चेक योर लक विद डॉक्टर राखी, कुछ जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837 8968 9, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको अपनी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, स्टूडेंट लाइफ या अपनी पढ़ाई करियर शादी, व्हाटएवर, जो भी आपको जानना है, आपको कुछ भी अगर जानना है तो प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी योर नेम योर क्वेश्चन एंड थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एस्ट्रोलॉजर, अगर आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को कर देंगे हम छू मंतर। श्रोतों आज 15 जून की तारीख है, अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, हर दिन का इतिहास बहुत ही होता है खास, क्या कुछ खास आज के इतिहास में है डेफिनेटली आपको बताते हैं। श्रोता साथियों आपको बता दें, हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होता है हर दिन की तारीख में, और आज की तारीख क्यों खास है चलिए आपको बता दें, आपको बताते चलें 15 जून आज ही के दिन सन 1908 में कोलकाता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। श्रोताओं आज ही के दिन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप,

0: और श्रोताओं, आपको बताते चलें, आज के दिन भारत और चीन ने पुराने सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था सन 2006 में। आज ही के दिन और आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने पहली बार जो है प्रकाश का विस्फोट करने की जो है बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी आज ही के दिन श्रोताओं। आज के दिन सन 2008 में। और आपको बताते चलें, एक और खास चीज आज के दिन को बहुत ही स्पेशल बना देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, हर दिन की तारीख बहुत ही स्पेशल होती है और हर दिन का इतिहास बहुत होता है खास। आज ही के दिन जी किशन रेड्डी जी का जो है जन्म हुआ श्रोता। और आज ही के दिन लक्ष्मी मित्तल, जो भारतीय उद्योगपति हैं, सन 1950 में उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। एंड आज ही के दिन आपको बता दें, सुरैया जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका है, 1929 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज का दिन और भी तमाम सारी बातों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। के हब्बार जी का भी जन्म हुआ सन 1911 में, जो प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे श्रोताओं। और आज ही के दिन देवी प्रसाद राय चौधरी, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार जो ये रही, आज के दिन इनका जन्म हुआ एंड सन 1899 में। बाकी आज ही का दिन और तमाम सारी चीजों के लिए भी बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 1995 में मोनिका बत्रा जी का भी जन्म हुआ, जो राष्ट्रीय मंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय टेबल टेनिस सितारों में से एक है। उनका भी आज ही के दिन जन्म जो है सेलिब्रेट किया जाता है जन्मदिन श्रोताओं। तो चलिए, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपके साथ साझा करी। और अभी और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ साझा होती रहेंगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे जरा सी देर में। लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, बिकॉज स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 9।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: कहा मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय,
6: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: बिल्कुल जी, मंडे टू सैटरडे ही आपके साथ आपके रेडियो पर होते हैं, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुरादाबाद की दाल का तड़का और एफएम रेडियो का ये आरजे आनंद लड़का हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। क्या गंदा जोक मारा है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? देखिए, हमारा जो नेक्स्ट आर है वो शुरू हो गया है। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है, यानी स्टेशन क्लॉक में वक्त हो रहा है 9:01:12। आज 15 जून की सुबह हो गई है 2026। पता नहीं चल रहा भाई साहब कैसे कैसे जो है आगे रफ्तार के साथ जो है ये समय और ये महीना निकलता जा रहा है हमारे हाथों से ब्रो। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से थैंक यू वेरी मच इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही प्यारे और बहुत ही फैबुलस मैसेजेस आपने कर दी हैं आज मंडे मॉर्निंग में। तीन बातें जो आपके दिन को बहुत ही पावरफुल बना सकती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकती हैं, बहुत ही खास बना सकती हैं। लेकिन उससे पहले आज का एक और थॉट ऑफ द डे, दिस इज मंडे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का एक डोज ऑफ द डे डेफिनेटली होना चाहिए। तो आज का डोज ऑफ द डे यही है यार कि देखो, अक्सर ना हम कोई भी काम शुरू करने से पहले बस सबसे पहले लोगों के बारे में सोचते हैं। यू नो, थिंक अबाउट चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग अगर मैंने ये चीज़ करी तो यार मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे, मेरे नेबर्स क्या कहेंगे, मेरे यू नो फ्रेंड्स क्या कहेंगे, और इन चार लोगों के बारे में इतना सोच लेते हैं मेरे भाई कि हम अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, मतलब उनके चक्कर में जो है ना, मतलब पीछे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि नहीं भाई, बस इन्हीं को सोचो, इन्हीं के बारे में सोचो, जैसे कि हमारा फ्यूचर इन्हीं के हाथ में। ना ना ना ना मन्ना, ये नहीं करना है भाजी। दीदी जी, समझदार हो आप, हैं चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है। आपका करियर, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपके डिसीजन, फिर चार लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जो करना है आपने करना है। देखो, चार लोगों को साइड रखो, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है ना, आप कुछ बड़ा करोगे, बड़ा रॉक मचाओगे, यकीन मानिए यही चार लोग आके क्लैपिंग करेंगे आपके लिए एकदम चौड़े में बता रहे हैं हम आपको सच्चाई के साथ। तो इसी बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम भी भैया अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे सफलता हाथ लग रही है, आपको भी जरूर मिलेगी। उसके लिए बस आप अपने मन को साफ रखिए, अपनी नीयत को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ऊपर वाले का शुक्राना कीजिए और हाँ अपने माता पिता को भी जरूर जो है थैंक्स करते रहिए क्योंकि सब कुछ तो माता पिता की देन है ना यार। चलिए जी ऐसी अच्छी बातों के लिए अब क्या कहना चाहिए, बढ़िया गाना होना चाहिए यार, बंदी अच्छी चीजें बातें अच्छा मतलब लड़का अच्छी बातें करने लगा, लग रहा है मैच्योर हो गया हूँ मैं आजकल, समझदारी की बातें कर रहा हूँ। चलो जी एक अच्छा सा क्वेश्चन भी है मेरे पास जिसका जवाब आपने मेरे को व्हाट्सएप करके देना है। एग्जैक्टली नंबर 9837896896 इस नंबर पे आपने क्या करना है व्हाट्सएप करना है, कब करना है और कितनी देर में करना है, बस मैं भी लौट कर आता हूँ तब आपने करना है। उससे पहले तमन्ना भाटिया राइट हियर एक बहुत ही बेहतरीन गाना, हाँ मधुबंदी की आवाज, सचिन जिगर का म्यूजिक, बाहों को दीजिए इसलिए टूटा ये बेहतरीन गाना। इसी के साथ करेंगे आज के मंडे मॉर्निंग की किक स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन आनंद विद यू, गुड मॉर्निंग।

क्या बात है यार, यार घना कसुत्ता तो मन्ने आपका मैसेज भी लग रहा है भैया। इतने अच्छे अच्छे सोने सोने मैसेज कर रहे हो यार, मतलब मजा ही आ रहा है आपके मैसेजेस की तरफ। जब हम ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मन ने जो है हमारा झूम निकली तैयार बैठा है। वेलकम बैक है सुप्रभात, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। शो चालू है बिंदास मॉर्निंग, और आपकी मॉर्निंग गुड नहीं पाजी, बिंदास होती है, क्योंकि आज आनंद का साथ जो होता है आपके साथ। आपका वार्म वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू झकास एंड फैबुलस मॉर्निंग शो। आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे संदेश के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। व्हाट्सएप करके आज की सुबह मेरे को बताना है आपने, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना टूटे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जरा दिमाग लगा किसके जवाब देना। ऐसी कौन सी चीज है जिसको भैया हम बिना तोड़े इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, मतलब बिना टूटे इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है भैया, जरा बताओ हमके। आज की सुबह हम आपसे पूछ रहे हैं मुरादाबादीज, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना टूटे आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं? थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी। चेक योर लक विद डॉक्टर राखी। कुछ अगर आपको पूछना है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, भैया पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसा बच नहीं पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, है ना, वो चीज अगर आपको जाननी है तो प्लीज आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर अपना नाम और अपना क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली मैं आपको इसका समाधान दूंगा आज मंडे की सुबह। थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे एस्ट्रोलॉजर को अपने साथ। बस वंस अगेन आपको कह रहे हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज डेफिनेटली व्हाट्सएप कीजिए। एंड अभी कुछ काम की बातें हम आपके साथ कर लेते हैं भैया। देखिए दुबई के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। दुबई में एक महिला ने पेश की है सच्चाई की मिसाल, लौटा दी है 39,000 रुपीज, एग्जैक्टली मतलब 39,000 रुपीज जो है उनके वापस कर दिए। एक्चुअली हुआ क्या है, दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला की ईमानदारी और उसकी अनजान महिला की सच्चाई की कहानी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है आज की सुबह, लोगों का दिल जीत रही है। हाँ जी, आपको बता दें पार्किंग मतलब पार्किंग के दौरान कार पर एक मालूम एक छोटी सी मतलब मामूली सी खरोच आई, जिसके लिए एक भारतीय महिला ने एक दूसरी महिला को जो है

कि अपने मुरादाबाद में बिजली विभाग की चेकिंग करने के लिए टीम जो है अब घर घर पहुंचेगी। बहुत जो है ना दिक्कतें शिकायतें आ रही थी, तो अब जरा सतर्क और सावधान हो जाइए, आपके घर पे भी ये टीम पहुंच सकती है। एंड बी केयरफुल, वैसे कोई जरूरत नहीं है आपने डरने की, क्योंकि भाई कोई गलत काम नहीं कर रहा है, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चौड़े में जो है चेकिंग करवाइए, कोई इशू नहीं है। पाजी, जो भी आपकी क्वेरीज है आप उनको बताइए, जो भी आपको मालूम करना है, जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपके सवाल जवाब है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इंटरनेट के बारे में एक बहुत ही फैबुलस खबर जरा सी देर में लेकर आऊंगा, जरा सी देर में एक और इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचेगी। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। दिस इज बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे कहना चाह रहे हैं बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो बिना तोड़े आप यूज ही नहीं कर सकते, भाजी इस्तेमाल ही नहीं हो सकता उसका, वो कौन सी चीज है जो बिना टूटे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता है तो बस व्हाट्सएप कर दो मन्ने 9837889689 पर। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर राइट हियर। एक बहुत ही अच्छा गाना निकाल रहा हूँ, आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है यार, तो इसी गाने के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड चेक में एक अच्छा सा गाना सुनते रहे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: फिरो तू। किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं सांस अटक रहे
1: मंदी फिरो तू। देख देख शीशा शर्मांदी फिरो तू। मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो तू।
2: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर।

0: इन ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
1: कॉल 8826213131।
2: एक बहुत ही फैबुलस ट्रैक निकाल रहा हूँ साहब। देखिए क्या होता है ना कि सुबह सुबह जब अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं तो पूरा दिन बढ़िया हो जाता है, नो डाउट है ना। अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा ही जाता है। और मेरी भी कोशिश होती है कि अच्छे गानों से आपकी सुबह को बेहतरीन बनाया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आइए जरा शुक्राना करते हैं ऊपर वाले का और अपनी अर्जियां लगाते हैं इस बेहतरीन गाने के साथ।

0: क्या सॉन्ग है यार, पूरे सॉन्ग मंडे की सुबह। यकीन मानिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तब याद रखिए और यकीन रखिए ऊपर वाला हमेशा आपके साथ होता है। जब ऊपर वाले को आप अपनी दुआओं में याद करते हुए चलते हैं ना, अपने साथ हर पल उस एनर्जी को महसूस करते हैं, तो आपके सारे लिफ्ट जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। यह है आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। ना शिकायत ना गिला, बस तेरा शुक्रिया मेरे मौला। चलो जी, शुक्राना कीजिए उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु को, उस खुदा को, उस परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, जिसने आज की बेहतरीन सुबह देखने का मौका दिया है। दोस्तों, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:24, यानी 9:24। थोड़ी देर में हम एस्ट्रोलॉजर को अपने साथ जोड़ेंगे। आज बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है एंड उस पे ढेर सारे मैसेजेस आए हैं आप लोगों के, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे मैसेज कर रहे हो यार आप, थैंक यू सो मच। मैंने पूछा है आपसे, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना तोड़े आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ढेर सारे मैसेज आ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हाय, माय नेम इज शिखा एंड द राइट आंसर इज नारियल। लो भाई, क्या बात है, वैसे हो सकता है नारियल भी सही बोला आपने। एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, हाय दिस इज मी शिफाली एंड आनंद, दिस इज द राइट आंसर अखरोट। ओ भाई, अलग ही जा रहे हो आप। मैसेज आ गया मेरे पास यहाँ पर, हाय मेरा नाम सुधांशु है, हाय गुड मॉर्निंग। ये मुझे मैसेज करते हैं दिल्ली रोड से, लिखते हैं आनंद जी मैं आपको सच बताऊं, जो आपने सवाल पूछा है ना उसका सही जवाब है पिगी बैग, यानी कि गुल्लक। मैंने बचपन में इतने पैसे जमा किए और जब तक उसको तोड़ता नहीं था ना, मेरे से पैसे नहीं निकलते थे भाई। तो मतलब मैंने गुल्लक जो होती ना पिगी बैग, उसको तोड़ तोड़ के पैसे निकाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुल्लक को बिना तोड़ा पैसे नहीं निकाल सकते हो यार। वैसे बात तो सही कही है भाई तूने, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसे कांड बहुत किए हैं अपने बचपन में। नहीं, मुझे कोई पागल नहीं बोलता था, मतलब ये था किसी को पता ही नहीं चलता था, मेरे को जितने निकालने होते थे मैं निकाल लेता, बट मैं तोड़ा नहीं हूँ यार पिगी बैग को। तो किस आटे की हाथ लगा, आने वाला ये गाना बादशाह का, ये लड़की पागल है, पागल है। भाई लड़कियां बहुत समझदार होती हैं यार, पैसे जुड़ती हैं। चलो जी, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए, बहुत मजा आ रहा है, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। डेफिनेटली अभी और मैसेज को हम शामिल करेंगे। आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पर। यह है मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग। आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुरादाबादी, दिमाग चलाओ, सही वाला जवाब बताओ। जरा सुनते हैं इनका वॉइस नोट, हमारे रेगुलर लिसनर है भूपी शर्मा जी, क्या कह रहे हैं आज।
1: नमस्कार, राधे राधे। दुनिया के प्यारे दोस्तों, आपको भूपी शर्मा का नमस्कार। मैं नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जिसे बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है, तो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए आरजे आनंद के साथ बिंदास मॉर्निंग में। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, वॉइस नोट नंबर 9838968096। इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी आप लोग वॉइस नोट नहीं भेजते हो, प्लीज़ भेजिए वॉइस नोट, सुनाइए अपनी आवाज़ सारे शहर को और सारे देश को। नमस्कार, राधे राधे।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपकी इस अपील के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं भाई, थैंक यू सो मच। 9:27 हो गए जी, आनंद के साथ हैं आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। बीते दिनों आपके मोबाइल पर तेजी से अचानक से एक अलार्म की आवाज आती होगी ना, एक पॉपअप मैसेज होता है, एक मैसेज जब आता है आता है तो आपके फोन पे एकदम से ना ड्रोम बोलने लगता होगा ना ऐसे एकदम से। बट आपको बता दें भैया, अभी कुछ दिनों तक जो है सबके मोबाइल पे ये नोटिफिकेशन आ रहा था, मतलब एक अलर्ट मैसेज आ रहा था बेसिकली, है ना, एक आपदा का मैसेज था कि भैया अगर कोई भी बारिश या कोई भी ऐसी आपदा होने वाली है तो उससे पहले आपको एक अलर्ट मैसेज आ रहा था, वो सबके पास आ रहा था, मतलब एक ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को जो है अभी फिलहाल रोकने का फैसला किया गया है कि अभी जो है इस मैसेज को थोड़ा सा रोका जाएगा, मतलब ये जो मैसेज आपके पास आ रहा था अभी फिलहाल के लिए इसे रोक दिया जाएगा। आपको बता दें अभी जो हम 4G 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बताया जा रहा है कि 5G के बाद अब भारत में टेलीकॉम कंपनी ने 5.5GB की तैयारी कर ली, यानी कि 5G से अब सीधा 6GB की ओर बढ़ेंगे। ओ माई गॉड, मतलब मुझे लग रहा भैया ये जो सिलसिला है ये तो भैया लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी कहां हम 2G 3G उसके बाद 4G पे आए, 5G पे आ गए, अब 6G पे आ रहे हैं, भाई साहब तरक्की कर रहा भैया अपना भारत। चलो फिलहाल ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग खबरें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन के माध्यम से। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, जहां सुन रहे हैं आपके शहर का अपना मॉर्निंग मैगजीन शो। और भैया देखिए हम तो आपको वही इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो कहीं ना कहीं आपके डेली काम में आती है, आपके रूटीन को जो है थोड़ा सा स्पेशल बनाती है। अभी तीन बातें अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हो तो आप इनको डेफिनेटली अपनी लाइफ में एड ऑन कीजिए, बहुत आपको जो है काफी चीजों से फायदा मिलने वाला है। वो कौन सी तीन बातें हैं डेफिनेटली पता लगेगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम सीधा चलते हैं लेकर आपको कहां पर एक गाने की ओर। उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपको सीधा लेकर चलेंगे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी के पास, जो आपको ढेर सारी रेमेडीज बताने वाली हैं आज की सुबह। एक बेहतरीन गाने से करेंगे एक और बेहतरीन वाइब की शुरुआत। वरुण धवन का एक गाना, आलिया भट्ट साथ में कायरा अडवाणी, अरिजीत सिंह की आवाज, प्रीतम का म्यूजिक, बहुत ही प्यारा गाना, फर्स्ट क्लास सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं मैं और आप। आप जहां भी जा रहे हैं, दिल्ली रोड है या कार्ट रोड या है आप स्टेशन रोड, आपको ऑल द वे बेस्ट।

morning. हाँ कसम से, बाकी सब लाइफ में फर्स्ट क्लास वाली एनर्जी को मेंटेन रखा करो भाई। टेंशन सबकी जिंदगी में है ब्रो, यस ये मंत्र अपनाओ और आनंद को ऐसे ही सुनते जाओ। देखो ये है मंडे मॉर्निंग और यहाँ पर आज हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना टूटे इस्तेमाल हो ही नहीं सकती है, मतलब बिना तोड़े आप उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। ये सारे मैसेज आ गए हैं, थैंक यू सो मच यार। बाकी सब मेरी लाइफ में भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 9:33। कुछ ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ अपनी आज के स्पेशल सुपर गेस्ट को लेकर।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: चावला टायर्स
5: पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
6: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
7: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: TNC अप्लाई।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
10: से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
11: चलो जी अब एड ब्रेक का हो गया है यहाँ पर एंड, और अभी हमारी और आपकी बातें शुरू होती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई देखो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो इन तीन चीजों को अपनी लाइफ में जरूर ऐड कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन तीन चीजों से पहले आइए ऐड करते हैं हमारी आज की सुपरस्टार यानी कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को। उनका वार्म वेलकम करेंगे। आज यहाँ पर मंडे की मॉर्निंग है और आपको पता है हर मंडे में हमारे साथ जुड़ती है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी जी, जो आपके फ्यूचर के बारे में ढेर सारी बात करती है एंड आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है। आइए उनको लेकर आते हैं अपने साथ।

0: वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मंडे की सुबह होती है तो ये मंडे डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट हो जाता है, जब पॉजिटिविटी का तड़का लगता है। और जब पॉजिटिविटी का तड़का लगाने को स्पेशल गेस्ट आ जाए शो में, तो और भी आनंद ही आनंद आ जाता है। वार्म वेलकम करेंगे हमारी आज के स्पेशल गेस्ट का। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर वाई राखी जी, इनके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं। वेलकम बैक ही मुरादाबादी, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इनसे बात कर रहे हैं। हेलो जी, जय माता दी, कैसे हैं राखी माँ? वेलकम।
1: बढ़िया बढ़िया, कैसे हो आज आनंद?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, और आपकी आवाज सुनी तो और डबल बढ़िया हो गए। फैंटास्टिक हो गया है मंडे।
1: वेरी गुड, मेरा भी बिल्कुल यही है। तुम्हारी आवाज सुन के फुल ऑफ एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ आज की अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: क्या बात है राखी माँ, मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। मेरे पास अभी पहला क्वेश्चन आया है मुरादाबाद की रामगंगा विहार से, इनका नाम श्रुति झा है। ये मुझे पूछती है कि आनंद जी, अपने पूरे हफ्ते को एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें ऐसा मंडे को कि हमारा पूरा हफ्ता अच्छा रहे? ये राखी माँ से पूछिएगा।
1: महादेव की पूजा करने से पूरा हफ्ता अच्छा रहता है, मैनिफेस्ट करने से पूरा हफ्ता अच्छा रहता है, माँ की सेवा करने से पूरा हफ्ता अच्छा रहता है, पॉजिटिव सोचने से पूरा हफ्ता अच्छा रहता है।
0: वेरी नाइस। और एक दीपक जी हैं, इनका मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर रामपुर से, इन्होंने लिखा है कि क्या हम कोई चीज अगर पॉजिटिव में लिखते हैं, मतलब पॉजिटिविटी में लिखते हैं और हम उसको प्रेजेंट में लिखते हैं, तो क्या वो पूरा हो जाता है?
1: तो क्या वो पूरा हो जाता है, क्वेश्चन गलत है, वो पूरा हो चुका है।
0: ओके,
1: वही होता है।
0: तो मतलब एक बारी आप थोड़ा सा बता दीजिए राखी माँ, कि जो लोगों को नहीं पता कि हम कैसे उसको लिख सकते हैं, यू नो।
1: फॉर एग्जांपल, आरजे आनंद की शादी होनी है और आरजे आनंद आज रात से लिखना शुरू करे हरे रंग के पेन से व्हाइट कलर की डायरी पर कि मेरा विवाह हो चुका है, मैं विवाह के बाद अपने परिवार के साथ बहुत सुखी से रह रहा हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर जा रहा हूं और मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूं, मैं अपनी शादी पर इस कलर की शेरवानी पहनूंगा और मैं अपनी शादी पर अपनी पत्नी को ये तोहफे में और गिफ्ट में दूंगा, अपने दोस्तों को ये खिलाऊंगा। मतलब उससे जुड़ी हुई हर बात को लिखते जाओ, ये होगा, ये होगा, मैं इस रंग की घोड़ी पर बैठूंगा, मैं घोड़ी पे बैठूंगा कि रथ पर बैठूंगा, मैं अपनी शादी कहाँ पर करूंगा, किस बैंकेट हॉल में करूंगा, बस सोचते चले जाओ, होता चला जाएगा।
0: ओके, और उसको लिखते चले जाओ मैनिफेस्ट।
1: यस,
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सो एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है, ये रितु जी आपको जय माता दी बोल रही है, और साथ में वो लिखती है कि आज सोमावती अमावस्या है, हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे?
1: आज की सोमावती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज पुरुषोत्तम मास भी संपूर्ण हो रहा है, पूरी जानकारी देना जरूरी है। आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है कि आज आप महादेव की पूजा करें और जो लोग आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मनपसंद चीजें दान करें खाने की, और आज जितना हो सके उतना ज्यादा आप महालक्ष्मी की रात्रि में पूजा करें, क्योंकि आज दिन जो है ना वो समर्पित है हमारे पितरों को, लेकिन जो रात है ना वो समर्पित है महालक्ष्मी को। तो कनक धारा स्रोत्र का पाठ करें और हो सके तो घर में हवन करें।
0: क्या बात है मैम। एक क्वेश्चन और आया है कि हम अपने फाइनेंस स्टेटस को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं आज के दिन कुछ अच्छा करके?
1: जो दोगे वही पाओगे, पैसा दान करो पैसा पाओगे, फाइनेंस अच्छा होगा, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, महालक्ष्मी की पूजा करो, कमलगट्टी की माला पर उनका जाप करो।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक लकी कॉलर को थोड़ी देर में लेकर आते हैं, वापस आपके साथ जुड़ेंगे राखी माँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप भी प्लीज ट्यून इन रहिए। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, वेडिंग लाइफ के बारे में, यू नो फाइनेंस के बारे में, जो भी आपके क्वेश्चन है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, शादी नहीं हो रही है, कारोबार खोला था बट अच्छे से चल नहीं पा रहा है, स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, आगे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है लाइफ एक जगह पे आके रुक गई है आनंद, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जो भी आपके क्वेश्चन है यार, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन आस्क मी। प्लीज व्हाट्सएप कीजिए आज की सुबह 9837896896 पर। डॉक्टर वाई राखी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अभी भी, और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली प्लीज व्हाट्सएप कर दो। वंस अगेन बता रहा हूं अपना नंबर 9837896896। इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर, आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं गूगल पे, डॉक्टर वाई राखी के नाम से आपको मिल जाएंगी। 9:39 स्टेशन क्लॉक में मंडे की सुबह, आपकी मंडे मॉर्निंग को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाने के लिए अच्छे गाने और अच्छी बातें और अच्छे लोगों को लेकर आता रहता हूं जी। आने वाला एक बेहतरीन गाना, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मंडे की सुबह, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
3: बिंदास मॉर्निंग,
4: बिंदास। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मंडे की सुबह। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मुरादाबादीज, आप चाहे दिल्ली रोड हो या कार्ट रोड या हो, आप स्टेशन रोड या आप जा रहे हैं गागन की तरफ या हैं आप जीरो पॉइंट पे, अगर आप कहीं पर भी आपको लग रहा है हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम है तो ये अपडेट आप मुझे बता सकते हैं कॉल करके 9837896896 पर। देखो आप तो बसड़ में फंस गए, कोई और ना फंसे, है ना, कर भला तो हो भला यार। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 जून की सुबह है, पॉजिटिविटी के साथ निकलिए घर से बाहर, क्रॉस योर फिंगर, अच्छा सोचिए, लाइफ में अच्छा होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वाया राखी जी, एस्ट्रोलॉजर। मैंने कहा था अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज इमीडिएटली कॉल कीजिए। एक लकी कॉलर मेरे साथ जुड़ गई हैं, आइए जरा आप उनकी बात मैम से करा देते हैं क्या पूछने वाली है। हेलो, जय माता दी, वेलकम बैक है राखी माँ एक बार फिर से आपका स्टेशन पे। और
6: जय माता दी, माँ
7: जी, जय माता दी। बेटा क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम ललिता कश्यप है।
7: क्या पूछ रहा है ललिता?
6: मैम आपने मेरे को मंडे के फास्ट बताए थे, मैं मंडे के फास्ट रख रही हूँ और एक जगह से मैं एक एंजॉय में जुड़ना जा रही हूँ, मेरे को ट्रेनिंग में जाना है, तो आप मुझे बताइए मेरे लिए वो अच्छी है या मतलब बच्चों को छोड़ के जाना जा रही हूँ मैं, क्या रहेगा मेरा
7: बच्चों को?
6: मैं लखनऊ मैम, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग है।
7: कोई बात नहीं, आजकल वीडियो कॉल से बच्चों को देखते रहना, कई बार अपने बच्चों के भले के लिए उन्हें छोड़ना भी पड़ता है, अच्छा रहेगा।
6: अच्छा मैम, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल पा रहा बिल्कुल भी, बहुत परेशानी में हूँ माता रानी।
7: आप उनको बोलिए हर मंगलवार हनुमान जी के व्रत रखना शुरू करें, जैसे आप सोमवार के रख रही हैं, और व्रत नहीं रख सकते तो मंगलवार के मंगलवार हनुमान मंदिर जाए, ठीक है?
6: जी मैम, अब मैं जैसे ट्रेनिंग में जाऊंगी मैम, वहाँ पे मंडे का फास्ट नहीं हो पाएगा मेरा।
7: आप भगवान का उद्यापन कर देना, आप जो भी व्रत आएगा तब उस पर सोमवार सोमवार का।
6: जी मैम,
7: ओके,
6: जय माता दी मैम,
7: जय माता दी, ऑल द बेस्ट,
4: थैंक यू सो मच। ओके राखी माँ, अब जाते जाते कुछ ऐसी रेमेडीज जो आज इतनी बड़ी अमावस्या है, इतना बड़ा दिन है, अगर आप कोई मैसेज सर्कुलेट करना चाहें, कुछ बताना चाहें जाते जाते आप।
7: सबसे पहली बात, घर को पॉजिटिव रखिए, घर में लुबान का धुआं दीजिए, आज अपने हाथ से दान जरूर करिए, हो सके तो 33 मालपुए आज दान करें, मालपुए पूरे पुरुषोत्तम मास में हमें दान करने थे, अगर नहीं किया तो कम से कम आज जरूर कर दीजिए। और किसी भी मंदिर में आज एक तुलसी का गमला लगा, जिनका विवाह नहीं हो रहा वो केले का पेड़ किसी मंदिर में लगा कर।
4: मैम एक मैसेज मेरे पास आया है कि हमारे पास गंगा जल नहीं है तो क्या हम हरिद्वार भी नहीं जा पाएंगे, तो हम आज कैसे नॉर्मल पानी
7: किट पर गंगा जल मिलता है? प्लीज आरजे आनंद, ऐसी बातें कहने के लिए लोगों को मना करो, अपने घर के आसपास ब्लिंकेट करो, गंगा जल
4: सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मैसेज लास्ट आया है कि मेरे हमारे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाएं तो उनका पढ़ाई में और मन लगे, हम क्या कराएं आज?
7: इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डालूंगी, वो जरूर देखें और फिलहाल आज बच्चों को लेके मंदिर जरूर जाएं।
4: क्या बात है, थैंक यू सो मच राखी मैं, इतना टाइम आपने निकाला, लवली टॉकिंग टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं,
7: खुश रहो आरजे आनंद, गॉड ब्लेस,
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू राखी मां, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, आप लोग फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर वाया राखी जी को, बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग एंड पॉजिटिविटी इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन से भरपूर इनका इंस्टाग्राम होता है, सो प्लीज फॉलो कीजिए डॉक्टर वाया राखी के नाम से, आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। एंड डोंट डू दिस यार, देखो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है कि उन्होंने बताया तो हमने नहीं करना है, आई गो ट्राई तो कीजिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, लेकिन यही चीजें करने से बहुत सारी चीजें एकदम छूमंतर हो जाती है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे पूछा था ऐसी कौन सी चीज है जो बिना तोड़े आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एंड इसके लिए ढेर सारे मैसेजेस आपने किए हैं, उसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच।
1: 9:48 हो गए हैं। एक अच्छा सा सवाल भी है मेरे पास जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं आज की सुबह हमारे शो के सुपरस्टार। बनना चाहते हो तो बस अभी लौट कर आ रहा हूँ लेकर अपना एक बढ़िया सा क्वेश्चन, उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक आज मंडे मॉर्निंग में निकाल दिया मैंने, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा गाना है, ऐसी स्कोर की आवाज एंजॉय करेंगे आप आनंद के साथ। तनिष बागची का म्यूजिक लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ में तनिष बागची भी साथ देंगे। मैंने भी इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी डाली है आज मंडे की सुबह, प्लीज चेक आउट कीजिए। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, प्लीज चेक आउट कीजिए, मजा आ जाएगा आपको आज की सुबह। चलो ये गाना सुनते फिर मिलते हैं।

0: सिमरन जा जी रहे अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।

0: Advice. तू कभी हारता नहीं है क्या?
1: मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है,
0: कुछ सर्वाइव करेगा?
1: जिंदगी भर लड़ेंगे,
0: ब्याह का तो पता है।

उर्वशी रतोला क्या लगी गाने में यार। ये है मंडी की सुबह। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वेलकम बैक हियर वंस अगेन। देखिए यार, समय का पता नहीं चल रहा बॉस, 9:56 हो गए यार। मैं आपको क्या बताऊं, पहले सवाल पूछूं या आज के दिन के बारे में बताऊं? फिलहाल अभी बात कर लेते हैं आज के वेदर के बारे में। आज का मौसम क्या कहता है जाने आली जनाबे आली। भैया देखिए, मौसम का जो हाल है ना, बहुत बेहाल है आज। मौसम है ना, मौसम काफी गर्म है। इस गर्म मौसम में आपको अपना छाता लेके निकलना है। मत निकलो छाता लेके, लेकिन इटलीज यार अपने स्किन का ध्यान तो रखना है ना। अभी फिलहाल करंट टेम्परेचर 33 डिग्री है यार। सोचो सूरज चाचू रुला के मारेंगे, हवाएं चल रही है 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से। एक ऑलरेडी भैया कदई अच्छी नहीं दिखा रहा है आज, ह्यूमिडिटी 54 दिखा रहा है। बाकी ये जो वेदर है ना, वेदर दोपहर होते होते और बढ़ जाएगा, आप सोच नहीं सकते इतना बढ़ जाएगा। हाँ मतलब गर्मी से आपका बुरा हाल हो सकता है आज। सूरज चाचू पूरे नहा धो के निकल चुके हैं, वो कह रहे हैं भैया आज जो आप मेरी नजरों से बच ना पाओगे, फिलहाल मेरे सवाल से भी नहीं बच पाओगे। आज मंडी की जुबाई का अच्छा कड़क क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा गाना है,

कौन से गाने का बीच का पार्ट बेसिकली प्ले कर रहा हूँ मैं आज मंडे की सुबह। इस गाने को आपने पकड़ना है, इस गाने का जवाब जो है आपने मेरे को लिख के बताना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पे 9837896896 पे। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, मंडे मॉर्निंग है। आप बताओ जो गाना चल रहा है वो कौन सा गाना है।

यही आपको बताना है जो गाना चल रहा है, ये कौन सा गाना। चलो फटाफट समझ में आएगी ना, फटाफट मैसेज करो मुझे 9837896896 पर, व्हाट्सएप करो, मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी और रिसर्च लेकर आता हूँ, फटाफट से इमिडिएटली लेकर आता हूँ रिसर्च निकाल के। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, आपके लिए अच्छा से गाना निकाल देता हूँ, तब तक फटाफट से इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और इस गाने के बाद ही आपको वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद को इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। बहुत ही फैबुलस ट्रैक मंडे की सुबह, जस्सी गिल।

0: भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी।
6: वेलकम बैक है, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते चलें, आज मंडे की सुबह है और तमाम सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं और आपकी हेल्थ के बारे में बात ना करें ऐसे कैसे हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें हर चीज की ना क्रेविंग्स हो जाती है। हम इंडियंस के सबसे ज्यादा फेवरेट है हमारी चाय, हर दूसरा पर्सन जो है टी लवर है, लेकिन ये जो चाय की चुस्कियां हैं ना भाई साहब, ये आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। अगर आप सुबह उठते ही चाय लेते हैं तो भैया आप चाय नहीं ले रहे हैं, आप अपने पेट को एसिडिटी को दावत दे रहे हैं। जी हाँ, खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसके साथ आप बिस्किट, रस, कुछ भी छोटा मोटा जरूर कुछ ना कुछ खाने का जो है अपने पास एक रखें बैकअप की। भैया अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ लेना है। खाली पेट उठते ही आपको खाली चाय, मतलब जो है चाय नहीं लेनी है, मतलब खाली पेट अगर मैं कहूँ तो चाय लेना आपके लिए भाई साहब खतरे से खाली नहीं होगा, है ना। और अगर आप लगातार बहुत ज्यादा चाय का सेवन करते हैं भैया, उठते ही चाय, ब्रश करने के बाद चाय, फिर उसके बाद आप फ्रेश हो रहे हैं उसके बाद फिर चाय, तो भैया ये बना सकती है आपके पेट में जलन का कारण। बैक टू बैक चाय पीने से दिक्कत हो सकती है एंड आपकी दिन भर की जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो ऊर्जा है, उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती है। अच्छी बात है, आपके लिए चाय एनर्जेटिक वाला डोज का काम करती है, लेकिन कभी कभी ये चाय आपको नुकसान भी बहुत सारी चीजों में पहुंचा सकती है। सुबह उठते ही हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप हल्का सा जो है पानी पिए, हल्का पौष्टिक आहार लें, चाय का आनंद डेफिनेटली आप उठाएं, लेकिन सबसे पहले गुनगुने पानी से अपने दिन की शुरुआत करें और तीन चीज़ों को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। उठते ही आपको मोबाइल नहीं देखना है, कोशिश करें कि आप उठते ही घंटा मोबाइल ना स्क्रॉल करें, क्योंकि जब आप मोबाइल चलाते हैं उसमें कुछ ऐसा आ जाता है जिससे आपका मूड खराब होता है, आपका मूड खराब होता है, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। दूसरा, आप उठने के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो है बॉडी अच्छी तरीके से रिचार्ज हो जाती है, आपकी जो है प्रोडक्टिविटी काम करने की बढ़ जाती है और पूरा दिन आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो आपका साथ देता है। तो पूरे दिन की अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और दूसरी और तीसरी और आखिरी बात यह है कि भैया जब आप उठें तो उठते ही जरा खुद को भी कॉम्प्लीमेंट दें यार, जरा खुद की भी तारीफ करें और कुछ बेहतरीन काम पूरे दिन में ऐसा जरूर करें कि जब आप बिस्तर पर जाएं तो आपको बड़ी मजेदार वाली नींद आ जाए। आज मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था मंडे की सुबह, मैंने कहा था आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से वाले गाने का बीच का पार्ट प्ले कर रहा हूँ।

यही आपको बताना है, व्हाट्सएप कीजिए ना फटाफट से अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। मैं बस अभी जल्दी से लौट कर आता हूँ और बताता हूँ कौन है हमारे आज के शो का सुपरस्टार। अगर आप भी मेरे सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज करो बस 9837896896 पर। सही जवाब अगर आप पहुंचा दोगे तो बड़ा मजा आएगा यार, हमें इंतजार है आपके मैसेजेस का, आपके मतलब सही जवाबों का यार। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है बिंदास मॉर्निंग 89.6 FM यानी मुरादाबाद शहर का अपना आपका सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से।

0: मैंने बहुत सारा डांस किया यार।
1: दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल।
0: क्या बात है,
1: दस बहाने करके ले गए।
0: आज मैं सुनो ये डांस मैं डाली दूं इंस्टाग्राम पे, तो देखना चाहते हो फॉलो करो ना, फिर अभी बताता हूँ। चलो जी इसी गाने के साथ,
1: करके ले गए दिल, ले गए दिल, दस बहाने करके।
0: विशाल दत्तानी के एंट्रान की आवाज, क्या बात है। आपका दिल तो मैं लेके जा रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग है भैया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने आपसे आज पूछा था और ढेर सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच, ये जोरदार तालियां। अब मंडे की शुरुआत इतनी अमेजिंग हुई है तो सोचो यार पूरा हफ्ता कितना बेहतरीन जाने वाला है। वेलकम बैक है, चलो मेरा जाने के समय हो गया। एक घड़ी की सुइयां ना मुझे इशारा करके कह रही है बेटा आनंद घर से बाहर नहीं स्टूडियो से बाहर निकल जाओ क्योंकि आपके समय हो गया है बच्चा। चलो यार फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपके मैसेजेस को पढ़ के जाऊंगा यार। देखो पहले मैंने पूछा था ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिना तोड़े आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अखरोट नारियल और पता नहीं पिकी बैग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्ला ब्ला आंसर आए मेरे पास, थैंक यू वेरी मच उन सभी जवाबों के लिए। आपके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर ताली बजा रहा हूँ। थैंक यू राज, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सा गाना आइडेंटिफाई करना था आपको, ये कौन सा गाना है, कौन सा बताना था आपने निकारू का नाम आपको मेरे को। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बिल्कुल बहुत ही फैंटास्टिक जवाब दिए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। लेकिन कोई एक होता है हमारे शो का सुपर डुपर वाला मॉर्निंग मैगजीन का सुपरस्टार, और आज का मेरे पास सबसे पहले सही जवाब आया है यहाँ पर। हेलो जी, मोहसिन अंसारी जी ने मुझे बनारस से सही जवाब दिया था, तो मोहसिन जी कंग्रेचुलेशन आज की सुबह आपने दिया है सही जवाब। क्या दिल ने कहा दिस इज राइट आंसर, जोरदार तालियां। साथ में सपना शर्मा एंड भूपी शर्मा जी ने भी सही जवाब दिया था आज की मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा जुड़ते हैं और इतने बढ़िया मैसेजेस करते हैं ना, सच बता रहा हूँ यार सुबह मेरी बड़ी गजब की कर देते हो आप लोग, आप लोगों की बातों से ना मजा आ जाता है यार। अब एक बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड मेरे पास ढेर सारे लोगों ने मैसेज किया था, हाई गुड मॉर्निंग जी, क्या दिल ने कहा का टाइटल ट्रैक था, भूपी जी थैंक यू वेरी मच। एंड राजा कश्यप जी मेरे साथ जुड़े थे चौराहा गली से, इन्होंने भी सही जवाब दिया था, थैंक यू राजा जी। एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा था, हाई बीबी राधिका जी ने एकदम सही जवाब दिया है मेरे को, थैंक यू सो मच। बहुत जरूरी यार, कमर हिलाते रहो फिट रहोगे। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाह हुसैन अंसारी जी लिखते हैं, आनंद जी आप कैसे हैं, और इन्होंने भी सही जवाब दिया था। रिजवान खान साहब जुड़े थे ग्राम बिजना से सही जवाब के साथ। एंड डॉक्टर सुरेश कुमार प्रकाश नगर से जुड़े थे, तेलंगाना से जुड़े थे हमारे साथ जयप्रकाश जी। एंड रेहाना जी मेरे साथ जुड़ी थी आज की सुबह रानी नांगल से। ललिता कश्यप जी ने भी एकदम सही जवाब दिया है, तारीफों के पुल बांधते हुए आगे बढ़ रही है। लक्ष्मी जी ने सही जवाब दिया है आज की सुबह, गुड मॉर्निंग आनंद भाई क्या हाल चाल है, आप तो पूरे मुरादाबाद पर छा गए हैं, अयो जी इतनी बड़ी बात करो भी। दीपक कपूर जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आपका प्यार है, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। दीपक जी रामगंगा बिहार से जुड़ते हैं दीपक कपूर जी। मयंक शर्मा आफ्टर लॉन्ग टाइम, हे मयंक भाई क्या हाल चाल, पीतल नगरी से जुड़ रहे हैं। ये लिखते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिना तोड़े इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी वाला नारियल अखरोट आदि, बिल्कुल हमारे साथ छप्पर वाली मस्जिद से। ये रहमत नगर से जुड़े हैं बाबू अंसारी साहब, लिखते हैं आपका संडे कैसा रहा, बहुत ही बढ़िया जी। मेरी सारी अपडेट अगर आपको जाननी है तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो भाई, सब बता देता हूँ वहाँ पे, सब डालता हूँ क्या कैसे जा रहा है। ये लिखते हैं राइट आंसर है नारियल, अरे वाह क्या बात है, वैसे हो सकता है। हमारे साथ जुड़े थे दुर्गेश सैनी जी, थैंक यू सो मच। और चमनलाल साहब जुड़े हैं पुतली घर रोड से। विकी सागर जुड़ चुके हैं रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर आपको भी। एंड अगला मैसेज आया था रेडियो वाला आनंद को प्यार भरा, गुड मॉर्निंग सर हम बड़े प्यार से आपका शो सुनते हैं, बड़े दिलो जान से आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया जनाब। ये सोनू जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट एवरीबॉडी। जाने का टाइम हो गया है, जल्दी लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आपके हिम्मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, नेक्स्ट कंपनी आप एंजॉय कीजिए खुशी के साथ। आरजी आनंद कहता है साइनिंग ऑफ, मंडे बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए, मस्त रहें, झकास रहें, फर्स्ट क्लास रहें, और पानी प्लीज पीते रहें यार, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पॉजिटिव अच्छी और बेहतरीन सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, और वो तो मैंने कर ही दी है यार, है ना। फिलहाल के लिए मस्त रहें, झकास रहें, बस एक ऐसी बात जरूर पूरे दिन में अच्छी जरूर करें किसी न किसी से, ताकि आपको रात को एक बढ़िया सी रिलैक्स वाली नींद आ सके। अभी के लिए बातों को देता हूँ विराम, कल फिर मिलूंगा स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बाय, टिल देन टुमारो मॉर्निंग हैव अ ग्रेट मॉर्निंग।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सर श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हाल चाल है आपके? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मंडे की सुबह, खुशी आपके साथ है। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जानती हूँ मैं। एंड इस समय मैं अभी स्टूडियो से, मतलब बाहर से स्टूडियो आ चुकी हूँ राइट नाउ। एंड वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:22 और तारीख है आज 15 जून की। एंड बहुत ही खूबसूरत सा डे मंडे का है। दोस्तों, नई उम्मीद, नई सुबह और एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आए खूबसूरत सा मंडे। कहते हैं ना, एवरी न्यू डे इज अ न्यू चांस टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज सुमावती अमावस्या भी है। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा पाने का ये पावन अवसर हमें सिखाता है कि जीवन से नकारात्मकता को हटाकर अपने मन में पीस, पॉजिटिविटी और ग्रेट एटीट्यूड को जगह दें। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड को जगह दें। एंड याद रखिए, सूरज हर सुबह ये नहीं पूछता कि कल क्या हुआ था, वो बस एक नई रोशनी लेकर उगता है। ठीक उसी तरह हमें भी हर दिन नई उम्मीद, नई मुस्कान और नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज अपने चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल रखिए, दिल में पॉजिटिव वाइब्स भरिए और खुद से बस इतना कहिए, टुडे इज माय डे, आई विल डू माय बेस्ट। मैं आपके साथ आपकी आरजी खुशी और अगले 2 घंटे तक आपके साथ रहने वाली हूँ, आपके दिन को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाने वाली हूँ। तो बस आप बने रहिए, चिपके रहिए ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। एवरीवन, मंडे की सुबह है और आज सुबह की शुरुआत करते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ, अरिजीत सिंह की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह मैंने सेलेक्ट किया है आप सभी के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। वैसे दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा और व्हाट्सएप करने के लिए नंबर मुझे आपको बताना होगा। नंबर है 9837896896। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप मुझे पता है कामों में व्यस्त है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि आप सुबह से इतना काम कर रहे हैं और पानी भी नहीं पी रहे हैं, गलत बात है। तो पानी पी लीजिए और ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
1: क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और ये है आपका अपना प्यारा सा सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ, जहाँ पर आप एवरीडे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सुबह 10 से 12 मेरे साथ, और मॉर्निंग में आप 6 बजे से रेडियो ऑन कर देते हैं। मुझे मालूम है कि आपके घर में जैसे आप उठते हैं और उठते ही आपका पहला जो माइंडसेट है वो यही रहता है कि सुबह उठते ही हमें रेडियो को ऑन करना है एंड उस पर खूबसूरत भजन आते हैं, और जब भजनों से दिन की शुरुआत होती है तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है, बहुत ही अच्छा बीतता है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं और हमारे जो माइंड में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो थॉट्स आते हैं, जो भगवान के प्रति आस्था है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा लगता है ना सुबह सुबह का इतना खूबसूरत सा वातावरण, चारों तरफ खूबसूरत सी हवाएं, हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और सुंदर सुंदर भजन, उधर किचन में खुशबू आती है अदरक वाली चाय की, ओए होए होए। बहुत खूबसूरत होता है मॉर्निंग टाइम, और जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं वो तो समझो लाइक गोल्डन मॉर्निंग दिखते हैं। जी हाँ, सुबह 4 बजे उठना एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ पाते हैं, लेकिन बहुत लकी होते हैं जो 4 बजे उठते हैं। दोस्तों, अगर आप 4 बजे नहीं उठते तो आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, और जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ मैम हम मॉर्निंग में कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, मैं आपसे कहती हूँ आप कोशिश करते रहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप पर, पूरा भरोसा है कि आप एक दिन अपने फिक्स टाइम पर ज़रूर उठेंगे। जब हम रेगुलर प्रयास करते हैं ना दोस्तों, तो हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और दोस्तों, आज 15 जून है और आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। हवाएं जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हर पल महसूस ज़रूर करते हैं, यही हवाएं जब स्वच्छ ऊर्जा में बदलती हैं तो हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाती है। विश्व पवन दिवस का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि वाइन एनर्जी यानी पवन ऊर्जा बिजली बनाने का एक स्वच्छ सुरक्षित और इको फ्रेंडली तरीका है। इसे ना धुआं निकलता है, ना प्रदूषण बढ़ता है और ना ही प्रकृति संसाधनों को नुकसान होता है। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है तो हमें भी छोटे छोटे कदम उठाकर इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। बिजली की बचत करें, ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करें और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। याद रखिए दोस्तों, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। दोस्तों, इस विश्व पवन दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, सेफ एनर्जी, सेफ नेचर एंड सेफ फ्यूचर, क्योंकि जब हवा स्वच्छ होगी तब जिंदगी भी स्वस्थ होगी और हमारा कल भी सुरक्षित होगा। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। अब चलते हैं खूबसूरत संदेशों की और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं और सभी भी सबरी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि और उनको इंतज़ार कराऊं। क्या पहुँचाए हमारे श्रोताओं ने, ज़रा उनके दिल की बातें भी हम जान लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले किनका संदेश हमें मिला है, ज़रा पढ़ लेते हैं उनका संदेश, क्योंकि सब इतने प्यार से मुझे मैसेज करते हैं। आई एम वेरी लकी। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं धनुरी तीरी वाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया एंड आयान बाबू, और ये कहते हैं खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, आपका हर पल खुशियों भरा हो।
सेम टू यू सर, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तो खुश भी ऑटोमेटिकली रहेंगे और ढेर सारी खुशियां आपके लिए खुशी भी लेकर आती है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू एंड प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बीबी आराध्या साहू जी का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें मिला है रहमत नगर छपर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शाद अंसारी, शारिक अली जी, महराज अंसारी जी। और इन्होंने एक खूबसूरत सी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे सर इसको प्ले करने की, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, और ये गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, और ये अपने पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम में को सुन रहे हैं, कार्यक्रम में जुड़े हैं और अपना आदाब हमें पहुँचाते हैं, आपको भी आदाब सर। नमस्कार भी पहुंचाते हैं एंड अच्छा लगता है जब इतने दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं।

लगता है कि हाँ अपने ही परिवार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और जब आप सब इतने खूबसूरती से इतने प्यार से हमें मैसेज लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत खुशी होती है हमें। तो दोस्तों इस खुशी को और ज़्यादा हम दोगुना बनाते हैं, इसको कैसे पता है आपको, एक खूबसूरत सा गाना हम आपको सुनवाते हैं आज की सुबह, बहुत ही खूबसूरत सा है एंड मुझे उम्मीद है कि ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत है, बस आप कहीं मत जाइए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को खूबसूरत बनाते रहिए। श्रोताओं ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और आप बताइएगा दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? सब ठीक है ना? उम्मीद तो हम यही करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा एंड आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, सब अपने कामों में व्यस्त होंगे क्योंकि मंडे की सुबह है और वीक का पहला दिन है। जब हफ्ते का दिन पहला शुरू होता है तो बहुत सारे काम भी होते हैं एंड बिजी होने के साथ साथ मुझे लगता है कि खुद के लिए भी वक्त निकालना बहुत जरूरी है। और जैसे अभी आप थोड़ा सा काम के साथ साथ रेडियो भी सुन रहे हैं, जब मनोरंजन होता है तो माइंड और भी ज्यादा फ्रेश हो जाता है एंड जब माइंड फ्रेश होता है तो सब चीजें बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं, राइट ना दोस्तों? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन आस्था, श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा एक बहुत ही पावन दिन है। आज बाबा नीम करौली कैंची धाम, नीम करौली महाराज जी के पावन कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौली महाराज जी को प्रेम, सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले महान संत माना जाता है। उनके भक्त केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हैं। लोग मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सेवा का भाव जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। कैंची धाम उत्तराखंड की शांत वादियों में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर यहां विशेष पूजा, भजन, कीर्तन, भंडारे और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, ईश्वर को हर इंसान में देखो। अगर हम अपने जीवन में प्रेम, दया, सादगी और सेवा का भाव अपना लें तो यही बाबा की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और दोस्तों, इस शुभ अवसर पर हम सब प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आप सभी को बाबा नीम करौली महाराज जी के आश्रम कैंची धाम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, समय में आपको बता देती हूँ, 10:53 हो गए हैं, 10:53 एंड हमारे पास खूबसूरत संदेश भी आए हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है खुशी मैडम जी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं कि खुशी जी कैसे हाल चाल है आपकी? सर मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमारे पास आया है काशी नगरी बनारस से मोहसिन अंसारी जी का और साथ में सरताज अंसारी जी भी हैं। कहते हैं तुम मुझे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारी तुलना किसी से भी नहीं कर सकता। तुम मुझे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारी तुलना किसी से भी नहीं कर सकता और किसी की भी तुलना तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि तुम सिर्फ एक चेहरा नहीं मेरे एहसासों का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम्हारी जगह मेरे दिल में किसी और के लिए कभी हो ही नहीं सकती। दुनिया में बहुत लोग खूबसूरत होंगे, बहुत लोग अच्छे भी होंगे, मगर तुम में जो बात है वो किसी और में कहाँ। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखों की वो मासूमियत, सब कुछ इतना अपना सा लगता है कि तुम्हें किसी मिसाल में बांधना गलत लगे। तुम मेरे लिए बस तुम हो और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत सी लाइनें आपने लिखी हैं सर, बट जिनके लिए लिखी है आपने उनका नाम नहीं लिखा है, ये गलत बात है। तो बताइएगा ये खूबसूरत सा जो मैसेज आपने लिखा है उनका नाम क्या है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का और सर भी इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग अपना पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग हमारी ओर से भी आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ।
क्योंकि जब आप सब अपना संदेश पहुंचाते हैं तो खुशी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर आजाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। साथ में इनके दोस्त भी हैं शाद अंसारी जी, और सर ने अभी एक ट्राई की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की सर, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। और श्रोताओं आप भी मुझे अपना मैसेज पहुंचाइएगा, नंबर है 9837896896। हम भी सब्र से इंतजार कर रहे हैं आपके संदेशों का, और हाँ कुछ सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले कुछ खूबसूरत गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे सवाल भी पूछेंगे और आप जवाब भी देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बस ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और इस खूबसूरत सी गर्मी में अपना ख्याल भी रखिए। अब आप सोच रहे होंगे खूबसूरत गर्मी क्यों बोल रही है खुशी, बताऊंगी आकर, थोड़ा इंतजार तो करो। आप चाहते हैं मैं एक बारी में सब कुछ बता दूं? ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। अभी इंतजार कीजिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया श्रेया घोषाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और इस खूबसूरत सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी मोहसिन अंसारी जी ने। और दोस्तों वक्त हुआ है 11:06 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और दोस्तों अब ऐसी खुशखबरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। जी हाँ दोस्तों, टीवी की मशहूर अभिनेत्री शुरभि ज्योति के घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। उनके घर में बेटी के आने से खुशियों ने जैसे दस्तक ही दे दी है। इस प्यारी सी खुशखबरी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं। और कहते हैं ना दोस्तों कि बेटियां घर का मान होती हैं, ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान होती हैं। जहां बेटियों की हंसी गूंजती है वहां खुशियां खुद ब खुद बस जाती हैं। एक बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वह अपने साथ प्यार, ममता, मुस्कान और अनगिनत उम्मीदें लेकर आती है। वह दो परिवार का सम्मान होती है और समाज की शक्ति भी है। और दोस्तों इसी खुशी के मौके पर हम सब भी एक संकल्प लें कि हर बेटी को प्यार, सम्मान, अच्छी शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देंगे। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं। जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तब परिवार, समाज और देश भी आगे बढ़ता है। शुरभि ज्योति और उनके पूरे परिवार को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर नन्ही परी को स्वस्थ, खुशहाल और उज्जवल भविष्य का हम उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सेलिब्रेट एवरी डॉटर बिकॉज एवरी डॉटर इज ए ब्लेसिंग्स। क्योंकि जो बेटियां होती हैं वो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती हैं, आशीर्वाद होता है। हर किसी के घर बेटियां नहीं होती हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं। और यहां पर खूबसूरत कुछ और भी संदेश आए हैं दोस्तों, उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं। और दोस्तों पता है जो फादर होंगे, जिनकी डॉटर होंगी, वो देखिएगा सुबह वो ऑफिस जाते हैं, शाम को थक हार कर जब घर पर आते हैं और प्यारी सी नन्ही सी डॉटर का अपना चेहरा खिलखिलाता हुआ देखते हैं, जब वो प्यार से बोलती है पापा आप आ गए, चॉकलेट नहीं लेके आए मेरे लिए, तो वो पापा की जो थकान होती है, जो परेशानियाँ होती हैं वो अचानक से ही सब दूर हो जाती हैं और चेहरे पर एक फ्रेश एनर्जी आ जाती है, एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। जब डॉटर प्यार से पापा का हालचाल पूछती है, उनको फटाक से एक गिलास ठंडा पानी लाकर देती है, तो अच्छा लगता है वो परिवार में इंतज़ार करना फादर साहब का। जैसे वो शाम को आने वाला, लाइक शाम को जैसे लगता है कि हाँ 5 बज चुके हैं, फादर साहब आने वाले हैं घर, तो बेटी पहले से ही इंतज़ार करती है। कभी दरवाजे पर वेट करती है, जाकर भाग कर देखती है कि पापा अभी नहीं आए हैं। कभी वो विंडो से झाँकती है कि पापा अभी तक नहीं आए, ओहो ये बाइक तो दूसरे अंकल की है, मुझे लगा पापा आए हैं। तो वो इंतजार, वो एक्साइटमेंट होता है बेटियां अपने पापा के प्रति करती हैं। और स्पेशली मैं भी खुद अभी भी मैं घर जाती हूँ, अब उल्टा हो गया। पहले हम पापा जी का इंतजार करते थे, अब पापा जी हमारा इंतजार करते हैं कि कब हमारी डॉटर घर आएगी। और जब मैं घर जाती हूँ सब इतना खुश हो जाते हैं, इतना हैप्पी माहौल हो जाता है हमारे घर का बहुत ज्यादा। और जब मैं आती हूँ तो फिर सबके चेहरे पर उदासी सी आ जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में अगर लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आगे बढ़ना होता है तो थोड़ा सा गिव अप करना पड़ता है। लेकिन हाँ, भले ही हम नजरों से दूर हैं लेकिन दिल से रिश्ते दूर नहीं होने चाहिए। हमेशा दिल में वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए और दूरियों से फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना साथियों कि दिल में प्यार होना चाहिए, तो वो प्यार हमेशा ऑलवेज
हमारा दिल में रहेगा अपने पेरेंट्स के लिए और आप सभी दोस्तों के लिए भी, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि खुशी जी हमें तो शामिल ही नहीं कर रही है, देखिए आप भी मेरे लिए बहुत मोस्ट हैं और बहुत सारी बातें हो गई है, थोड़ी सी इमोशनल भी खुशी हो गई है। तो चलो अभी ना हम एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक सुनने वाले हैं, उसके बाद हम आपसे और भी गपशप करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे एंड क्या कुछ और स्पेशल है आज वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और एक अमेजिंग ट्रैक आपके लिए। बस आप जब खुश होते हैं ना, मुस्कुराते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। एंड जो हमारी फीमेल्स हैं इस समय बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और जो आपने इतने खूबसूरत बालों का जो अपने जोड़ा बनाया हुआ है ना, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। हाँ, ऐसे ही खूबसूरत तरीके से आप जोड़े को, बालों को संभाल कर रखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मियों में ना खुले बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, इतने सारे काम होते हैं, घर काम को संभालें, बालों को संभालें, स्पेशली गर्मियों में तो बालों को फोल्ड करके रखते हैं तो थोड़ी सी राहत मिलती है और खूबसूरत भी लगते हैं, है ना, अच्छा लगता है ये लुक भी। तो आपने अगर जोड़ा बनाया हुआ है तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और हाँ, ये जो माथे में आपने बिंदी लगाई है ना, ओए होए, ये तो बड़ी सोनी है, बड़ी कमाल की लग रही है। बस आप ना ऐसे ही अपना ख्याल भी रखो और काम भी करते रहो, बाकी पानी भी पीते रहो। देखिए मैं भी थोड़ा सा आपको एक प्यारा सा ट्रैक सुनवाने वाली हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे और भी ज़्यादा। बस आप यूं ही चिपके रहिए, बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपने ये अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, हर हर गंगे, फ्रॉम द मूवी बत्ती गुल मीटर चालू से। और दोस्तों, आज का दिन आस्था, श्रद्धा और विश्वास का दिन है। आज है पावन सोमवती अमावस्या। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से श्रद्धालु माँ गंगा में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की यही तो सबसे खूबसूरती है कि यहाँ हर पर्व हमें सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि फ्रेश पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड का संदेश देता है। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों, मीठे व्यवहार और दूसरों की मदद करने में भी होता है। तो दोस्तों, आज के इस पवित्र दिन पर एक छोटा सा संकल्प लीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, प्रकृति की रक्षा करें और ज़रूरतमंद की मदद करें, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि माँ गंगा की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। एंड आप सभी को वंस अगेन हैप्पी सोमवती अमावस्या। और हमारे श्रोताओं के जो संदेश आए हैं एंड हमारे श्रोताओं ने भी शुभकामनाएं पहुंचाई हैं, तो उनका संदेश भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। आज की सुबह क्या क्या मैसेज हमारे पास आया है और कौन कौन अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, और ये कहते हैं जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और पितरों की शांति के लिए ये अत्यंत पुण्यदायी तिथि है और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो, आपने अपना संदेश हमें पहुंचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का मैसेज हमारे पास आया है और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बातें कही हैं कि खुद पर विश्वास रखिए क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज की मुश्किलें ही कल की सफलता की नींव हैं। एग्जैक्टली राइट, जब हम आज मेहनत करते हैं तभी तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा ना। आप चाहते हैं कि हम आज ही मेहनत करें और आज ही फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, सब चीज़ें जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होंगी, लेकिन उसके लिए इंतज़ार, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। गुड मॉर्निंग जिलारामपुर ग्राम की टाणा से मोहम्मद कामिल जी का, और इन्होंने एक शायरी लिखी है कि ये दिल धड़कता है तेरे लिए, ये दिल धड़कता है तेरे लिए, तू ही सब कुछ है मेरे लिए, बुरा ना मानो तो मुझे याद रखना, तू जिंदगी की कशिश है मेरे लिए। अरे वाह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। और भी लगातार हमारे पास खूबसूरत संदेश आ रहे हैं, हम उनको भी शामिल करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो यहाँ पर सुनने की रिक्वेस्ट हमें की थी बाबू अंसारी जी ने। ओल्ड है लेकिन गाना बहुत प्यारा है। आप सब इस गाने का आनंद लीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के इस बार।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। खुशी आपके साथ है, आपकी दोस्त, और लेकर आती है वो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि हम आपसे एक मज़ेदार क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। एंड दोस्तों, आज का छोटा सा फैमिली क्वेश्चन है, और आपको मुझे बताना है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा किसकी पसंद का खाना बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में सबसे ज़्यादा किसकी पसंद का खाना बनता है? मम्मी की पसंद का, पापा जी की पसंद का, बच्चों की पसंद का, या फिर हमेशा वही डायलॉग सुनने को मिलता है, जो बना है वही खा लीजिए चुपचाप। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो, घर में आपके किसकी पसंद का खाना बनता है। जी हाँ, आपके घर का फूड बॉस कौन है? बताओ बताओ बताओ जल्दी से, आप इतना मत सोचो, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप मुझे बताएं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा किसकी पसंद का खाना बनता है। फटाफट से व्हाट्सएप करो, नंबर है 9837896896। हम भी तो जाने आज आपके घर का फूड बॉस कौन है। व्हाट्सएप कीजिएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। और यहाँ पर कुछ और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी अपना मैसेज पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है गांव जलिया पलिताना गुजरात से, मधु भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, मधु भाई चौहान जी, जय श्री कृष्णा, तुम केम छो। और ये कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद दीदी, हमने एफएम मुरादाबाद में मैसेज किया है। हाँ जी, हमें शिकायत भी है, आप इतने दिन से कहाँ गायब हो गए थे, बताइएगा हमें। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड आरजी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीज जी का मैसेज हमारे पास आया है, और हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, एक से बढ़कर एक लाजवाब सॉन्ग सिलेक्शन, आरजे खुशी सिस्टर जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अजीत कसाना जी, माया देवी जी, और साथ में ऋदिक कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है, लदावरी जिला मुरादाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद अपना संदेश पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हाय गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग। ये राधिका का मैसेज हमारे पास आया है, राधिका आई एम फाइन, उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। एंड चलिए दोस्तों, कुछ और संदेश आए हैं वो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन मैंने आपसे मालूम किया है कि आपके घर में सबसे ज्यादा किसकी पसंद का खाना बनता है, आपकी मम्मा की पसंद का, पापा जी की पसंद का, या फिर आपकी पसंद का, बताइएगा कौन है आपके घर के फूड बॉस। अब इतना मत सोचिए, फटाफट से बता दीजिए, आज तो सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। चलिए अभी आप अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा, मैं आप तक एक खूबसूरत सा ट्रैक पहुंचाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा शानदार सा गाना है बी पराग जी की आवाज़ में। एंड इस ट्रैक को सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। यह है आपके अपने सिटी का नंबर वन सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना ख्याल भी रखिए, बार बार खुशी आपको रिमाइंड कराती है दोस्तों, और जब आप सब अपना ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही ख्याल रखा करो। और थोड़ा सा भी ना लापरवाही नहीं करनी है, थोड़ा सा भी आलस नहीं करना है आपको, ठीक है, पानी ढेर सारा पीते रहो और ये गाना सुनते रहो।
1: मैं कुछ बता रही है, यहाँ से आप अपने रास्ते

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: 22 सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
0: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
5: कॉल 8826213131।
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और दोस्तों एवरी मॉर्निंग मैं आपकी सुबह को बनाती हूँ और भी ज्यादा अमेजिंग। पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी मॉर्निंग को हैपनिंग बनाएं ताकि आप यूं ही मुस्कुराते रहें। और आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा फैमिली क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। आप मुझे बताइए कि आपके घर में सबसे ज्यादा किसकी पसंद का खाना बनता है? मम्मी जी की पसंद का, पापा जी की पसंद का, बच्चों की पसंद का, या फिर हमेशा वही डायलॉग सुनने को मिलता है, जो बना है जो बन जाए वही चुपचाप खा लीजिए। हाँ हाँ बताओ बताओ, कौन है आपके घर का फूड बॉस जो अपने ही चलाते हैं? और हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग से बहुत सारे मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको चाहती हूँ कि जल्दी से शामिल करूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि वक्त हुआ है 11:46। जी हाँ, 11:46 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैडम जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं राज टीचर विवेकानंद मुरादाबाद से। थैंक यू अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जितनी तारीफ करूं कम है, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा करती हैं आप। मेरे यहाँ पर एक बेटा का जन्म हुआ है हमारी भाभी जी को। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप चाचू बन गए हैं। और ये कहते हैं कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरी पसंद का खाना बनता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपके घर में आपकी पसंद का खाना बनता है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मोहसिन अंसारी जी बनारस से। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुजरात से, और ये कहते हैं मेरे घर में मेरी बीबी की पसंद का खाना बनता है। हाँ जी, जो भी बने चुपचाप खा लेते हैं हम तो। वैसे मैम के सामने ज़्यादा सर की नहीं चलती होगी ना? मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि वो अपनी मिसेस के सामने एकदम चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ये बात सत्य है। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है आपको हमारी तरफ से, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग लाइन पार से आकांक्षा कश्यप, सूरज कश्यप, गुड़िया कश्यप जी का मैसेज आया है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका शो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको प्ले करने की सर। एंड हमारे पास एक मैसेज और आया है यहाँ पर पिंटू सागर जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और इन्होंने भी एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है अरिजीत सिंह जी की, बहुत ही अमेजिंग वॉइस में प्यारा सा ट्रैक, तो दोस्तों सुनते हैं, तुमसे बेहतर तुमसे प्यारा यारा कोई नहीं। मैं लौट कर आती हूँ, बस आप यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आती हूँ कुछ प्यारे से गानों के उस पार।

0: हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, वक्त हुआ है 11:57। और दोस्तों, कहते हैं ना कि बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे कदमों से होती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह की सबसे प्यारी और यादगार झलक तब देखने को मिली जब पायलट की वर्दी पहने एक नन्ही सी बच्ची अपनी मासूम मुस्कान और पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर नजर आई। उसकी चमकती आंखें मानो ये कह रही थी कि आज का सपना कल की हकीकत बन सकता है। वह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी बल्कि नए भारत के सपनों, आत्मविश्वास और ऊंची उड़ान का खूबसूरत प्रतीक बन गई। दोस्तों, हम सभी बच्चों के सपनों को पंख दें, उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कौन जानता है, आज जो बच्ची पायलट की ड्रेस में है, मुस्कुरा रही है, वही कल सचमुच हजारों यात्रियों को आसमान की सैर करा रही हो। तो दोस्तों, आज का खूबसूरत संदेश यही है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें उड़ान देने वाला हौसला होना चाहिए। और अब मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। जाते जाते बस खुशी आपसे कहना चाहेगी कि आप भी जो करना चाहते हैं लाइफ में, जो आपका ड्रीम्स है, आप कर सकते हैं। बस आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और रेगुलर मेहनत कीजिए, क्योंकि जब आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो आप अपनी सफलता, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो आप कदम मत डगमगाइए, कदम डगमगाते हैं लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, धीरे ही सही लेकिन आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं। और हमारे पास एक और खूबसूरत सा मैसेज आया है संदीप सागर जी का, ग्राम सहल जिला मुरादाबाद से। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, मेरी पसंद का खाना मेरी वाइफ बनाती हैं। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गया। तुम दूर होकर भी पास हो और पास होकर भी सिर्फ मेरे दिल में रहती हो। अरे वाह, क्या बात है संदीप जी, बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने भेजा है अपनी मिसेज के लिए। आज तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। और आपको आपके जितने भी फेवरेट फूड हैं, जितने भी फेवरेट आपकी पसंदीदार चीज़ें हैं खाने में, वो सब आज आपको बनाकर खिलाने वाली हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब ने अपने संदेश हमें पहुंचाए। एक मैसेज और मुझे मिला है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हम आपका प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं, हम आपको सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपकी आवाज़ सुनकर, दिल को बहुत सुकून मिलता है। हम अपनी वाइफ का पसंद, अपनी वाइफ की पसंद का खाना पसंद करते हैं। हमारी वाइफ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, इतनी तारीफ कर दी है मैम ने। आज आपने मैम की इतनी तारीफ कर दी है ना, तो आज आपको डबल एक्स्ट्रा खाना मिलने वाला है फिर। थैंक यू सोनू कुमार जी, ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया हम कहना चाहेंगे आपको। और हाँ श्रोताओं, अपना ख्याल रखिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिए एंड अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने सीनियर सिटीजन का, जितने भी बड़े बुजुर्ग आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली में हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।
1: ब्रातिस्लावा पहुंचे, इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और GST के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज

0: डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चावला टायर्स
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। पिछले एपिसोड के बाद बहुत सारे कॉल आए, लोगों के मन में ढेरों सवाल है लेकिन ज्यादातर खुलकर बात नहीं करना चाहते, तो आज हम उसी जरूरी कम बोली जाने वाली बात पर सिर्फ चर्चा करेंगे, परिवार नियोजन। और आज हमारे साथ है आपकी हमारी समझदार और प्यारी टीकन भाभी।
5: नमस्कार दोस्तों, आरजे रीना ने मुझे फोन किया तो बोली, भाभी आज का मुद्दा बहुत जरूरी है, आपके बिना बात अधूरी, तो बस मैं चली आई।
4: शुक्रिया भाभी, चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे सवाल पर आती हूँ। महिलाएं जानना चाहती है परिवार नियोजन और उनके असल में क्या फायदा होता है, क्या इससे उनका शरीर मजबूत होता है और क्या ये घर की आमदनी पर भी असर डालता है।
5: सही कहा आरजे रीना, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे गाँव की रेखा दीदी की शादी कम उम्र में हो गई थी। परिवार साधारण था, 5 बहनें थी। 10वीं के बाद पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी और शादी कर दी। रेखा पढ़ना चाहती थी लेकिन घर वालों को लगता था अच्छा घर मिल गया तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। शादी के कुछ महीने बाद ही सबने पूछना शुरू कर दिया बच्चा कब होगा, लेकिन रेखा जानती थी कि अगर उसने जल्दी माँ बनने का फैसला किया तो उसके सपने वहीं रुक जाएंगे। उसने अपने पति से बात की, कहा कि कुछ साल रुक जाइए, मैं पढ़ाई पूरी करके कंप्यूटर सीख सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। पहले तो पति नाराज हुए लेकिन धीरे धीरे समझ गए। उसने अपने परिवार को भी समझाया। रेखा ने घर के सारे काम किए, खेत में भी हाथ बटाया, 12वीं की परीक्षा भी दी और कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की, फिर BA में एडमिशन लिया और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर दी। गांव वाले ताना मारते थे, अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो शादी क्यों की, नौकरी का क्या करेगी, लेकिन रेखा डरती रही और पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसे कलेक्टर ऑफिस में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वही लोग जो उसे ताना देते थे उसके पास अपने काम लेकर आने लगे। शादी के लगभग 4 साल बाद जब रेखा 22 की हुई, उसने परिवार बढ़ाने का फैसला किया। सोच समझकर खुशी से अब वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार थी।
4: वाह भाभी, रेखा की कहानी तो सब कुछ साफ कर दिया। परिवार नियोजन से महिलाओं को न सिर्फ समय मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का, बल्कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, और जब माँ मजबूत होती है तभी परिवार भी मजबूत बनता है।
5: और सबसे जरूरी बात, ये फैसला जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं और उसके साथी दोनों की समझदारी आपसी बातचीत से आना चाहिए। सोच समझकर लिया गया फैसला ही परिवार को देता है सही दिशा। सेहत सही तो लाभ कई।
4: भाभी, कई लोग सोचते हैं कि बच्चों में उम्र का अंतर कोई खास मायने नहीं रख, लेकिन असल में इसका सेहत और परिवार दोनों पर बड़ा असर होता है ना?
5: बिल्कुल सही कहा बहन आपने। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ना समझी में मैंने पहला बच्चा खो दिया था, फिर मैंने और आपके सेहतिया भैया ने निर्णय लिया कि पहले मैं अपनी सेहत सही करूंगी फिर दूसरे बच्चे की सोचूंगी, और हमारे दोनों बच्चों में 4 साल से भी ज्यादा का अंतर। अगर एक बच्चे के पैदा होने के 6 महीने के अंदर ही दूसरा गर्भ ठहर जाए तो माँ के शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता, इससे माँ कमजोर हो जाती है और आने वाले बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता, कई बार बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है।
4: मतलब माँ की सेहत के लिए भी जरूरी है कि उसे पूरा वक्त मिले खुद को रिकवर करने का।
5: कम से कम 2 साल का अंतर हो तो माँ का शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। याद रखें कि माँ के खून और माँ की हड्डियों से ही बच्चा, हड्डी से ही बीज बनता है। एक बच्चे के बाद कम से कम 3 साल का समय माँ को फिर से तंदुरुस्त होने के लिए मिलना चाहिए। अगला बच्चा तंदुरुस्त होगा और माँ के अंदर भी ताकत बनी रहेगी, इसलिए बच्चे के बीच गैप होना जरूरी है।
4: और अगर देखा जाए तो पूरे परिवार को भी इससे फायदा होता है।
5: हाँ आरजी रीना, जब बच्चे सोच समझकर और सही अंतराल पर हो तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने और इलाज का खर्च ठीक से उठाया जा सकता है। जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो खर्च भी बढ़ेगा और ध्यान भी बटेगा।
4: बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है क्या?
5: बिल्कुल पड़ता है। जब बच्चों के बीच ठीक ठाक उम्र का फासला होता है तो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहन से बहुत कुछ सीखता है। बोलना, चालना, समझना, इससे दोनों का विकास बेहतर होता है। लेकिन अगर दोनों बहुत छोटे हैं तो माँ बाप के लिए दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है।
4: आपने तो बड़े कमाल की बात कह दी।
5: ये बात

0: और अपने बच्चों की परवरिश दे सकी। जब घर की जिम्मेदारियां संभाली गई, तो उसने सिलाई का कोर्स किया, फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। पहले छोटे मोटे ऑर्डर लिया, फिर हुनर बढ़ाया और कमाई भी बढ़ने लगी। अब वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से संभाल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है और खुद भी आत्मनिर्भर है। परिवार नियोजन ने उसे ये मौका दिया कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, और यही सही योजना है, सही दिशा की ताकत है।
1: मतलब परिवार नियोजन से सरला और मतलब परिवार नियोजन से सरला को अपनी जिंदगी संवारने का मौका मिला।
0: जब महिला पर जल्दी माँ बनने का दबाव नहीं होता, तो उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका मिलता है। वो पढ़ सकती है, काम कर सकती है, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है, और जब वो आत्मनिर्भर होती है तो अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर सकती है।
1: तो भाभी, परिवार नियोजन से न सिर्फ महिला की जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य भी अच्छा बनता है।
0: बिल्कुल सही कहा रीना, जब सही योजना बनाई जाती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को अपने फैसले लेने की आज़ादी मिलती है।
1: श्रोताओं, कई जगहों पर परिवार नियोजन को अपनाने में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी है, लोग सोचते हैं कि उनकी परंपराओं के खिलाफ है। टीकन भाभी, अपना इस पर क्या विचार है?
0: हमारे यहाँ परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर परंपरा समय के साथ बदलती भी है। अगर कुछ चीजें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं, तो उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं कि हम अपने मूल्यों को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब सही जानकारी मिलेगी तो लोग इसे अपनाने के लिए आगे आएंगे।
1: वैसे एक और मुद्दा है, पुरुषों की भागीदारी, कई बार महिलाओं को अकेले ही फैसला लेना पड़ता है, लेकिन अगर पति और परिवार साथ है तो फैसला लेना आसान हो जाता है।
0: देखो, परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, जब पति, पिता और अन्य पुरुष सदस्य इस विषय को गंभीरता से लेंगे, तभी सही बदलाव आएगा।
1: लेकिन जब पुरुष नसबंदी की बात आती है, तो कई पुरुष इसे अपनाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि इससे उनकी मर्दानगी पर असर पड़ेगा।
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर कहते हैं कि पुरुष नसबंदी सुरक्षित और प्रभावी है, इससे पुरुष की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन को आसान और सुरक्षित बना सकती है।
1: वैसे सरकार भी परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
0: सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे कि मुफ्त गर्भ निरोधक साधक, जागरूकता अभियान और विपत्ति प्रोत्साहन। कई राज्यों में महिलाओं और पुरुषों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए विशेष लाभ दिया जाता है। सरकार कोशिश तो कर रही है, पर साथ ही जागरूकता और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और सही विकल्प चुने, तो परिवार नियोजन का लाभ सभी को मिल सकता है।
1: छोटा परिवार सुखी परिवार, एक बार फिर बताइए, छोटे परिवार से क्या फायदा है?
0: आजकल एक बच्चे को पालने में ही बड़ा खर्च है, उसकी पढ़ाई, अच्छे खाने पीने का ध्यान, कपड़े, दवाई, सब में पैसा लगता है। अगर जल्दी जल्दी कई बच्चे हो तो खर्च इतना बढ़ जाता है कि माता पिता के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है।
1: मतलब अगर हर साल एक बच्चा हो तो मुश्किल बढ़ जाती है।
0: अगर हर साल एक बच्चा हो तो माँ के पास ना तो आराम करने का समय होगा, ना ही बच्चों की सही देखभाल करने का। पिता भी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में ही लगे रहेंगे, और घर के बाकी खर्च पूरे करने में परेशानी होती है।
1: तो फिर क्या करना चाहिए?
0: समझदारी से योजना बनानी चाहिए। जब बच्चों के बीच सही अंतर रखा जाता है, तो माता पिता उन्हें बेहतर पढ़ाई का मौका दे सकते हैं, अच्छा खाना खिला सकते हैं और सेहत का सही ध्यान रख सकते हैं। इससे बच्चे विशेष रूप में सफल होते हैं।
1: तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ खर्च बनाने की बात नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य का सही इन्वेस्टमेंट है।
0: सही कहा, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा, सही पोषण और बेहतर जीवन शैली मिलती है, तो वो बड़े होकर आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे पूरा परिवार मजबूत बनता है और भविष्य में आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहता है।
1: तो भाभी, परिवार छोटा करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं?
0: अब तो बहुत सारे विकल्प हैं, गोली, कॉन्डोम, इंजेक्शन और यहाँ तक कि इम्प्लांट भी। गांव में हमारी आशा बहन सब समझाती हैं, सब आसानी से मिलता है, गोपनीयता भी रहती है।

0: मतलब कोई और जाने न जाने पति पत्नी को सब पता होता है।
1: तो क्या परिवार नियोजन के उपाय महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाते?
0: सही जानकारी लेकर उचित इस्तेमाल हो तो ये सब सुरक्षित है। महिलाएं खुद तय करें कि सही क्या है, यही असली सशक्तिकरण है।
1: क्या युवाओं को भी जानकारी होनी चाहिए?
0: बिल्कुल होनी चाहिए। युवा अवस्था में अगर सही जानकारी मिले तो अनचाहे गर्भ अवस्था रोकी जा सकती है। हमारे गांव की रेखा को देखो, उसने शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं चाहा, पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा और वो सरकारी दफ्तर में काम कर रही है। सही जानकारी से महिलाएं अपनी जिंदगी खुद तय कर सकती हैं।
1: भाभी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि गोली खाने से बांझपन हो जाता है या कॉन्डम से मजा नहीं आता, क्या ये सच है?
0: ये सब अफवाह है। गोली हो या इंजेक्शन, ये सब सिर्फ थोड़े समय के लिए गर्भ रोका है, बांझ नहीं बनाता। कॉन्डम का तो फायदा डबल है, गर्भ भी नहीं होता और बीमारी भी नहीं होती।
1: ये सारी जानकारी मिली कहाँ से है, कौन समझाता है?
0: हमारी आशा दीदी हर मर्ज की दवा है। वे घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, सही जानकारी देती हैं और दवाइयाँ लाकर देती हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो हॉस्पिटल जाने में भी मदद करती हैं।
1: आशा दीदी तो सच में बड़ी काम की है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं से मदद मिलती है? आशा दीदी के अलावा गर्भ निरोधक उपायों में और कौन मदद करता है?
0: सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी मदद करती हैं। अब तो स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं को खास परीक्षण दिया जा रहा है जिससे वो लोगों को सही परामर्श दे सकें और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। इससे महिलाएं सही फैसला ले पाती हैं और परिवार की सेहत भी बनी रहती है।
1: परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा रहा है?
0: सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अब नए गर्भ निरोधक उपाय जैसे इंजेक्शन, इम्प्लांट भी उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं को सुविधाजनक तरीके से परिवार नियोजन करने में मदद मिलती है। मिशन परिवार विकास जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और लोग सही जानकारी पा रहे हैं।
1: पर मिशन परिवार विकास है क्या?
0: मिशन परिवार विकास के अंतर्गत सरकारी नव दाम्पत्य को परिवार नियोजन किट देती है, साथ ही सास बहू सम्मेलन का आयोजन करती है जिससे कि सास और बहू के बीच बातचीत हो सके और उन दोनों को समझ आ सके परिवार नियोजन कितना जरूरी है।
1: तो क्या इसका मतलब है जो बहुएं अपनी सास पर सास को घर में बात नहीं समझा पाती, उनके इस सम्मेलन में संवाद करके आशंकाएं और नियोजन से संबंधित वार्तालाप कर सकती है?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने।
1: तो इसका मतलब परिवार नियोजन अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है।
0: ऐसा ही, अब तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गर्भ निरोधक सेवाएं भी जोड़ दी गई हैं। यानी जब भी कोई सरकारी अस्पताल जाता है उसे परिवार नियोजन के विकल्पों की जानकारी भी दी जाती है। इससे लोगों को सही समय पर जरूरी सलाह मिल जाती है।
1: और ये मोबाइल हेल्थ और टेलीमेडिसिन क्या है?
0: मोबाइल पर भी जानकारियां मिलती हैं। परिवार नियोजन के हेल्पलाइन नंबर हैं, वहां से कॉल करके मदद मिल सकती है। अब तो बस एक फोन कॉल या ऐप डाउनलोड करने से ही सारी सूची मिल जाती है। टेलीफोन मेडिसिन के जरिए लोग डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हैं, सही जानकारी पा सकते हैं और हाँ, याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। खासकर जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।
1: तो सरकार के प्रयास से डॉक्टर, आशा दीदी और मोबाइल सेवाएं सब मिलकर परिवार नियोजन को आसान बना रहे हैं।
0: अब हर किसी के पास जानकारी है और सही रास्ता चुनने का मौका भी है। जब परिवार नियोजन सही तरीके से होगा तो माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा सेहतमंद होगा और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा।
1: भाभी, आपने तो आज कमाल कर दिया, आसान भाषा में बड़ी जरूरी बातें समझा दी।
0: अरे बहन, बात सीधी है, सोच समझकर बच्चा पैदा करो, उनके बीच सही अंतराल रखो ताकि माँ का शरीर भी ठीक रहे, बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे और परिवार की जिंदगी भी खुशहाल बनी रहेगी। और हाँ, महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें, कमाएं, तभी तो घर और समाज देश की असली तरक्की होगी।
1: तो साथियों सुन लिया ना, परिवार नियोजन कोई मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी भरा फैसला है। जब आप सही समय पर बच्चा पैदा करने का निर्णय लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने परिवार की सेहत और खुशहाली की रक्षा करते हैं बल्कि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य भी देते हैं। याद रखिए, माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा मजबूत होगा, बच्चा मजबूत होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। तो आज की चर्चा को सिर्फ सुनिए मत, अपने घर में, अपने मोहल्ले में और हर उस जगह जहां आपकी बात पहुंच सकती है परिवार नियोजन के संदेश को फैलाइए। सेहत सही लाभ कई यही है हमारा नारा और यही है आगे बढ़ने की राह। सुनते रहिए कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। अगली बार फिर मिलेंगे नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 FM रेडियो, बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए।
2: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
4: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
4: शुक्रिया सेहतिया भैया।
2: तो दोस्तों, आज का हमारा यह सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: सिजमी आरजे रीना FM मुरादाबाद 89.6 FM रेडियो, बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए जनाब। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है हमारे लिए क्योंकि आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और ये दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि बढ़ती जनसंख्या सिर्फ आबादी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है और परिवार नियोजन को लेकर क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है और आम जनता कैसे इसका लाभ उठा सकती है, इसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं CMO ऑफिस, जहां मेरे साथ है डॉक्टर संजीव जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं और विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और 2025 का इसकी थीम क्या रहने वाली है। सर,
5: मैं डॉक्टर संजीव बेलवाल मुरादाबाद से हूं और मेरे पास फैमिली प्लानिंग का भी कार्य मैं देखता हूं और सभी और भी नेशनल प्रोग्राम्स मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं। 11 जुलाई को बेसिकली विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम हमारे यहाँ रखी गई है, हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेस बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द प्लांट्स एंड द पेरेंटहुड। माँ बनने की उम्र वही है वह जब तन और मन की तैयारी सही हो। तो बेसिकली हम लोगों को अपना एक पॉपुलेशन कंट्रोल्स करना है, उसके बारे में हमें ये सारी लोगों को अवेयरनेस के बारे में हमें ब्रीफ करना होता है, सोसाइटीज को बताना होता है और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स है वो जगह जगह जाके सारी चीजें कुछ हम इसके लिए प्रसार प्रसार भी करते हैं, ICs भी बनवाया जाता है, सास बेटा बहु सम्मेलन भी इसके तहत हमारे यहाँ पे कराया जाता है जो कि विलेज लेवल पे होता है। जो कपल्स होते हैं उन कपल्स को जितने भी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्स करने के मेथड्स होते हैं वो सारी चीजें उसमें समझाई जाती है। तो इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ने जो थीम रखी है, हेल्दी टाइमिंग स्पेसिंग बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द एक प्लांट पेरेंट।
1: सर, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भारत या विशेष रूप से हमारे जिले में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति क्या होने वाली है?
5: देखिए मैम, अभी भी कुछ अवेयरनेस की कमी है और कुछ तबका एक ऐसा होता है कि जो अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की साइड से विलेज लेवल्स पे, मोहल्लास में, सभी जगह आशाओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से और हमारे जितने भी ICs के माध्यम से हम उसको, तो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, तो ये चीजें उसको बताया जाता है और इसीलिए और अर्ली स्पेसिंग ना हो जल्दी से, बहुत जल्दी मैरिज ना हो, है ना, ये सारी चीजें जो रूढ़िवादी समस्याएं आती हैं उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है। और अभी हम डिस्ट्रिक्ट हमारा मुरादाबाद जो अभी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हमारे अच्छे खासे लोग हैं जो हमारी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं।
6: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो परिवार नियोजन में मदद करती है?
5: मैडम बेसिकली क्या है कि इसमें टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड दोनों ही इसमें प्रकार में यूज होते हैं। टेम्पररी मेथड्स में मेल एंड फीमेल दोनों को लिए होता है, जिसमें हम एनएसबी बोलते हैं और फीमेल स्टरलाइजेशन जो होते हैं जो कि ट्यूबेक्टमी की जाती है, जिससे इसमें कोई हानि नहीं होती है, ना ही उसको कोई हेल्थ तो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होती कराने के बाद, तो ये परमानेंट मेथड्स के रूप में आते हैं। दूसरे टेम्पररी मेथड्स होते हैं जैसे इंट्रा कॉन्सेप्टिव होती है, ओरल स्पिल्स होती है, हमारे पास छाया होता है, अंतरा होता है और अन्य डिवाइसेस भी हमारे पास यूज होती है और जो हमारा कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं। ये सारी जो मतलब टेम्पररी में नहीं आती है, ये बेसिकली आदमी इनको यूज करने के बाद अपनी फैमिली को एक नॉर्मल उसमें साइज में रख सकता है। और कोई इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं जो कि कुछ 6 महीने के लिए दे जाते हैं और कुछ इंटरटाइन डिवाइसेस होती है वो उसमें यूज की जाती है, तो वो लोग सब यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और अच्छी खासी मात्रा में हमारा ये।
6: क्या आज की पीढ़ी परिवार नियोजन को लेकर कितना ज्यादा जागरूक है?
5: अगर मैं बात करूँ तो पुराने जमाने में और आज के जमाने में काफी डिफरेंसेस है। पहले 80s में 70s की अगर हम बात करते तो एक फैमिलीज में मेल बेबी की लालसा में लोग अधिक बच्चे जन्म पैदा कर लेते थे फैमिलीज में, कि ये मैंने अपने गांव में भी देखा है और कि वही एक बेटा आवश्यक है। लेकिन आज की कंडीशंस में जो यंगर्स हैं वो इस तरह की भावना को नहीं सोचते हैं, उनके लिए मेल बेबी और फीमेल बेबी दोनों ही समान होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन अब बहुत कम हो गई है कि भाई मेल की अपेक्षा ज्यादा रखते हुए और फैमिली को साइज एक रीजन से ये भी हुआ करता था। और आज लोग इसको जो यंगर्स हैं आज की जो पीढ़ी है वो फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट कर रही है।
6: परिवार छोटा रखने से क्या फायदे हो सकते हैं?
5: देखिए मैम, परिवार अगर आपका छोटा रहेगा तो आपका एक मेंटल पीस रहेगा, फाइनेंशियल समस्याएं नहीं आएंगी, आप अपने बच्चे को अच्छी सी एजुकेशन दे सकते हैं। अगर कभी कोई हेल्थ इश्यूज आता है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो मेंटल पीस हो गया, आपका सोशल एक्टिविटीज आप अच्छे से करा सकते हैं, बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, कोई भी चीज आप किसी भी फील्ड में किसी भी साइड में अगर आप भेजेंगे तो उसको अच्छे से उसका लालन पालन पोषण किया जा सकता है। अगर बिग फैमिली से आपका जो साधन है, सोर्स ऑफ इनकम कम है और आपका बिग फैमिली, तो आपको मेंटली प्रॉब्लम्स होती है, हर चीजों की समस्या उसको जूझना से पड़ता है। आपका छोटा फैमिली होगा, खुशहाल रहेगा और अच्छे से जीवन जिएगा।
6: क्या आपको लगता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है?
5: मैम भारत की जनसंख्या बढ़ रही है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट्स अभी भी अभी हमारे जो हम ये फैमिली प्लानिंग्स के प्रोग्राम से ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ी इसको समझ रही है कि ज्यादा अगर ये इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उसमें आने वाली समस्याएं होंगी। तो बहुत सारी चीजें होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट्स में समस्याएं आती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको मतलब ऑक्यूपेशन में सर्विसेज लेने में या देने में सारी समस्याएं क्रिएट होती है अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर पे लैंड्स पे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी समस्याएं पॉपुलेशन की होने की वजह से कुछ बेसिकली एंटी एलिमेंट्स भी कभी कभी इस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं, घर में फाइनेंशियल की क्राइसिस होती है और बच्चे किसी दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये सब चीज कंट्रोल होना आवश्यक है और हेल्दी लाइफ, सुकून की जीवन जीना, पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको एक छोटा परिवार की आवश्यकता है।
6: बिल्कुल, गांव और शहर में परिवार नियोजन को लेकर क्या फर्क है आजकल अगर देखा जाए तो आज के टाइम?
5: देखिए मैम, अभी जो हमारा गाँव में और शहर में दोनों में जो एजुकेटरी लेवल्स है वो लगभग समान सा आता चला जा रहा है, तो दोनों ही साइड में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। विलेजेस में अभी थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशन लेवल है थोड़ा कम है, तो वहाँ के जो अभी पुराने लोग हैं उनमें थोड़ा सा हमने देखने को मिला है उनके अंदर थोड़ी सी हेजिटेशंस रहती है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट की साइड से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे सास बेटा बहु सम्मेलन। ये बेसिकली एक छोटे से गाँव में उसमें आंगनवाड़ी, आशा, एनम और अन्य गांव के समाज लोग वहां बैठते हैं एक साथ और उसकी पूरी फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा की जाती है। उस चर्चा करने के बाद लोग इसको समझ रहे हैं धीरे धीरे और हम शहर और गांव को बराबर लाने की कोशिश में लगी हुई है सरकार हमारी, तो जल्दी से जल्दी हम सोचते हैं कि इसका अनुपात बराबर आ जाएगा।
6: ओके सर।
1: हाँ जी सर, जैसे कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हम दो हमारे दो, तो सर ये आखिरकार है क्या?
5: हाँ मैम, हम दो हमारे दो का ये स्लोगन तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं इसे सुनता आ रहा हूँ कि हम दो और हमारे दो, ये अच्छा है और इसको लोग एक्सेप्ट करें और इसी स्लोगन को मानते हुए अपने जीवन में इसको लें और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें।
1: सर लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, छोटा सा अपना मैसेज दीजिए।
5: हमारे मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फीमेल हॉस्पिटल्स, वहाँ पे टेम्पररी मेथड को एक्सेप्ट करें और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हमारे देश की और हमारे स्टेट की मदद।
1: थैंक यू सो मच सर, और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, रेडियो बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए जनाब।
7: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
8: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
9: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
8: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
10: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
11: पाए सुनिश्चित उपहार 42 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
10: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा नहीं होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी।

0: सच कहूँ, अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
1: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
2: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
1: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
0: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
1: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
2: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
0: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
1: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
2: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुँच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षा करें।
0: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
1: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
2: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
0: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
2: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
0: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
1: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
2: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में यह सब नहीं था, पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें?
0: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
1: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो, पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है, पर झूठ का आधार नहीं।
0: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
1: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
0: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा। किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
1: पर तुमने पूछा ना?
0: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
1: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
2: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
0: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
1: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
0: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
1: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
0: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
1: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
0: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
1: यही तो सार्वजनिक भलाई है। जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नई अनुभव साझा करना है।
0: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
1: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
2: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
1: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। 5, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। 7, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
0: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
0: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
0: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं ठहर कर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हैदराबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद की प्रेरक कहानियों की
1: के साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।

0: अधूरी लगती है।
1: उत्तर भारतीय खान पान में अचार का खास स्थान है। गाजियाबाद के हरी मिर्च का अचार पारंपरिक विधि से तैयार होता है। ताजी हरी मिर्च, सरसों का शुद्ध तेल, सौंफ, मेथी दाना, राई, हल्दी और नमक का संतुलित मिश्रण और फिर धूप में प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है।
0: और सेहत,
1: हरी मिर्च में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सरसों के तेल को आयुर्वेद में एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। आज 150 से अधिक कारीगर, 30 से ज्यादा होलसेलर और 2500 से अधिक लोगों को रोजगार, ये सभी इकाई जिलों में उद्योग केंद्र के निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकृत है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
0: ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है इसकी नींव कहाँ से पड़ी?
1: इसकी शुरुआत हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट यानी ODOP योजना से। इस योजना का उद्देश्य था हर जिले को पारंपरिक पहचान को उद्योग और बाजारों से जोड़ना। इसकी सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभिनव कदम उठाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन यानी ODOC स्कीम। अब हर जिले का एक खास व्यंजन भी ब्रांड बनकर उभरेगा।
0: लेकिन RJ सिर्फ पहचान बना देना ही काफी नहीं होता, छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग भी तो चाहिए ना?
1: बिल्कुल, और यही काम सरकार पूरी सक्रियता से कर रही है। सरकार ने सोया चाप और आचार उद्योग से जुड़े उद्यमी को कई नई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान की सब्सिडी, आसान ऋण सुविधाएं और मुद्रा योजनाओं से आर्थिक सहायता, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, फूड सेफ्टी पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, महिलाओं और युवा उद्यमियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए सरल ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की व्यवस्था।
0: यानी अब छोटे व्यापारी भी बड़े सपने देख पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि स्थानीय उद्यमी सिर्फ अपने शहर तक सीमित न रहें बल्कि उनके उत्पाद देश और विदेश के बाजारों तक पहुँचें। प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहयोग के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
0: और यही तो है असली विकास, जब स्थानीय हुनर को सही मन और सही समर्थन मिले।
1: सही कहा आपने, आज गाजियाबाद का स्वाद सिर्फ लोगों की थाली तक नहीं है बल्कि हजारों परिवार की रोजी रोटी और आत्मविश्वास भी जुड़ चुका है। राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल मंच, आकर्षक ब्रांडिंग और आधुनिक पैकेजिंग, ई मार्केटिंग और डिजिटल प्रमोशन, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, आसान ऋण और सब्सिडी प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, इससे छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल रहा है।
2: नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं जनपद गाजियाबाद में उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2018 में प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के नाम से लॉन्च करी थी, जिसके माध्यम से जो हमारे परंपरागत आर्टिजन हस्तशिल्पी या हमारे जो परंपरागत उत्पाद रहे हैं 75 जनपदों में, उनको बड़े स्तर पर कामयाबी मिली और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही। और उसी के आधार पर भारत सरकार ने भी एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की। अब एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, जो औद्योगिक उत्पाद हैं, उनको या आर्टिजन्स हैं, उनको हमने कवर किया। अब उसी कड़ी में हमारी एक नई योजना एक जनपद एक व्यंजन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार हमारे समस्त जनपदों के जो पारंपरिक रूप से जो खाने पीने की चीजें या व्यंजन हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है। हमारी जनपद की कुजीन, जैसा कि आपको पता है, गाजियाबाद में सोया चाप और मिर्च का अचार दो उत्पाद यहाँ ODOC के तहत चयनित किए गए हैं। अपने जो हमारे परंपरागत बनाने वाले लोग हैं, इसको उनकी ट्रेनिंग भी देंगे, उनको टूल किट्स भी देंगे और उनको लोन के माध्यम से जो उनका अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग उनका जो भी यूनिट औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से या अपने घर पे कुटीर उद्योग के में अगर वो बना रहे होंगे उसको, या रेस्टोरेंट के माध्यम से सोया चाप अपना बेच रहे हैं, तो उनको हम फाइनेंस भी देंगे कि वो अपने काम को और अच्छा कर सकें। और उसके बाद उनको बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग और उनको मार्केट अवेलेबल कराने का भी काम इस स्कीम के माध्यम से किया जाएगा।
0: ये कहानी सिर्फ चाप और अचार की नहीं है।
1: बिल्कुल, आत्मनिर्भरता, नवाचार और सशक्तिकरण की कहानी। आज गाजियाबाद का सोया चाप दिल्ली NCR के बड़े होटलों तक पहुंच चुका है। सरकार की नीति स्पष्ट है, स्थानीय को वैश्विक बनाना है।
0: मुझे तो अब भूख लगने लगी है।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं, अगली बार जब आप गाजियाबाद जाएं तो एक प्लेट मलाई चाप और साथ में हरी मिर्च का अचार जरूर चखिए। उस स्वाद में आपको मेहनत, परंपरा और सरकार की दूरदर्शी सोच तीनों का मेल मिलेगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना ने यह साबित कर दिया है कि सही नीति और सही दिशा मिले तो हर जनपद विकास की मिसाल बन सकता है।
1: विकास सिर्फ सड़कों और में नहीं, विकास झलकता है थाली के स्वाद में, युवाओं की रोजगार में और उद्यमियों के आत्मविश्वास में।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए स्वाद और एक नए विकास के साथ। यही है
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131

0: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
0: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हां श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तो बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
1: नाम तो बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची, आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
1: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली डिजिटल टाइम में ना।
1: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटली
0: डिजिटल
1: की तरफ बढ़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे एप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी

0: तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स, व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालो, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लॉट प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओ, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओ, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है। ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों की बातों में ना आएं। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
0: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कहीं हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
0: एब्सोल्युटली। तो श्रोताओं, हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 आनंद और प्राची के साथ। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत? प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं, आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर लें कि वो जो कंपनी है वो सीपी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। मतलब भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें। ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।

0: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
1: कॉल 8826213131।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।

0: ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट

0: ती बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान

0: और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 43986105/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। सो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए शो महिला मंच, जहां हम बात करने वाले हैं बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो श्रोताओं, हमारे समाज में ना लंबे समय तक बेटियों को बोझ समझा जा रहा था। कई परिवारों में बेटी को जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। इसी सोच के साथ शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका अभियान सीधा एक संदेश देता है, बेटी को बचाना जरूरी है और उसे पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तभी सब परिवार आगे बढ़ता है और समाज मजबूत बनता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, जब बेटी शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक परिवार को रोशन नहीं करती है, बल्कि वो तीन पीढ़ी को रोशन करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीन पीढ़ी को कैसे रोशन करती है। तो पहले तो अपने माता पिता का घर, दूसरा ससुराल, तीसरा अपने बच्चों को वो खुद पढ़ा सकती है। तो देखा, बेटी एक परिवार को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ियों को रोशन करती है। तो इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और बेटियों के प्रति ना हमारा सोच हमें बदलना होगा, हमें उनका साथ देना होगा, बल्कि उन्हें गिराना नहीं होगा, डीमोटिवेट नहीं करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सो यूं ही ढेर सारी आज हम बेटियों के ऊपर बात करते रहेंगे। बस आप आरजे रीना के साथ महिला मंच में यूं ही कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार और कनेक्ट हो गई हूँ आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि कुछ साल पहले देश के कई राज्यों में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। इसका मुख्य कारण था लड़कियों के जन्म को महत्व ना देना। कई जगहों पर बेटियों को पढ़ाई का मौका भी नहीं दिया जाता था। यही वजह की सरकार को एक ऐसा अभियान शुरू करना पड़ा जो लोगों की सोच बदल सके। इस अभियान का मकसद था बेटी को जन्म देने का अधिकार, बेटियों को शिक्षा देना और समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान देना। पहले के टाइम में होता था कि जैसे बेटी जन्म होती थी ना, उसको वहीं पर मार दिया जाता था। कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दिया जाता था। ये कहा जाता था कि ये हमारे लिए बोझ है, हमारे लिए खर्चा बनाएगी, यानी कि पहले हम इसको पालेंगे, फिर ये बड़ी होगी, फिर शादी में खर्चा। तो बहुत सी ऐसी सोच थी जो लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ने देते थे, बल्कि उनके जन्म पर ही उनकी जिंदगी हम छीन लेते थे। लेकिन ये जैसे जैसे सरकार ने इनिशिएटिव चलाया, हम सबकी सोच बदली और आज यही दिन है कि लड़कियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सो ढेर सारी बातें हम आप सभी के साथ करते रहेंगे, बस आप यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। जब समाज की सोच बदलेगी तभी असली बदलाव आएगा। आज रीना के साथ आप कनेक्ट हैं महिला मंच शो में और यू ही हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, सुनना बिल्कुल ना भूले अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में बेटियां ही नहीं होती तो क्या होता? ना घर में बहन की हंसी होगी, ना माँ की ममता, ना राखी का त्योहार होगा। बेटियां सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होती बल्कि पूरे समाज की ताकत होती हैं। जब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेल, पढ़ाई, सेना, विज्ञान, हर जगह अब बेटियां आगे बढ़ रही है। बस जरूरत है उन्हें सही मौका देने का, और जब मौका मिलता है तो बेटियां दुनिया जीत लेती है। तो दोस्तों, याद रखिए, बेटी बोझ नहीं, बेटी गर्व है। और सुनते रहिए एक और शानदार गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे हम, और हमारी देश की बेटियों के लिए गाना है। सो यू ही आज रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुन।

और किसी ने सच ही कहा है, जब बेटियां होती है तभी घर में रौनक होती है। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और सच ना है कि अगर बेटियां नहीं होती, और सच तो ये है कि अगर बेटियां नहीं होती तो ये समाज आगे नहीं बढ़ता। कहते हैं ना, जिस कोख से हम जन्म लेते हैं उसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसी को जन्म लेने के लिए मना करते हैं। आखिरकार बेटियां जननी होती हैं, जिसने इस दुनिया को रचाया आज उसी को जीने का और उसी से जीने का अधिकार आज हम छीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जननी है उसको जीने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहन, बेटी, माँ, मित्र है आप सभी के लिए, जो घर को स्वर्ग बना देती है। और जब वो घर में होती है ना, तो घर का रौनक ही अलग होता है। आपने देखा होगा ना कि हम बचपन में जब भी स्कूल से घर आते थे तो सबसे पहले हमारे मन में ना एक ही ख्याल आता था, माँ। माँ कहाँ है? अगर आपको पूरे घर में माँ की झलक ना दिखे तो पूरा घर को ना हम सर पर उठा लेते थे। तो सोचिए, जब माँ घर पर नहीं दिखती है तो हम पूरा घर को सर पर उठा लेते हैं, और उसी जननी को हम जन्म देने से डरते हैं। तो डरिए मत, बेटी है, जननी है, माता है, और जब जननी आगे बढ़ती है तो हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, बस बने रहिए आरजेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आरजेरीना के साथ।

हाँ जी, आज रीना के साथ अब कनेक्ट है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी, आज के समय में ना शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ तक बेटियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बेटों के लिए है। जब एक बेटी पढ़ती है तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल देती है। पढ़ी लिखी बेटियाँ सही फैसले लेती है, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है और समाज को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को जरूर पढ़ाए और उन्हें आगे जरूर भेजे, उनका साथ दे। और आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी, आरजे रीना के साथ।

0: आपके साथ आपकी आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओ, अब हम बात करने वाले हैं जिस बेटी को हम पढ़ने से मना करते थे, वही बेटी आज पढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। वही बेटियां आज डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पुलिस ऑफिसर बन रही है। समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। आज कई परिवार बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके सपनों को उड़ान देते हैं। यही बदलाव हमें आगे भी जारी रखना है और अपनी बेटियों को डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करना है। उन्हें बोलना है कि तुम ही हो देश की नारी और तुम ही हो देश की बेटी और हमें तुम पर गर्व है। तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, जब एक परिवार अपनी बेटी का साथ देता है ना, तो उसकी देखा देख हर किसी की सोच बदलती है और हर किसी के दिमाग में यही आता है कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और हमारी बेटी भी आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। तो श्रोताओं, बने रहिए यूं ही आरजे रीना के साथ और भी हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, जब बेटियां पढ़ती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो अपने देश का नाम रोशन करती है। तो उनमें से अगर बेटियों की बात करूं तो पीवी सिंधु, कल्पना चावला, साक्षी मलिक, ये हमारी बेटियां देश की शान है, जिन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी लड़के से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकती है। बस एक ही बात चाहिए कि आप उनके साथ रहें। तो जब बेटियां आगे बढ़ती है ना, तो हमें भी देखकर गर्व होता है कि अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सोच बदल रही है। तो इसी सोच के साथ आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें बोझ ना समझे और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहे। जी
1: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
2: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhip.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
1: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जज रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश। जी हां, अगले दो घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे, आपकी पसंद की फरमाइशें यहाँ पर हम प्ले करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और कुछ बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं आप सभी के लिए कि मुस्कुराहटों का मौसम यूं ही नहीं बना रहे, मुस्कुराहटों का मौसम यूं ही बना रहे, हर रिश्ता प्यार से सजा रहे। जो भी सुन रहे हैं इस वक्त हमें, उनका हर दिन खुशियों से यूं ही भरा रहे। दोस्तों, मैं कहती हूँ आपसे कि आप भी मुझे इस ब्यूटीफुल सेशन में, ब्यूटीफुल शो में मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और समय हुआ है 3:10, 15 जून की तारीख है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं श्री महाकाल शिवा लोहट एमपीबीडी से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा शिवा, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, और सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश में आपसे बातचीत हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है मैम।
0: अच्छा, आपके वहाँ बारिश हो रही है?
1: यस मैम, कल रात्रि से ही बारिश लगी हुई है, तो अभी गिर ही रहा है पानी।
0: अच्छा, कल नाइट से बारिश कंटिन्यू हो रही है, अभी रुकी भी नहीं है, तो मौसम आपके यहाँ पर सुहाना सा है। बताइएगा इस सुहाने से मौसम में क्या सुनना चाहते हैं आप, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा गीत, और
0: हाँ जी,
1: गाना रहेगा दिल का क्या करे साहेब, और हमारे कुछ मित्रों को याद करेंगे।
0: जी जी जी बिल्कुल, बताइएगा अपने मित्रों के नाम।
1: हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी राजस्थान से, मथुरा से हैं हमारे पुरुषोत्तम भैया जी, त्रिपुरा से हैं अविनाश जी, शिमला से हैं राकेश जी, सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, गजराज लोधी जी, कल्याण सेन जी, तमाम सुनने वाले और स्पेशली मैम आप।
0: थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत आपके सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों के साथ और सुनने वाले तमाम श्रोताओं के साथ। कॉल करने के लिए धन्यवाद शिवम, मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं शिवम जी की रिक्वेस्ट पर। एंड आप भी अगर कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो आप हमें फटाफट से कॉल करें, नंबर है 9837896896 9837896896। और खूबसूरत से गीत का आनंद लीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के इस पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना कविता कृष्णमूर्ति जी की, बहुत ही प्यारी सी आवाज। एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण जी एंड लिरिक्स थे समीर जी के। मूवी का नाम था जीत और बहुत ही खूबसूरत सा गाना। दोस्तों, दिल को समझना आसान कहाँ होता है, ये तो कभी किसी की बातों पर, कभी किसी की मुस्कान पर, तो कभी किसी की सादगी पर अपना सब कुछ हार बैठता है। अगर आपके दिल में भी किसी खास का नाम है और आप किसी स्पेशल के लिए कुछ ट्रैक सुनना चाहते हैं, उनकी पसंद का या फिर अपनी पसंद का, तो हमें तुरंत कॉल कीजिएगा। आप नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। आपको भी आदाब, क्या नाम है आपका सर?
1: जिला रामपुर ग्राम से वसीम अगरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे मैम। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे फरमाइश में बात हो रही है।
0: हाँ जी,
1: काफी अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया। बताएगा आप कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: लेकिन मैम कहीं पर भी जाते हैं, आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं और आपसे बात करने की तमन्ना रहती है। अभी यहाँ पर है मैम, हम यहाँ माउंट आबू में घूमने के लिए आए हुए हैं मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है। इतनी खूबसूरत नजारे का आप लुफ्त उठा रहे हैं और वहाँ पर भी आप रेडियो का साथ बनाए हुए हैं, ये मुझे जानकर बहुत खुशी हुई।
1: देखिए मैम, काफी दूर है यहाँ से रामपुर से, 1600 किलोमीटर दूर अपना मुरादाबाद रामपुर से। बहुत बहुत दूर से मैम वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, जैसे ऐसा शहर है जैसे अपना कश्मीर शहर है।
0: ओके, हाँ जी, खूबसूरत है। वहाँ के बारे में मैंने भी काफी कुछ जाना है जी। तो आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है सर और इतनी खूबसूरत जगह पर आप हैं, तो क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: लेकिन मैम ऐसी खूबसूरत मौसम है और काफी अच्छा नजारा हो रहा है यहाँ पे
0: जी।
1: तो एक मौसम एक सॉन्ग सुनवा देना। सफर तन्हा तन्हा कुछ इस टाइप से बोले।
0: ओके
1: तो जी, मेरे साथ में मेरे दोस्त है कुछ।
0: हाँ जी बताइएगा।
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम से मोहम्मद शामिल, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद तालिब परवेज और जितने भी हेलो फरमाइश सुन रहे हैं सभी श्रोताओं के लिए स्पेशली डेडिकेट रहेगा ये सॉन्ग में।
0: ओके, और आज कोई शायरी वगैरह नहीं सुनाएंगे आप?
1: नहीं मैम, शायरी नहीं सुनाना चाहते, साथ में कुछ दोस्त।
0: अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। तो सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक। शुक्रिया कॉल किया आपने।

मोस्ट वेलकम। तो चलिए विवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो हमें जल्दी से कॉल लगाइएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल का। नंबर है 9833789689 6। और अभी इस समय आप आराम कर रहे हैं, हम जानते हैं, कुछ अभी काम में व्यस्त हैं हमारी तरह। देखिए दोस्तों, जब मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ ना, तो ये सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सफ़र को और भी ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल बनाया जाए, तो उसके लिए आपको कॉल तो लगाना ही होगा ना। अभी फ़िलहाल ये खूबसूरत से गाना सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
3: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: टीएनसी अप्लाई।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhip.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ 43986/05/2026। जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो बिना किसी वजह के आपका हाल पूछ लेते हैं। इसलिए आज के दिन एक प्यारी सी शुरुआत के साथ कीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने बहुत दिन से किसी अपने रिलेटिव को या फिर कोई आपका अपना जो जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, तो आज आप उनसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बीच बीच में आजकल सभी अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आपके रिलेटिव हैं जो आपसे बहुत दूर रहते हैं और बहुत दिन से बात भी नहीं हुई, तो आज बात कर लीजिए। क्योंकि अच्छा लगता है जब हम बेवजह किसी का हाल मालूम करते हैं, किसी के चेहरे पर प्यारी सी जब स्माइल आ जाती है तो खूबसूरत लगता है ना। और ये हम आपके दोपहर को बनाने आए हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत, आपके सफ़र को सुहाना। और शो चल रहा है हेलो फरमाइश। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, जी आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका निंगसोदा मोहम्मद इशरत बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हो आप?
0: जी इशरत जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: सभी अच्छे हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपके केंद्र के प्रोग्राम करोड़ों में रखते हैं। मैम हम आपका इंतजार करते हैं, कब 3 बजे मौका मिला दें।
0: अच्छा, तो 3 बजे कभी ऐसा हुआ है कि 3 बज गए और आपको नींद आ गई हो, फिर आपकी अचानक से आंखें खुली हो कि ओ शिट अभी तो हेलो फरमाइश शुरू चल रहा है?
1: ऐसे तो प्रोग्राम नहीं हो जाता, जैसे मैं लेट जाता हूँ दोपहर में, तो कभी मैं 4 बज जाऊँ तो कभी 5 बज जाऊँ, कभी 6 बज जाते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम मिस हो जाता। मैं जानता होता हूँ तो मैं बार बार समय को देखते रहता हूँ, 3 बज जाते हैं और मैं प्रोग्राम चालू कर देता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइएगा आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है बेटा। मैं उसे बहुत ही प्यारा सुनूंगा, धक धक करने लगा मेरा जिया, डरने लगा, मैंने इसी टाइप के बोले।
0: ठीक है सर, एक गीत आपको सुनवाते हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: एक नाम है,
0: हाँ हाँ हाँ बताइएगा।
1: मैम सबसे पहले ये गिराम बीबीपुर से मकसूद भाई, और ये स्वार से विजय राठौर, साथ में आप और हम।
0: ठीक है सर, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी, मोस्ट वेलकम। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं प्यारा सा गाना शाहजी की रिक्वेस्ट पर, ईश्वर जी की रिक्वेस्ट पर। और हम तो लौट कर आने वाले हैं, बट हाँ मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस शो को मिस मत कीजिएगा, फटाफट से हमें कॉल कीजिए, नंबर है 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपके साथ हैं और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी इस समय मुझे सुन रहे हैं तो फोन लगा सकते हैं, ये आपकी गोल्डन चांस है और मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल भी इस चांस को मिस करें। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहता है लाइक न्यू न्यू लिसनर्स से बात करना, उनकी फरमाइशों को जानना। और आप सभी की फरमाइशें जो होती है ना, आप सभी की च्वाइस जो होती है ट्रैक की, अमेजिंग होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हर तरह के ट्रैक मुझे सुनने को मिलते हैं। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो मैंने नहीं सुने होते हैं, बट आपकी फरमाइशों के जरिए वो गाने मुझे भी सुनने को मिलते हैं तो हमारा दिन भी खूबसूरत हो ही जाता है श्रोताओं। एंड अभी फिलहाल बात करते हैं अपने श्रोताओं से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद गोरखपुर।
0: जी बताइएगा, जिला मुरादाबाद गोरखपुर। हाँ तो ऐसे बताइए ना कि आप रहने वाले मुरादाबाद की, गोरखपुर में आप काम करते हैं।
1: जी
0: बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: अच्छे हैं मैम, आप सुनाएं।
0: जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा गोरखपुर का मौसम कैसा है सर।
1: बहुत गर्मी है, बस साल में तो गर्मी बहुत है।
0: अच्छा, और इस समय आप काम में व्यस्त हैं। जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ब्रेक मिलना भी चाहिए। और बीच बीच में जैसे आपने कहा कि पानी भी पीना बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली इस गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपनी सेहत का ख्याल भी रखिएगा सर। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्य करते हैं आप, लाइक अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं और कार्य को भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या फरमाइश है आपकी।
1: फरमाइश है वो गाना बीवी मिली है ऐसी आपको आ रहा हूँ।
0: अच्छा, ये गाना किन के लिए सुनना चाहते हैं आप, अपनी मिसेस के लिए।
1: जी साथ में है जो लेबर वाले है ना साथ में।
0: जी जी जी,
1: उनमें से एक बंदे ने फरमाइश करी है कि ये वाला गाना सुनवाओ। तो
0: अच्छा, तो उन्होंने इस गाने की फरमाइश क्यों की है, उनकी मैसेज ऐसी मिली है क्या। अच्छा ठीक है, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं सर, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आते हैं हम। थोड़ा सा यू नो होता है ना एक नटखटपन, कुछ अपनापन, तो इस गीत में वो सारी चीज़ें हैं। तो इस गीत को सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ, बस आप कहीं मर जाइए, यूं ही मुस्कुराती रहिए।

0: सुनो
1: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
2: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चूके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhip.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
1: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 43981/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और आप सुन रहे हैं अपने फेवरेट शो, जी हाँ अपना फेवरेट शो और अपने फेवरेट गाने हेलो फरमाइश शो में। आप भी सुन सकते हैं अपना फेवरेट कोई भी ट्रैक जो आपके इस समय हाँ दिल में लाइक हो रहा है, कुछ हलचल सी है उस ट्रैक को लेकर और आपका बहुत ज़्यादा मन है कि मैं इस गाने को काश रेडियो पर सुन पाऊँ या सुन पाऊँगी। हाँ बिल्कुल सुन पाएंगे आप। उसके लिए पर आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जो भी आप फ़ोन चला रहे हैं ना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको उसको स्किप करके हमें फ़ोन करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश खुशी जी, गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, मैं लाइन पर मुरादाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए कार्तिक गुप्ता, कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं, आप बताओ?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा फैमिली में सब ठीक है?
1: सब बढ़िया है, बस गर्मी के मजे ले रहे हैं।
0: अच्छा गर्मी के आनंद ले रहे हैं आप?
1: हर सीजन का मजा लेना चाहिए।
0: हाँ नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए, क्योंकि हर मौसम अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर विंटर्स हो। या तो आप बताइएगा आज क्या सुनेंगे, आप कौन सा गाना सुनने का मन है आपका?
1: एक विलन मूवी से जरूरत सॉन्ग सुना देना।
0: ठीक है कार्तिक, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं, कॉल करने के लिए थैंक यू।
1: ओके थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कार्तिक की रिक्वेस्ट पर बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जरूरत, एंड आप भी मुझे एवरीवन कॉल लगाइएगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है. और अभी आपने ट्रैक सुना मुझे तेरी जरूरत है. वैसे दोस्तों, जरूरत सिर्फ किसी अपने की ही नहीं होती. इस तपती गर्मी में ना एक ठंडे ठंडे नींबू पानी की भी आवश्यकता होती है. आम का पन्ना हो, छाछ हो या फिर मिट्टी की घड़े का ठंडा पानी, बस एक घूट मिल जाए और एकदम फ्रेशनेस हम फील करने लगते हैं. एकदम हमारा जो माइंड है वो चेंज हो जाता है और शरीर को ठंडक भी मिलती है, राहत भी मिलती है. और आप अपने शरीर को हाइड्रेट भी रख सकते हैं एवरीवन. तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप इन ठंडी ठंडी चीजों का लुफ्त उठाइए. और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है. हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश. हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार.
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं आलिया खान, जिला शाहजहांपुर से बात कर रही हूँ.
0: जी मैं बहुत ही अच्छी हूँ आलिया जी, आप बताइएगा आप कैसी हैं?
1: बढ़िया हूँ आपकी दुआ से.
0: ओके बिल्कुल, हमारी ब्लेसिंग्स तो हमेशा सभी के लिए हैं.
1: जी और मेरी दुआ से भी सब अच्छे से रहे, सब कुशल मंगल में रहे.
0: बिल्कुल बिल्कुल आलिया जी, आप बताइएगा और क्या कर रही हैं इस वक्त आप?
1: इस टाइम तो बैठे थे, गर्मी आज बहुत है.
0: हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है यार. राइट.
1: हाँ आज भाई की शादी भी थी, तेरे भाई की.
0: ओके
1: तो शादी तो चली गई है.
0: अच्छा
1: हाँ.
0: तो आप शादी में गए थे?
1: नहीं.
0: क्यों?
1: अरे वहाँ पर थोड़ा अच्छा सा माहौल नहीं था इसलिए नहीं
0: है. अच्छा अच्छा. और फिर इतनी गर्मी में ना शादी में जाने का दिन में मन नहीं करता है. लाइक
1: तो
0: फिर पता है आलिया जी, लाइक हैवी ड्रेस पहनना, तैयार होना, मेकअप करना, बहुत सारी चीजें होती हैं. हाँ इतनी है, इतनी कड़क गर्मी है, कहाँ मेकअप करने का दिल करता है. वो रियलिटी. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना नेचुरल ज्यादा खूबसूरत लगता है. जितना सादगी में रहो उतना ज्यादा सुंदर लगते हैं. तो आप बताइएगा आलिया जी, आपने कॉल किया है, बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: गाना सुनना है कभी छोड़ तो ना देगा मन में तू मेरी, हाँ में वो सुहाना की, ऐसे कुछ बोल.
0: अच्छा आप हरियाणवी गाने भी सुनती हैं?
1: हाँ, सुन लेते हैं.
0: अरे वाह क्या बात है, चलिए सुनवाते हैं फिर ये प्यारा सा ट्रैक. आलिया जी किसके लिए सुनना चाहते हैं आप ये गाना?
1: पहले तो मेरी दो छोटे बहन है शाजिया खान, नाजिया खान, भाई का नाम बशीर खान, भाभी फरजाना और बनारस से, बनारस से मौसम अंसारी.
0: जी ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं आपको आपका फेवरेट गाना. शुक्रिया कॉल करने के लिए.
1: थैंक यू.
0: मोस्ट वेलकम. नमस्कार आपको भी. तो चलिए एवरीवन आलिया जी की पसंद पर सुनते हैं ये हरियाणवी ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा है. और आप भी तब तक मुझे कॉल करो, शायद आपका फेवरेट गाना भी यहाँ पर प्ले हो जाए. नंबर है 9837896896.

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए
0: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
3: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
3: TNC अप्लाई।
4: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: सिर दर्द लकवा ये रीढ़ की तकलीफ क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
8: कौन दिशा?

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ में है। और दोस्तों देखिए, मंडे टू सैटरडे ये हेलो फरमाइश का कार्यक्रम चलता है, शो चलता है, जहां पर आप मुझे कॉल करते हैं और अपने फेवरेट गाने सुनते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, न्यू आपने सुनना स्टार्ट किया है, तो आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। एवरीवन, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अभी टाइम की अगर बात करें तो वक्त हुआ है 4:06, और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाय, हाउ आर यू, क्या नाम है आपका?
1: मैं
0: निखत फातिमा, कैसे हाल चाल है आपके?
1: बहुत अच्छे हाल चाल है दी, आप बताइए आपके कैसे?
0: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त?
1: कुछ नहीं दी, शो सुन रही थी आपका।
0: अच्छा, शो सुन रहे हैं, वेरी गुड। तो इन गर्मियों में कैसे अपना ध्यान रख रहे हो, क्या कर रहे हो आप, बताओ मुझे।
1: जी मैं नींबू पानी पी रही हूँ और धूप में बहुत ही कम निकल रही हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, बताएगा। निखत, आज कौन से गाने सुनोगे आप?
1: जी मैं सॉन्ग सुनूंगी दो हंसा का जोड़ा, और आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बिल्कुल कहिए।
1: हर तरफ से हजारों इशारे हुए, हर तरफ से हजारों इशारे हुए, पर हजारों इशारे किनारे हुए। तुमने देखा है जब से हमें प्यार से, तुमने देखा है जब से हमें प्यार से, खुशी दी हम तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे हुए।
0: बिल्कुल, और हम आपकी हुए, आपकी हुए। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया दिए, और सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको पसंद का। हाँ बताइए।
1: सबनों अब्बासी हैं और रामपुर से समा परवीन जी हैं।
0: ठीक है, ये प्यार से गाना सुनवाते हैं आपको, शुक्रिया कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम, बाय। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप मुझे कॉल कीजिएगा, नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं इस प्यारे से गीत के उस पार।

हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका। हेलो फरमाइश शो में खुशी आपके साथ है। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। दोस्तों, समय हुआ है 4:18, और आपके यहां पर आप सुन रहे हैं अपने पसंद के खूबसूरत गीत। और अभी मैं बात करती हूं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। लेकिन ये आपने अभी खूबसूरत सा ट्रैक इंजॉय किया राही, साथ में देव नेगी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक काला शाह काला। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो
1: फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? नमस्कार, आपको भी अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैम, मैं मुरादाबाद रहमत नगर गली नंबर 1 से आमिर खान बात कर रहा हूँ।
0: आमिर खान जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप सर?
1: जी मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं और आपके फैमिली में सब कैसे मैम?
0: हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ पर सब खैरियत से हैं?
1: जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है
0: जी। आप बताइएगा
1: सर कैसे हैं?
0: और रीना जी
1: कैसी हैं? और जी रीना मैम कैसी हैं?
0: हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं। आप बताइएगा आज आप क्या सुनेंगे?
1: जी मैम, बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था और काफी समय बाद मेरी कॉल लगी है, तो मैं गाना सुनना चाहूंगा। मर्द फिल्म का सॉन्ग है वो
0: जी,
1: माँ शेरों वाली, और शब्बीर कुमार जी की आवाज में बहुत प्यारी आवाज लगती है मुझे उनकी, तो मैं वो भजन सुनना चाहूंगा आज।
0: ठीक है सर, ये प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: हाँ, शुक्रिया मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत सर की पसंद का, और तब तक आप ही मुझे कॉल कीजिएगा। नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
4: TNC अप्लाई।
5: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
6: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
5: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या पीरेरा PRJ 439861/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, अभी वक्त हुआ है 4:30। अभी बात करते हैं अपने अगले फरमाइशकर्ता के साथ। हेलो फरमाइश।
1: फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, ये जन्म बार बार नहीं मिलता, जिंदगी में मिल जाते हैं लाखों लोग, पर सच्चा दोस्त बार बार नहीं मिलता। हाय दी, कैसी हो आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये खूबसूरत सा शायराना अंदाज आपका है, नाम भी तो बताइए।
1: दीदी, मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ।
0: जी दरक्षा, कहाँ से बात कर रही हैं आप, बताइएगा अपने बारे में।
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम गोदी से।
0: ओके, क्या करती हैं दरक्षा आप?
1: जी मैम, मैं कुछ नहीं करती, बस अप्पी की हेल्प करा देती हूँ थोड़ी बहुत।
0: थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कराया करो।
1: हाँ मैम, जितनी आती है इतनी करा देती हूँ।
0: जी चलिए, अच्छी बात है, बताइएगा आप क्या सुनना चाहती हो आज।
1: जी मैम, मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ फना मूवी का, हाथों वो है तेरे हाथों में मेरा हाथ,
0: तेरा हाथ में मेरा हाथ। ओके, सारी जन्नतें तेरे साथ, उस तरह से कुछ लिरिक्स है ना।
1: जी जी
0: ओके, तो ये गाना किन के लिए सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्टी रुकैया फातिमा के लिए।
0: अच्छा ठीक है, ट्रैक आपको सुनवाते हैं। कुछ और कहना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, और भी मेरी सिस्टर है, जैसे नजमा अप्पी है और राबिया और अफरोज फातिमा लाइबा।
0: ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। वैसे अभी आपके हाथ में किसी का हाथ है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपके हाथ में फोन जरूर है ये मैं जानती हूँ। तो प्लीज इस जो फोन आपके हाथ में है, इसी फोन से आप मुझे कॉल लगाइए। नंबर है 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जहाँ पर आपको कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है जहाँ पर आप सुनते हैं अपनी पसंद के गीत। तो एंजॉय कीजिएगा ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी फना। Oh

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और हमारे जो श्रोता हैं, जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा हाई करके सुन रहे हैं क्योंकि उनके बैकग्राउंड की आवाज़ मुझे भी आ रही है। अगर सर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने रेडियो सेट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ पाए, वरना फिर जब दोनों आवाज़ें मिलती हैं तो फिर प्रॉपर ठीक से समझ में नहीं आती हैं आपकी बातें। एंड मैं चाहती हूँ कि जब ऑन ईयर आप बात करें तो आपकी आवाज़ तमाम श्रोताओं तक स्पष्ट रूप से जाए। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा।
1: जबलपुर एमपी से सुशील बोल रहा हूँ। आदरणीय खुशी मैडम जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
0: जी नमस्कार, आपको भी सर। मैं बहुत ही अच्छी हूँ अशोक जी, आप बताइएगा, आपके घर परिवार में सब ठीक है?
1: सब ठीक है। मौसम कैसा है? इधर तो गर्म है अभी।
0: सेम पेंच सर, इधर भी बहुत ज्यादा गर्मी है जी। आप बताइएगा सर, आज अभी आपने बताया कि आपके घर पर मेहमान आए हुए हैं, आपकी डॉटर आई हुई हैं एंड बहुत सारे बच्चे भी आसपास बैकग्राउंड में आपके बोल रहे थे, तो छुट्टियों में सेलिब्रेट करने आए नानी के घर पर?
1: वो तो रहते ही है, वो तो रहता है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है जी। आप बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: नतीजा का सुनवा दीजिए, मोहम्मद रफी लता की आवाज
0: जी। कौन सा गीत सुनेंगे सर?
1: सामान मैंने थोड़ा ले लिया।
0: अच्छा ठीक है अशोक जी, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का और मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी मुझे कॉल लगाओ। नंबर है 9837896896। ये खूबसूरत सा गीत आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब साथ में लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, एंड फिल्माया गया है ट्रैक धर्मेंद्र जी और साथ में हेमा मालिनी जी पर। बहुत ही खूबसूरत सा गीत, सुनिएगा। मैं लौट कर आती हूँ बस अभी।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और खूबसूरत गीतों का तो आप आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, अच्छा लगता है ना जब नए नए श्रोता हमें कॉल करते हैं, अपने मनपसंद के गीत सुनते हैं। आई होप आप भी इस कार्यक्रम को एंजॉय करते होंगे और आप भी कॉल लगाने का प्रयास करते होंगे। ये तो मैं जानती ही हूँ, बहुत सारे श्रोता इस समय लगातार कंटिन्यू हमें कॉल कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि काश हमारा भी कॉल लग जाए। तो ऑफ कोर्स आपका कॉल लगेगा एवरीवन, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ कौन कनेक्ट हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नाम
0: जी कहाँ पर सर? प्रकाश नगर में।
1: जी आजाद नगर आईटी ऑफिस।
0: ओके आजाद नगर में जी, बताइएगा सर कैसे हाल चाल है आपकी?
1: बस बढ़िया, मैं अक्सर एफएम सुनता हूँ जब गाड़ी में बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ। आईटी ऑफिस से रामगंगा विहार।
0: ओके,
1: तो मैं अक्सर लेकिन लग नहीं पाता था,
0: और आज फाइनली आपका कॉल लग गया है। तो कैसे लग रहा है आपको सर?
1: एफएम की तो वाइब सॉन्ग की अलग ही होती है।
0: एग्जैक्टली राइट,
1: कितना भी सॉन्ग सुन लो लेकिन एफएम की तो वाइब की अलग है।
0: एग्जैक्टली राइट सर, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मेरे साथ में मेरी वाइफ है, बच्चा है, तीनों होते हैं। हम सुनने के अलावा कॉल लगाए, हर बार लगाते लगता नहीं है।
0: और आज आपका लक साथ दे दिया है, आज आपके लक नहीं, तो बताइएगा आप कौन सा ट्रैक सुनेंगी सर?
1: यही सुना दी वाइफ, साथ में तू है तो मुझे और क्या चाहिए।
0: बिल्कुल जी, जब अच्छा हम सफर साथ हो जाता है, साथ मिल जाता है, तो फिर और क्या चीज चाहिए, कुछ नहीं, मानो सब चीजें मिल जाती हैं। जी थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपकी पसंद का। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक सर की पसंद का, और साथ में इनकी पूरी फैमिली इस समय राइट नाउ गाड़ी में है ऑन द वे। और जब कार में अपनों के साथ होते हैं ना, तो गाने सुनने का मजा कुछ और ही होता है, और इस सफर को खूबसूरत बनाएगा ये प्यारा सा गाना, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक अरिजीत सिंह जी की, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़। तो सुनिएगा आप, मैं लौट कर आती हूँ, बस आप मुझे फ़ोन लगाना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर है 9837896896। तो चलिए लुत्फ़ उठाते हैं इस प्यारे सी गाने का।

हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का आरजी खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर हेलो फरमाइश शो में। और दोस्तों, जब अपने अपनों का साथ होता है ना, तो फिर किसी चीज़ की नीड ही नहीं होती है। और जब कोई सच्चा और अच्छा इंसान मिल जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारे जहां में हमें सब कुछ मिल गया है, किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। और अगर आपके पास ऐसे शख्स हैं, ऐसा इंसान है जो आपके दिल के बेहद करीब है और सच्चा भी है, अच्छा भी है, तो उसको संभाल कर रखिएगा। और अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।

0: मैम।
1: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? योर गुड नेम सर।
0: मैम सतीश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता चंडीगढ़ से।
1: जी, रेगुलर लिस्टनर हमारी बात कर रहे हैं सतीश शर्मा जी चंडीगढ़ से। बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी?
0: बस मैम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताएं।
1: हाँ जी, आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आप बताइए सतीश जी, चंडीगढ़ का वेदर कैसा है अभी राइट नाउ?
0: मैम इस टाइम तो बादल छाए हुए हैं, बारिश आने की उम्मीद है।
1: अच्छा, मौसम सुहाना है।
0: सुहाना होता है, टेम्परेचर भी 29-30 डिग्री होगा।
1: ओके, हमारे इधर 35 डिग्री सेल्सियस है।
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: मौसम ऐसे
1: जी,
0: लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी।
1: शायद हमारे यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। आप
0: हाँ जी मैम,
1: बताइएगा, आप कौन से गाना सुनना चाहते हैं सतीश जी आज?
0: आज मैम फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल,
1: हाँ
0: उसमें किशोर
1: जी,
0: कुमार का गाना है परदेसी यार ये सच है पिया। हाँ
1: ओके। सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया, इस तरह से
0: जी, हाँ
1: लिरिक्स
0: जी
1: है ना?
0: मैम,
1: जी
0: बहुत अच्छा गाना है मैम ये।
1: हाँ जी, बहुत प्यारा ट्रैक है सर। कुछ कहना चाहते हैं आप अपने दोस्तों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं?
0: मैम सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, और खासकर परवेज अहमद जी और नेत्रपाल जी, इनको
1: जी
0: ये गाना डेडिकेट भी रहेगा और आपको भी।
1: ठीक है सर, थैंक यू सो मच
0: मैम
1: जी। इस गाने को
0: बहुत
1: आप
0: ही अच्छा
1: एंजॉय
0: प्रोग्राम है,
1: कीजिएगा
0: काफी देर से सुनता था ना प्रोग्राम, काफी अच्छा लग रहा था।
1: जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर, थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार ऐसे ही हमेशा बनाए रखिए एफएम मुरादाबाद के प्रति, और एंजॉय कीजिएगा प्यारा सा गीत। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का, एंड हम अब आपसे लेते हैं जाने की अनुमति। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन ना लें, हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर भी यहाँ पर आ चुके हैं, आरजे रीना जी। आपको करेंगी ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज, वो आपको देने वाली हैं, आपकी शाम को बनाएंगी बेहतरीन। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कॉल नहीं लगा है ना आज, तो आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइएगा, ये मौका आपको कल भी मिलेगा। जैसे आपने आज कोशिश की है, आप कल भी कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कॉल ज़रूर लगेगा। एवरीवन, खुद पर विश्वास रखिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। मैं अब आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। और ये प्यारा गाना सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा किशोर दास जी की आवाज़ में।

0: अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: फ्रांस।
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
10: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
9: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
11: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
12: हाँ जी की हाल है?
13: All good?
12: You okay? What happened?
13: तू ब्याह करा रही है?

मैं एक दिन कला सोच बैठा, फी दारू बाहा नोच बैठा। कौन कहंदा मैं रब नहीं लभ्या, मैं दरते उदे रोज बैठा। तू ना होवी पावे असी आप ही उठ जाना है। चल पैग आखरी है, फिर आप ही मुक जाना है, फिर आप ही मुक जाना है।

It's just like a very cool way to approach.

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ 43986/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89

लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि देखिए, सिर्फ बॉडी वॉश करने से कोई पाप नहीं धुल जाता है। आप घर रह के भी किसी के लिए अच्छा सोच के, किसी के लिए अच्छा करके भी आप पुण्य कमा सकते हैं। गंगा स्नान तो सिर्फ एक भ्रम है कि हमारा जो हमने पाप किया है वो मिट जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ गंगा को और मैला करने चाहते हैं, अपनी बॉडी को धोकर बस मैला ही कर रहे हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को तो शुद्ध कर ही नहीं रहे हैं। हमारे मन में इतना तो पाप भरा हुआ है, हर किसी के प्रति हम ये नहीं चाहते कि वो मुझसे आगे बढ़े या वॉट एवर जो भी कुछ है। लेकिन बस आप सभी से यही कहना चाहेंगे, ये 30 साल बाद सोमी अमावस्या है, इस पर बस एक ही गंगा स्नान करें ना करें, लेकिन अपने आप से एक संकल्प जरूर लीजिए कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। जो खुश है उसको खुश रहने दो, उसकी खुशी नहीं छीननी चाहिए। अगर आपने उसकी खुशी छीनी, बुराई की, तो आपसे बड़ा महापापी कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी को सोमी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें बस अपने पर ध्यान देना है, किसी और पे नहीं गाइस। क्योंकि जब हम अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी सोच हम बदलेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि भीष्म पितामह जबकि गंगा के पुत्र थे ना, वे भी नहीं बच पाए। जब पूरा लास्ट में देखा गया था कि तुमने अपनी अपनी जिंदगी में करा क्या है, तो जब वो नहीं बच पाए गंगा पुत्र होते हुए, तो हम कौन से खेत के मूली है जो हम बच जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी सोच को बदलिए, बस फिर देखिए अपने आप सब ठीक हो जाता है। चलिए, बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यार आपने गाना एंजॉय किया है अर्जेंटीना के साथ। कनेक्ट है आप, और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यहाँ पर, यानी कि 5:27 श्रोताओं, और इवनिंग मस्ती शो में ढेर सारी बातें करने के लिए रीना है ये आपके साथ स्टूडियो में, यानी कि शाम के 7 तक धमाल करने वाले हैं। और आज की तारीख ना हमारे लिए बहुत खास है, हम सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज है 15 जून, सोमी अमावस्या, और साथ ही साथ जैसे हम प्रेम आस्था हर श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं अपने मन को शांति के लिए, कुछ कोई मांगने जाता है तो बस कोई भगवान से कनेक्ट होने जाता है, और कोई बस रील बनाने के लिए कि भैया हम ठीक है मंदिर आए हैं, रील बना लेते हैं ताकि सबको पता लगे कि मैं यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि आजकल के जो दौर है ना, वो आस्था कम दिखावा ज़्यादा हो चुका है। सो आज यानी कि विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज कैची धाम में आस्था, यानी कि क्योंकि आज 15 जून है और 15 जून को ही ये स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 जून को ही इसी दिन और इसी तारीख को विश्व प्रसिद्ध नीम करौली बाबा का यहाँ पे स्थापना हुआ था। और ये कहा जा रहा है कि आज 9 चूल्हों पर यानी कि महाप्रसाद बनाया जाएगा, और यहाँ पर आप कभी भी देख लेंगे ना श्रद्धालु, यानी यहाँ पे रस इतना ज़्यादा रहता है, और आज तो वैसे भी रंग बिरंगी, मतलब वहाँ का जो नज़ारा है वो देखने का अलग ही मज़ा है। अगर आप में से कोई गए हैं वहाँ पर नीम करौली बाबा पर, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी तक नहीं गए क्योंकि देखिए मैं भी नहीं गई हूँ तो हम सब मिल के चलेंगे, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जब मंदिर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ फ़ोन ना स्विच ऑफ कर देना चाहिए, साइलेंट, बस हमें भगवान के साथ कनेक्ट होना है, उन्हें फील करना है, तब देखिए आपके अंदर एक अलग ही वाइब आएगी। क्योंकि डिजिटल ज़माने में हम मंदिर तो जाते हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, तो ये चीज हटाना है। और आइए, एक मैसेज भी आया है और आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप ऑन द वे हैं, अगर कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल मैसेज करके हमें बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। और ये मैसेज आता है हमारे पास, हेलो हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हो, आपका दोस्त विक्की सागर मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और करते हैं और भी ढेर सारी बातें। फिलहाल के लिए आपने कितने नहीं जाना जी, बस आर्जेंटीना के साथ कनेक्ट रहना है, जहाँ पर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें jani.upda.in पर जाकर, या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986105/2026, जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोनिया।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने ट्रैक सुना है, वो भी पंजाबी। जो पंजाबी गाने होते हैं ना, सच बताओ बड़े चंगे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। और दिस साइड आरजेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 5:38 हो चुके हैं श्रोताओं। और आज भाई सड़कों पर ना इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि क्या ही कह सकते हैं। सो आप सभी से, देखिए आप ट्रैफिक में हैं तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि आज ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि 30 साल बाद आई अमावस्या, हर कोई गंगा स्नान के लिए निकल चुके हैं, आस्था की तरफ निकल चुके हैं, सुबह निकले और शाम को रिटर्न घर के लिए। तो सोचिए बहुत लंबी लाइन है। हरिद्वार की बात करूँ तो अभी वहाँ पर इतनी भीड़ है कि गाड़ियों की लंबी लाइन, लंबी कतारें लगी हुई है कि बस थोड़ा सा हमें मतलब जगह मिल जाए जहाँ से गाड़ियाँ निकाल पाए लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। तो और गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ बात करें तो वहाँ पर भी बहुत बहुत रस है। सो आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा प्यारा नंबर है 9837896896 पर, ताकि जो उस रूट से आ रहे हैं ना वो बच सके। और विक्की सागर जी के कहने की, रीना जी बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में आंधी तूफान बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के भी कई राज्यों में बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए अगर मैं सोनीपत की बात करूँ तो आज मैं सुबह जब घर से निकली तो इतनी तेज बारिश लग नहीं रहा था, कि मुझे लग रहा था कि आज भाई सब जगह बारिश ही बारिश हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने दिल्ली में मतलब ट्रेन में बैठने के बाद इतनी तेज़ धूप देखी ना, मैंने कहा वाह, ये कैसा। भगवान जी के भी अलग अलग लीलाएं होती है, कहीं पर बारिश, कहीं पर आंधी तूफान, कहीं पर इतनी तेज़ धूप कि लोग सहन नहीं कर पाते, बस इतनी गर्मी। भगवान जी एक ही तो वो रखो टेम्परेचर, ये नहीं कहीं पर भैया 46, कहीं पर 35, अपने मुरादाबाद की बात को तो 35 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। तो गर्मी हवाएं, अगर हवाओं में नमी हो ना तो गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हवाओं में नमी नहीं होती है ना तो गर्मी तो प्रचंड वाली गर्मी पड़ती है ना। चलिए फिलहाल एक और गाना, उसके बाद कनेक्ट होते आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें।

0: 야, 약간 트림 마음이 좀 나게.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 5:52 हो चुके हैं श्रोताओं, और एक ऐसी जब हम कहते हैं ना कि जिंदगी से हम बार बार हार जाते हैं, लेकिन जिंदगी समय हार नहीं माननी चाहिए। मैं ये छत्तीसगढ़ की है, यानी कि चारू पांडे जो कि 23 साल की एज में 19 सरकारी परीक्षाएं पास की है, और हर परीक्षा में एग्ज़ाम में इनको सफलता ही मिली है। तो कहते हैं ना कि मेहनत और आपका लगन, सोचिए वो सिर्फ और सिर्फ 23 साल की लड़की है और उसने परीक्षाएं कितने पास की है, यानी कि 19 एग्ज़ाम में सफलता ही मिली है उसको, और उसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। यानी कि हमारे देश में इसने, इस लड़की ने, मतलब चारू पांडे ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कि देखिए, एज मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपकी अचीवमेंट, आपका गोल क्या है, आप क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हो। तो जो हार मान जाते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी देखिए परीक्षाएं लेती हैं, लेकिन हमें उन्हें क्रॉस करना होता है, तभी आप अपने ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। फिर हर कोई चारू बन सकता है श्रोताओं, बस एक मेहनत की ज़रूरत होती है। आप मेहनत करेंगे ना तो आपको हर वो चीज़ मिलेगा जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किस्मत पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म अच्छे करो, किस्मत अपने आप बन जाती है। और बहुत से कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत है जो लग गई इतनी अच्छे, तुम एग्ज़ाम में क्लियर कर गए एग्ज़ाम। अरे कोई ये नहीं पूछता है उससे कि तेरी इसके पीछे की लगन और पढ़ाई क्या रही होगी, कभी इससे पूछ के देखना। दूसरी बार आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा इसकी किस्मत अच्छी है। तो इसीलिए किसी के बारे में ये बोलने से पहले ना, किस्मत अच्छी है, उसके स्ट्रगल के बारे में ज़रूर पूछना कि उसने कितनी मेहनत की। चलिए फिलहाल एक गाना, उसके बाद कनेक्ट होती है।

0: कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर

0: 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
3: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
2: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद के प्रेरक कहानियों की
6: के साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। आर्जरीना के साथ कनेक्ट हैं आप और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:24 हो चुके हैं श्रोताओं, और आर्जरीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई हैं। और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि 15 जून है और 15 जून को भाई खास डेज मनाए जाते हैं, जिसमें से है, सुनिए जरा ध्यान से, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और जब बात प्रकृति की हो तो हर तस्वीर अपने आप में खूबसूरत कहानी बन जाती है। आज 15 जून को मनाया जाता है प्राकृतिक फोटोग्राफी दिवस, यानी कि यह दिन हमें प्रकृति की अनोखी सुंदरता को देखने, समझने और उसके सहेजने की प्रेरणा देता है। हरे भरे पेड़, खिलते फूल, पक्षियों की चहचहाट और सुनहरी धूप, ये सब हमारी धरती की अनोखी धरोहर है। सो हम कहीं भी घूमने जाते हैं, जब देखते हैं कि भैया फूल, आए हाय क्या प्यारा फूल खिला हुआ है, सनसेट है, हम कहीं

भी घूमने जाते हैं हम उसकी तस्वीर अपने फ़ोन में ज़रूर कैद करते हैं और फिर उसको ना स्टोरी लगाते हैं कि वाओ क्या खूबसूरत नेचर है। तो क्यों ना आज हम अपने मोबाइल में या कैमरे के साथ निकले एक प्रकृति के खूबसूरत रंगों की तस्वीर में कैद करें। याद रखिए, प्रकृति जितनी सुंदर रहेगी हमारा जीवन भी उतना ही खुशहाल रहेगा। प्रकृति से प्यार कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए और उसी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाइए। हैप्पी नेचर फोटोग्राफी दिवस। सो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आपके फ़ोन में, देखिए हम घूमने जाते हैं, प्रकृति की फ़ोटो ज़रूर खींचते हैं, तो आपने हमें मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896। जब भी आप बाहर जाते हो बरसात में या कहीं आपको सनसेट दिखे या फिर बहुत प्यारा नज़ारा दिखे पहाड़ों का हो, एनीवे कुछ भी हो, आप फ़ोटो ज़रूर खींचते हैं ना, तो आज मुझे महसूस करके बताना है कि क्या आप वाकई में फ़ोटो खींचते हैं और उसे महसूस करते हैं कि वाह आज का जो वेदर है, मौसम है, मज़ा आ गया इसे देखकर, है ना। सो आप महसूस करके बता सकते हैं श्रोताओं, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, सच बताओ, फोटो तो मैं ज़रूर क्लिक करती हूँ और ढेर सारी बातें भी करनी चाहिए हमें प्रकृति के ऊपर। सो चलिए, एक बहुत ही प्यारा गाना, इस गाने को एंजॉय करते हैं, फिर लौट कर आते हैं।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है आर्जरीना के साथ। अब कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, चाहते रहे गुनगुनाते रहे जी, जो आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारी बातें और कुछ मजेदार गाने, जो सच बताओ सुनने के बाद लगता है कि आहा मजा आ गया। और आज की थोड़ा हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी उतनी है और साथ ही साथ ना रात को बहुतों की आदत हो जाती है कि भाई जब भी आप सोने जाते हो ना, एक घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर आपको वॉशरूम जाना पड़ता है भाग के। कभी कभी ना इतने परेशान हो जाते कि भैया लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है बॉडी में, क्या दिक्कत आ गई है क्या दिक्कत नहीं आ गई है, हम परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं कहूँ इस का सोल्यूशन है, तो देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है हमारे पास, है ना, हम सभी के पास सोल्यूशन होता है, बस हमें उसको देखना पड़ता है कि आखिरकार क्या हो सकता है, क्या हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, क्या डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप में भी ये प्रॉब्लम है कि आप रात को सोते समय एक घंटे दो घंटे के बाद आधे घंटे के बाद, कोई कोई तो 15 मिनट के अंदर ही चला जाता है वॉशरूम, मतलब पता नहीं रात होते होते क्या हो जाता है, तो उसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा फंडा है, यानी कि घी में आपको मखाने रोस्ट करने हैं और उसके बाद अगर आप उस मखाने को खाते हैं, तब ये कहा जाता है कि जो वॉशरूम बार बार जाने की हैबिट आपको रात को बन जाती है, वो आपके रूटीन में चेंज होने लगेगा। सो आपने ये ट्रिक ज़रूर करना है, ठीक है जी, अगर आपको बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक कड़क सवाल भी लेकर आएंगे आप सभी के लिए, फिलहाल के लिए बहुत ही प्यारा गाना।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। और इसी बीच रीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है भैया कड़क सवाल। आखिरकार आज का कड़क सवाल क्या होने वाला है? आई नो कि आप सब भाई दो दिन से ये सोच रहे होंगे ना, दो तीन दिन से, कि रीना कड़क सवाल लेकर नहीं आ रही, क्या बात है। फिलहाल मैं आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आ गई हूँ। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि रेडियो का जो वॉल्यूम है ना मेरे प्यारे प्यारे श्रोताए, उसको आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, तभी आपको भैया क्वेश्चन यानी कि जो आज का कड़क सवाल है वो आप सुन पाएंगे और आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। उसका आंसर भैया सच बताऊं सोचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना आसान आज क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि वह कौन है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं देख सकता है। सोचिए और हमें फटाफट मैसेज करिए। नंबर है 9837896896। वन सेकेंड, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, डोंट वरी। सो ये है वह कौन है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और जिस पर एक बार ही, मतलब जो सिर्फ एक बार देख सकता है वो दोबारा नहीं देख सकता है। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और फिर मैसेज करना पड़ेगा। ओहो, एक मैडम का मैसेज ही आ गया। मैडम थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, आराम से बताओ, धीरे से बताओ। ओके जी, आराम से धीरे हौले हौले बताती मैं आपको, सुनिए जरा। वह कौन है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं देख सकता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद फिर कनेक्ट होंगे एक गाने, बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। फिलहाल के लिए गाना

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: पता है पेप्सी बड़ी होगी,
1: बड़ी पेप्सी 20 में 400 ml।
2: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और कभी कभी लाइफ में ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, है ना। हम कभी सोचते नहीं है, और हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी कभी वही आपको बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना श्रोताओं, कभी भी यानी कि ये अटैचमेंट नाम ही बहुत गलत है। जब किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है ना, और वो आपका दोस्त, आपका साथी थोड़ा सा भी नोकझोंक हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी बेकार है, है ना। तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, बस अपने करियर पे फोकस करना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फिलहाल आज के लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है कि वह कौन है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है, और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं देख सकता है। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए, क्योंकि बारी अब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और फिर आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे और लेंगे यहाँ से जाने की इजाज़त। फिलहाल के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा गाना।

0: बीको बेस बसंदे, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है सुल्तान मूवी से। और समय की बात करूँ तो 6:56 हो चुके हैं, अर्जुनीना के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती यानी कि शो में। सोच चलिए इस इवनिंग को और भी शानदार बना देते हैं, आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आ गए ना उनको शामिल कर लेते हैं। लेकिन शामिल करने से पहले आज का कड़क सवाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, जहां आपको सोचने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है। ये कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आपको दिख जाए तो ये कहा जाता है कि 100% श्योर होते हैं कि भाई ये पूरा होने ही वाला है ना। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ। सुबह सुबह हम क्या देखते हैं और एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं यार ये सच में पूरा हो जाएगा, है ना। उन्हें सुबह सुबह 5 बजे के समथिंग देखा है, 4 बजे के समथिंग देखा है, अब वो डैश है क्या देखा है क्या नहीं देखा है, अभी तो आंसर आप सभी के प्यारे मैसेज पढ़ने के बाद पता लगेगा। फिलहाल आज का कड़क सवाल ये है कि वह कौन है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं देख सकता है। तो चलिए क्यों नहीं देख सकते हो दोबारा, तीसरी चौथी बार भी देख सकते हैं। चलिए जी, ये मैसेज आता है हमारे पास। हेलो, गुड वाली इवनिंग है रीना मैम, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है, क्या बात है जी, बहुत मतलब खुश हो जाते हैं मैं ना, हाँ आपकी मैसेज देखकर। और कहें इनका कहने कि शाम का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, गाना है ना, चले ठंडी पवन हवाएं हवाएं। सो अगला गाना है मैम चाय पी लीजिए, अरे हाय क्या बात है, सच में आज तो चाय की नीड भी है क्योंकि इस थकान, जब आप ट्रैफिक में से आओ ट्रैवलर करके आओ तो थोड़ा बहुत थकान तो हो ही जाता है और उस दिन तो चाय तो बनती है ना। हम आपका शो सुन रहे हैं, हमेशा शाम का आपका इंतज़ार रहता है लेकिन आप 2 दिन नहीं आई, अच्छा नहीं लगा, आए हाय क्या बात है जी, 2 दिन में नहीं आई, कोई बात नहीं जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब आप सभी के साथ में कनेक्ट नहीं होती हूँ तो मुझे भी सच में नहीं अच्छा लगता है। और देखिए जैसे मैंने अपनी छुट्टियाँ कंप्लीट की आप सभी के बीच मैं आ चुकी हूँ। और ये लिखते कि गाने बिंदास सुना रही हो और आंसर इनका है सपना, ओके सपना है, चलिए देखते हैं और मैं सब शामिल करते हैं। ये हमारे साथ राहुल जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि जो बार बार देखे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं, हम दोबारा भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, जब आप सो तब देख सकते हैं, वो है सपना, क्या बात है जी। कहीं सपना चौधरी की तो नहीं बात कर रही मैं फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये मुरादाबाद से हमारे साथ अंशिका जी कनेक्ट होती हैं, ये बुद्धि बिहार से हैं और इनका कहने कि मैम सपना है और मेरा एक सपना पूरा हुआ है जो कि मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं जी, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखना ही बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर लाइफ में हर चीज़ ऐसे रिवील नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो ये राधिका जी कनेक्ट होती हैं लाइन पार से और इनका कहना है कि मैडम जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना वो है सपना, क्या बात है, लगता है भैया सबने गूगल तो नहीं किया आप सभी ने आप सभी के आंसर राइट आ रहे हैं, क्या बात है जी। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो अगले हमारे साथ चिंटू जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि सपना है मैडम जो कि आपने पूछा है, जरूरी नहीं कोई एक बार आए दोबारा ना आए, वो दोबारा भी आ सकता है लेकिन ये कहा जाता है कि जिस दिन आप ज़्यादा मतलब थकान हो तभी, मुझे अच्छा थकान के टाइम इनको इनका कहना है कि थकान के टाइम ज़्यादा सपने आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो वो आपके ख्यालों में रहता है और कुछ चीज आपको मतलब सुबह 4 बजे दिख जाए और वो पूरा हो जाए तो उससे बड़ी बात ही क्या है। लाल विकी सागर जी का भी कहना है कि राइट आंसर होता है सपना, सपना चौधरी वाली नहीं है ये, सपना है। ओए हाय क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना और इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ श्रोताओं यहाँ से, इसीलिए कहते हैं बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे फेडर ऊपर करना पड़ रहा है बार बार। सो अपनी सेहत का ध्यान रखना श्रोता बहुत ज़रूरी है। और ये जो मौसम बार बार ख़राब हो जा रहा है, कभी बारिश कभी धूप, कभी एसी में आना, कभी बाहर धूप में जाना, पसीने में आके नहा लेना, पानी पी लेना, ये छोटी छोटी गलतियाँ ना हमारे लिए बहुत हार्म हो जाता है। सो आज के विनर बनती है मेरे शो में, यानी कि ललिता कश्यप जी आप मेरे शो के विनर बनती है। और इसी के साथ मैं क्या करती हूँ जी, अब वेट बताती हूँ, मैं यहाँ से लेती हूँ जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह जहाँ करेंगे हम ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।
1: बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट विट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है।
3: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 GW की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को

मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.updae.in पर जाकर, या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43981/05/2026। जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद की प्रेरक कहानियों की,
5: के साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।
6: सुनो सुनो

0: राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल मंच आकर्षक ब्रांडिंग और आधुनिक पैकेजिंग ई मार्केटिंग और डिजिटल प्रमोशन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण आसान ऋण और सब्सिडी प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम इससे छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है।
1: नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं जनपद गाजियाबाद में उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2018 में प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के नाम से लॉन्च करी थी, जिसके माध्यम से जो हमारे परंपरागत आर्टिजन हस्तशिल्पी या हमारे जो परंपरागत उत्पाद रहे हैं 75 जनपदों में, उनको बड़े स्तर पर कामयाबी मिली और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही। और उसी के आधार पर भारत सरकार ने भी एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की। अब एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, जो औद्योगिक उत्पाद हैं, उनको या आर्टिजन्स हैं, उनको हमने कवर किया। अब उसी कड़ी में हमारी एक नई योजना एक जनपद एक व्यंजन योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार हमारे समस्त जनपदों के जो पारंपरिक रूप से जो खाने पीने की चीजें या व्यंजन हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है। हमारी जनपद की कुजीन, जैसा कि आपको पता है, गाजियाबाद में सोया चाप और मिर्च का अचार दो उत्पाद यहाँ ODOC के तहत चयनित किए गए हैं। अपने जो हमारे परंपरागत बनाने वाले लोग हैं, इसको उनकी ट्रेनिंग भी देंगे, उनको टूल किट्स भी देंगे और उनको लोन के माध्यम से जो उनका अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग उनका जो भी यूनिट औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से या अपने घर पे कुटीर उद्योग के में अगर वो बना रहे होंगे उसको, या रेस्टोरेंट के माध्यम से सोया चाप अपना बेच रहे हैं, तो उनको हम फाइनेंस भी देंगे कि वो अपने काम को और अच्छा कर सकें और उसके बाद वो उनको बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग और उनको मार्केट अवेलेबल कराने का भी काम इस स्कीम के माध्यम से किया जाएगा।
2: ये कहानी सिर्फ चाप और अचार की नहीं है।
0: बिल्कुल, आत्मनिर्भरता, नवाचार और सशक्तिकरण की कहानी। आज गाजियाबाद का सोया चाप दिल्ली NCR के बड़े होटलों तक पहुंच चुका है। सरकार की नीति स्पष्ट है, स्थानीय को वैश्विक बनाना है।
2: मुझे तो अब भूख लगने लगी है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, अगली बार जब आप गाजियाबाद जाएं तो एक प्लेट मलाई चाप और साथ में हरी मिर्च का अचार जरूर चखिए। उस स्वाद में आपको मेहनत, परंपरा और सरकार की दूरदर्शी सोच तीनों का मेल मिलेगा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना ने यह साबित कर दिया है कि सही नीति और सही दिशा मिले तो हर जनपद विकास की मिसाल बन सकता है।
0: विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों में नहीं, विकास झलकता है थाली के स्वाद में, युवाओं के रोजगार में और उद्यमियों के आत्मविश्वास में।
2: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए स्वाद और एक नए विकास के साथ। यही है
0: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: چلیے شوتاؤں، اب ہم لیتے ہیں آپ سے جانے کی اجازت۔ آپ سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف ایم مرادآباد 89.6 ریڈیو، بجاتے رہیے گنگناتے رہیے۔
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद।

0: है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है. आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो.
1: क्या बात है.
0: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है.
1: जी जी प्लीज.
0: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से.
1: ब्यूटीफुल.
0: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से.
1: वाओ.
0: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से.
1: क्या बात है.
0: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या.
1: जी.
0: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है.
1: हाँ जी.
0: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं. अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है. ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स.
1: हाँ जी.
0: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है. एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं.
1: Alright.
0: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है. समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस.
1: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है. तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी. आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया. सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है.
0: जब बेबी डिलीवर होता है एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं. जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं.
1: जी, जी.
0: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं.
1: जी, जी, जी, जी.
0: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा.
1: जी, जी, जी,
0: जी. ये कॉमन चीजें हैं. कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं.
1: हाँ जी.
0: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए. ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है. तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. ठीक है. अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए. ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें.
1: ओके. सो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया. और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस. अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: हम
1: जी.
0: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ. इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं.
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक.
0: Sort of, it's a different thing.
1: All right.
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है.
1: okay,
0: जो कम वजन के बच्चे होते हैं.
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है. इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है. बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है.
1: जी.
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है.
1: okay.
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें. नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है. कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है,
1: तो जी, जी.
0: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है. कुछ कुछ जगह

0: अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं.
1: ओके
0: ठीक है. बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी.
1: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए.
0: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियल

0: 2 to 3 hourly हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रहे हैं, उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध। तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले। क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है, वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही है तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही है, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो

0: कॉमन कॉमन चीजें होती हैं सबसे पहले,
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट, सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं, उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डाइपर तो वेट नहीं है। कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें
2: नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
3: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
4: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा अवसर मिलेगा।
3: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
5: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं से किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
3: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप देखेंगे।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
1: याद है बोनस के कुछ
3: स्किन बाल नाखून समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट कांट रोड मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: चलो बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक्स में हूँ और साथ ही मैं एपेक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं GTB अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
0: वैसे मैम अगस्त का महीना चल रहा है और
1: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
0: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए?
1: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी जुकाम पेट कान के इन्फेक्शन इन सब से रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती
0: है। ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
1: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
0: जी,
1: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इन सब से भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है। आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम, बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
1: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब ये है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं?
1: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 1-1.5 घंटा सूता है, दिन में 6-8 बार यानी कि 24 घंटे में 6-8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि एक महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
0: जी, अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
1: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती है। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बच्चे को मिल जाएंगी, इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
0: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
1: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी, 112 बाल जीवन घुट्टी, कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
0: जी, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है, वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
1: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय, हर जगह, हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है, किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
0: जी,
1: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
0: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार, बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
1: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
0: जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके, इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
5: तो लेन देन
4: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
5: ओ,
4: जैसे UPI से।
5: अच्छा,
4: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
4: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: आम भी ना मम्मी जी।
6: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
7: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश।

0: चार आरोपी गिरफ्तार और दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के तहत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर एक विशाल सफाई अभियान चलाया। इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मां यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना था। इस अभियान में 15,000 से अधिक नागरिकों, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान यमुना के घाटों, नदी तटों और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों की व्यापक सफाई की गई। 116 से अधिक मीट्रिक टन कचरे को इकट्ठा कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: अभियान के दौरान एकीकृत किए गए कचरे को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारित किया गया, जबकि पूजा सामग्री और खंडित मूर्तियों का अनुकूल तरीके से विसर्जन सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और जन भागीदारी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर यमुना पुनर्जीवन के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 8 ट्रस्ट स्कीमर, 28 नावे, 28 जीसीबी मशीनें, 84 लोक निर्माण विभाग की मेंटेनेंस वैन और एक एम्बुलेंस तैनात की गई थी। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ यमुना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का पहला चरण 22 जून को डिजिटल शुभारंभ के साथ शुरू होगा। दूसरा चरण जुलाई के पहले सप्ताह में मेगा रिज वृक्षारोपण अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जुलाई के मध्य में तीसरा चरण होगा, जिसमें जन भागीदारी के साथ बड़े स्तर पे पौधारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 11,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अभियान को सफल बनाने के लिए वृक्ष रथ चलाए जाएंगे। ये रथ कॉलोनियों, आवासीय परिसरों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त पौधे पहुंचाएंगे। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभियान के तहत ई फॉरेस्ट, ग्रीन ड्राइव पोर्टल, वृक्ष रथ, जियो टैग पौधारोपण और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाले पर्यावरण रक्षक प्रमाण पत्र जैसी पहले शुरू की जाएंगी, जिससे लोगों की भागीदारी और आसान तथा प्रभावी बनेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी के विकासपुरी में एक नए आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह आधुनिक सुविधा दिल्ली के नागरिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री संधू ने कहा कि यह सुविधा हजारों स्थानीय निवासियों के लिए जरूरी डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच और सुरक्षित तथा तेज प्रसंस्करण को सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी क्षेत्र से विधायक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद संस्थानों में आधार नामांकन की सुविधाओं को जन्म पंजीकरण सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।
3: आधार के माध्यम से नवजात शिशुओं के लिए नई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अब एनसीडीएस, एनडीएमसी में नवजात शिशुओं के जन्म पंजीकरण के साथ आधार नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे नवजात बच्चों के जीवन के प्रारंभिक चरणों में ही विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं का जोड़ना संभव होगा।
0: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मेट्रो मंडे पहल के तहत आज मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जनकपुरी पश्चिम मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की और उसके बाद स्कूटी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस अवसर पर श्री सूद ने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया कि वे पेट्रोल और ईंधन बचाने के लिए मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो से सफर करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।
4: राज्य सरकार ने सोमवार को मेट्रो मंडे का दिन दिया है, अपने सब कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने का भी निर्णय किया है। अगर उसमें से 25% पैसा वे लोग अपने मेट्रो कार्ड में डालेंगे, प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि हम ईंधन को बचाएं, इसको राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मैं हर मंडे सफर करता हूं।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
5: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। पहली उड़ान आज सवेरे लखनऊ से पहुंची। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज शास्त्री नगर में स्थित एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मॉनसून से पहले तैयारियों का आकलन करने के लिए इस बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखे हैं, जिससे वर्ष 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
7: हमारा प्रशासन व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हमारे अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी हैं 24 घंटे। जो सारे बैराज से सारे यमुना के ऊपर में जो ब्रिजेस हैं, पीछे से कितना फ्लो में पानी आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, अपर स्ट्रीम में कितना है, तो ये हर घंटे की मॉनिटरिंग उस पे रहती है। तो हर स्थिति से सरकार हमारी तैयार है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से पहले कल विशेष योग कार्यक्रम के लाइव योग सत्र में 4,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल इसका उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहल युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से युवा नागरिकों को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की समझ प्राप्त होगी। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों से देश और आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वन नेशन वन कार्ड योजना, लाखों लोगों को मुफ्त राशन और रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर लोगों, खासकर बुजुर्गों से ठगी करने वाले एक फर्जी बीमा गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी पहचान को छिपाते थे और खुद को विभिन्न बीमा कंपनियों का अधिकारी बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद, 3 कीपैड मोबाइल और 7 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान रहा 37.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 28
8: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए
0: सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में कल भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। कल का अधिक तापमान रह सकता है 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने शास्त्री नगर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें हुई शुरू और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
9: पापा लाइए 3,000।
10: क्यों भाई?
9: मेरी पॉकेट मनी।
10: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
9: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
10: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
9: अपना मोबाइल लाओ,
10: ले ले।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
4: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक OTP कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका OTP, ATM और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए, और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगी यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से ये भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
6: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
7: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर्स हैं, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं, उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
6: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब PhD भी कर रखी है आपने, फिर एडवोकेट।
7: PhD मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं। तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
6: तो मतलब PhD के बाद मतलब हाँ, एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
7: देखिए, जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी, और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाता था मैं। फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है MBA करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने MBA किया। MBA के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, और के लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई। मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
6: और मुझे लगता है कि सर, जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
7: बिल्कुल बिल्कुल।
6: तो सर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
7: देखिए, हम कोई भी चीज अगर फेसबुक

0: फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो एकदम 10 रुपए में मिलती है, तो कस्टमर क्या होता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर क्या होता है, जैसे ये जो है मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है, या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
1: उसके फोन में कनेक्ट हो
0: दूसरी
1: जाता
0: तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी हैं उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस। और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है। और जिससे हमें नुकसान हो सकता है, वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता,
1: करेक्ट करेक्ट,
0: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना एक। लेकिन आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी
1: फायदे
0: हैं।
1: भी है।
0: तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: यहाँ
1: बिल्कुल
0: किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर
0: जी
1: आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
0: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है, पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आप आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है, वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि वही जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
1: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
0: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
1: एक आसान जरिया,
0: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दे। और याद रखिए, ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, बिल्कुल, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
1: पैसे चाहिए थे,
0: पैसे चाहिए थे, या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
1: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
0: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में
1: चाबी दे दी।
0: तो जब आपने ओटीपी दे दिया, तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया उसने।
1: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी पैन या पासवर्ड मांगता है?
0: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है चाहे वो वित्तीय संस्था है, वो कभी भी ओटीपी पिन एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है, और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
1: बिल्कुल श्रोताओं नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
0: देखिए सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
1: बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें, तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें। और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मेरिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए 10 रुपए।
0: एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
0: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
0: देखिए सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है, क्योंकि फोन पे क्या होता है आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कि केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा है कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने QR कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये
0: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
1: ये बिल्कुल
0: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: देना है,
0: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओं, और
0: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी OTP जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है तो उसको भी साझा ना करें।
1: बिल्कुल, और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर, ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
0: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
1: बिल्कुल, मैसेज क्यों करेगा, क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख
0: लें, तो आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आप आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
1: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में श्रोताओं, आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
0: देखिए डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं, कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ED से हम बोल रहे हैं, कभी CBI से, कभी वो CBI या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
1: बिल्कुल,
0: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
1: क्या बात,
0: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं, हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
0: देखिए लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
1: तो फ्रेंड प्रूफ मिल गया उनको,
0: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो तो उसे पैसे की डिमांड कर सकता है या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
1: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं। इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो चाहे खाना हो, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लग गए हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया था तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें,
1: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
0: नहीं ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचें, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें। जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको सब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, या आपको इतने % छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
1: क्या बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
0: जी देखिए बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है URL पे जाते रहते हैं तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती उसी तरीके से
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: स्क्रीन पे हर चीज आपकी बेनिफिट की नहीं होती है ना। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है श्रोताओं, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
0: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
1: दुगना हो जाएगा।
0: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं तो सबसे पहली चीज कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
0: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो है उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए। ठीक है, तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930
1: 1930।
0: इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट हमने लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है। ठीक है, पैसे को रोकने की संभावना उतनी

0: देखो ये अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट आपने लॉन्च कराएंगे तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी, टाइमली आपने एक्शन लिया है तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
1: जल्दी करिए बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे मिल सकते
0: हैं, पैसे आपके वापस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहाँ से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
0: खाता तुरंत
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुन्दर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभी सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभी न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: महत्वपूर्ण स्तंभ है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU, इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
8: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 22 सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: TNC अप्लाई।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

लव यू से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका हम सफ़र अखिल, और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल के संग। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसा होता है जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। पहली साइकिल हो या पहली बाइक हो या आपकी पहली स्कूटी या फिर ऐसे किसी खास इंसान के साथ आपकी पहली राइड। तो कई लोगों के लिए तो पहली राइड आज़ादी का ऐसा एहसास होती है, तो कई लोगों के लिए प्यार की शुरुआत होती है। तो आज हम बातें करेंगे अपनी पहली राइड, चाहे वो हमारी साइकिल से जुड़ी हो, चाहे बाइक से जुड़ी हो, चाहे कार से जुड़ी हो। उसके लिए मैसेज करें, हमें बताएं और हमारे साथ शेयर करें अपने दिल से की बात 9837896896 पे। एक शायरी कुछ इसी से रिलेटेड, कुछ रास्ते मंजिल नहीं यादें दे जाते हैं, कुछ सफ़र हम सफ़र नहीं एहसास दे जाते हैं। पहली राइड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि सालों बाद भी वो पल मुस्कुरा जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कोई ना कोई पल होगा जो मुस्कुराता होगा कभी उस साइकिल को देख के, पुरानी अपनी या फिर बाइक को देख के? तो शेयर 3789689 पे।

0: यू ही चला चल राही यू ही चला चल। फिल्म का नाम है स्वदेश। आर्टिस्ट जो उसमें फिल्माए गए थे वो थे शाहरुख खान जी, और सिंगर हैं उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर जी। म्यूज़िक दिया था AR रहमान साहब ने। तो आज हमारी बात चल रही थी आपकी पहली राइड पे, और वो भी राइड ऐसी कि हमेशा यादगार रहे। मेरे को तो आप सब लोगों को, मेरे साथ क्या आप सभी लोगों को याद रहा होगा दोस्तों, जब वो पापा पीछे से पकड़ते थे साइकिल और हम लोग अपना बैलेंस बनाते रहते थे, और लगता था यार साइकिल तो कितनी बढ़िया चल रही है, मगर भूल जाते थे कि पीछे से किसी ने हमें हल्की सी सपोर्ट दे रखी है, हल्का सा हमें पकड़ रखा है कि हाँ भाई तू अपनी साइकिल सही चला। और बीच में कब पकड़ते पकड़ते छोड़ देते थे, और हमें ये भी एहसास नहीं होता था कि अरे ये तो साइकिल हम खुद ही चला रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब पहली आपकी जो राइड होती है, जब आपको कोई सिखाने वाला होता है तो किस तरीके से अपने तरीके से सिखाता है उसकी भाई बात अलग ही होती है। हमारे साथ एक हमारे अभी एक लिसनर जुड़े हैं, नईम साहब, चलिए उनसे बात करते हैं, उनकी भी पहली राइड की बारे में मुलाकात करते हैं उनसे। नमस्कार दिल से दिल तक, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छा हूँ सर, आप सुनाओ सर, आप ठीक हो?
0: बढ़िया साहब, नईम साहब बढ़िया। क्या कर रहे हैं इस समय?
1: जी मैं घर में बैठा हूँ, तो आपका शो मोबाइल के जरिए सुन रहा था, तो सोचा कि आपके साथ बात करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: चलिए चलिए, और क्या करते हैं नईम साहब आप?
1: जी बिजनेस करता हूँ, पैन मार्बल सीमेंट पैक और सीपी की जो सामान वही बेचता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: अपने गांव में, यहाँ मेरा कश्मीर के अंदर जिस जिले में हम रहते हैं

0: जगह से जुड़े हैं, और कश्मीर का नाम सुन के तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ठंड लगने लगती है तो थोड़ा सा जो गर्मी वाला मौसम है, नाम सुनते के साथ ही ना, कहते हैं ना कभी कभी किसी का नाम सुन के कुछ होते ही एहसास हो जाता है, तो मेरे लिए तो कश्मीर का नाम सुनते के साथ ही मुझे हल्का सा ठंडकपन का एहसास हो जाता है।
1: तो तुम्हारे लिए मैंने एक शेर भी ढूंढा था।
0: बताइए साहब, जरूर जरूर।
1: कहते कि तुम पास है फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम पास है फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी बहुत याद आती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया शायर था आपका। तो आज हमारी नईम साहब बात चल रही थी कि आपकी पहली राइड कैसी होती है, पहली राइड आपने कौन सी की थी, क्या पहले साइकिल खरीदी थी या पहले बाइक ली थी, या होता है ना कभी कभी तो गांव में तो आज भी टायर को घुमाते रहते हैं डंडी से, तो मेरे लिए तो वो भी पहली राइड ही है मेरी, तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ था?
1: मेरे भी पहली वही टायर घुमाया था जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 5-6 साल का था, और उसमें मैंने बहुत एकदम टायर चलाते थे, वो डंडे से चलाते थे, बहुत गिरते थे, और सभी बच्चे चलाते थे, रोड पर चलाते थे, फिर घर वाले बहुत ढूंढते थे, घर वाले ढूंढते थे, उसके बाद बहुत ज्यादा डांटते भी थे कि आपके आप अपनी हालत देखिए, तुम्हारी हालत क्या है। लेकिन जब बड़ा हुआ तो सबसे पहले मैंने बाइक ली थी, तो बाइक का ड्राइविंग मैंने किया था, और सबसे पहले ड्राइविंग जो मैंने किया था बाइक पर, मुझे अभी भी याद है, यहाँ से सिर्फ 5-5.5 किलोमीटर में चला गया था, लेकिन इतना दिल में विश्वास था, मैं डर कर चला था कि कोई बच्चा ना आ जाए, कोई आदमी ना आ जाए, कोई गाड़ी सामने से आ जाए, जब याद आते जब सामने से कोई गाड़ी आती थी तो मैं कम से कम 5-8 मीटर पहले ही बाइक को रोक लेता था।
0: हाँ, तो ये तो यही कुछ यादें हैं जो याद रहती हैं। मेरे साथ भी ऐसी होता, जब मैंने पहली बार बाइक चलाई तो हमारे शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना था, और मैं वहाँ पे पहुँच गया, उसके आगे भी बाइक चलाता रहा, मतलब 5-6 किलोमीटर बाद याद आया कि अरे यार वो जगह तो पीछे ही थी, मतलब बाइक का ऐसा शौक था, चलाता रहूँ बाइक जब तक लगता ना फ्यूल चेक कर देंगे भैया पापा, अगर पापा पूछेंगे भी, घर वाले पूछेंगे भी, तो कहेंगे हम तो चेक कर रहे थे एवरेज कितना दे रही है बाइक।
1: हाँ सर, मीटर भी होता है ना, पता है, होता है ऐसी चीजें बचपन में, बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान जब बड़ा होता है तो उन बचपन की चीजों को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता भी है, क्योंकि ये बचपन बहुत मीठा बचपन होता है, क्योंकि एक बचपन जो बच्चे होते हैं या बचपन होता है उनका जो दिल होता है बहुत साफ ही होता है।
0: बिल्कुल सही बात कही नहीं साहब। अभी आप बाइक पे अकेले चलते हो, बाइक पे कोई है आपके पीछे हम सफर?
1: मेरी वाइफ होती है कभी कभी, जब मैं जाता हूँ ससुराल जाता हूँ मेरी वाइफ बैठती है, उसके बाद पापा भी कभी कभी बैठता है, और मुझे एक आदत है जब मैं चलता हूँ अगर रास्ते पे कोई चलता है तो मैं अपने आप को रोक देता हूँ कि आ जाओ मुझे कहीं जाना है, आप भी बैठो
0: सही है।
1: ऐसी चीजें मिलते हैं, ऐसी चीजें नहीं मिलते हैं दुनिया में, अगर एक दिन हमें दुनिया छोड़ना है।
0: बिल्कुल सही बात कही नहीं साहब। तो पहले आप अपनी फरमाइश बताइए, आज कौन सी फरमाइश का गाना आप सुनना चाहेंगे, आप आपकी दिल से कौन सी फरमाइश निकल रही है आज?
1: मुझे याद आ रहा है कि एक मशहूर एक्टर था हमारे देश में ही है, लेकिन एक्टर कभी मरता नहीं है, अच्छे इंसान कभी मरता नहीं, धर्म सिंह।
0: आज आपने बिल्कुल एकदम सच बात बोली है, एक्टर कभी नहीं मरता,
1: नहीं,
0: भले ही पर्दे पे कई बार हो जाए मगर वो अपनी हमारी असल जिंदगी में वो ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि कभी नहीं मरते।
1: हिटमैन थे, बहुत मशहूर एक्टर थे और काफी सारी हिट फिल्में दी उन्होंने इंडियन बॉलीवुड को, उनकी एक मूवी आई थी इज्जत।
0: हाँ जी,
1: उसमें क्या नाम है, ये दिल तुम दिल कहीं
0: लगता नहीं,
1: हम क्या करें।
0: बहुत ही बढ़िया गाना सुना है आपने, बहुत ही बढ़िया, मैं कहते हैं इसे दिल से ही निकला ये गाना आज आपके।
1: चलिए, दिल नहीं लगता है लेकिन।
0: धन्यवाद नईम साहब, आपने आज हमारे साथ संपर्क किया और अपने दिल की बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों हमारे साथ ये थे नईम साहब जो जुड़े हुए थे कश्मीर से, इस समय गर्मी का मौसम है तो कश्मीर का नाम सुन के तो आपको भी हल्की हल्की ठंडी हवा लगी रही होगी, और उनके दिल से आवाज़ भी निकली है इतने अच्छे गाने की, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। तो चलिए लेते हैं इसका आनंद और सुनते हैं इस गीत को।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
5: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
4: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: TNC अप्लाई।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।
9: वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, गाना गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं इसके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। इस गाने के बोल लिखे थे शाहिल लुधियानवी जी ने, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही मस्त, कहते हैं ना जिसे एंजॉय करते हैं हम कभी कभी गाते किसी गाने को और उसके बोल को, तो उन्हीं गानों में से एक यह है गाना। और अभी हमारे साथ मैसेज आया है संदीप जी का कि अखिल जी, मैंने पहली साइकिल जो है जब खरीदी थी तो मुझसे बैलेंस नहीं बनता था, और सामने ही मेरी गली के बाहर एक पनवाड़ी की शॉप थी, और मैं बार बार, मतलब 2-3 बार उसमें घुस गया था साइकिल चलाते चलाते, और वो बार बार अंकल हंस के मुस्कुरा के प्यार से कहते थे सीख जाएगा सीख जाएगा। हाँ तो संदीप जी, चलिए मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही आपके साथ सपोर्टिव थे वो पनवाड़ी वाले साहब, जो जिनके आप खोखे में घुस जाते थे 2-3 बार, घुस भी गए, उन्होंने बड़े प्यार से कह भी दिया आपसे कि भाई तू सीख जाएगा सीख जाएगा। अब तो आजकल तो आप गाड़ी चला रहे होंगे। और अभी हमारे साथ एक नए लिसनर जुड़े हैं, अमरजीत जी, चलिए उनसे बात करते हैं, उनके दिल की आवाज़ भी सुनते हैं। नमस्कार अमरजीत जी, कैसे हैं आप?
10: सबसे पहले सर आपको, तमाम सुनने वाले सभी मेरे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी।
9: नमस्कार जी, नमस्कार। और क्या हो रहा है अमरजीत जी?
10: भाई आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, कॉल भी लगा रहे थे, और कॉल भी लगी तो काफी अच्छा लग रहा है सर।
9: तो आप बताइए, आप क्या था आपके साथ, पहली साइकिल थी, पहली बाइक थी, ऐसी कौन सी राइड थी जो आपको याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाई?
10: सर अब तो बाइक तो खैर हमारे घर पे पहले से ही थी, और साइकिल तो और भी से पहले से थी, क्योंकि जब हमारे घर पे 2 साइकिल थी, हमारे पिताजी चलाते थे तो हम भी साइकिल से सीखे थे। तो सर साइकिल से तो अक्सर जब सीखते हैं तो काफी खुशी महसूस होती है, और अच्छा भी लगता है जब हम कोई भी काम को अगर नई तरीके से सीखते हैं तो उसमें खुशी महसूस होती है, और उसमें हमें तो ऐसी बात है चोट भी लगती है कोई भी काम सीखने में, क्योंकि आदमी गिरता भी है सर।
9: कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या अच्छी फर्स्ट डिविजन से पास हो जाएगा तो मैं साइकिल दिलाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि पापा ने कहा चलो मार्क्स अच्छे आए हैं लड़के के तो चलो एक साइकिल दिला दो? नहीं।
10: हाँ सर ऐसा भी हुआ है, क्योंकि हम जब साइकिल सीखे थे और जब साइकिल चलाते थे तो अगर कहीं को भी जाना होता था तो साइकिल से ही आ जाते थे, क्योंकि घर वाले मना भी कर रहे थे सर के साइकिल से मत जाओ, तो अक्सर जो है
9: चुपचाप निकल गए साइकिल उठाई चुपचाप।
10: तो सर एक बच्चा साइकिल चला रहा था, दूसरा 2 बच्चे उसके साथ में पीछे पीछे है, क्योंकि सर जब बच्चा होता तो बच्चा
9: आपकी क्या फरमाइश है, आपकी कौन सी दिल से फरमाइश निकली है आज सुनने के लिए?
10: आज मैं गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम रहेगा अचानक, और इसमें गीत के बोलेंगे ऊंची ऊंची दीवारों में हम घुट घुट के मर जाएंगे, तुमने जो ऐसा जान किया हम किसको जान बनाएंगे, ये सॉन्ग के लिए कर देना सर।
9: ठीक है ठीक है अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छा लगा।
10: थैंक यू सर, नमस्कार।
9: नमस्कार अमर जी। तो ये थे हमारे साथ अमरजीत जी, जो बताते हैं कि जब इन्होंने साइकिल चलाई तो ये साइकिल से, अगर घर वाले मना भी करते थे कि भैया आपको अभी नहीं जाना साइकिल से, तो चुपचाप साइकिल उठाई और निकल लिए। तो ऐसा तो होता है यार, मैं आज भी लगता है बच्चे अगर मना करो नहीं नहीं साइकिल से, नहीं नहीं मम्मी मैं तो इस मोड़ तक जाऊंगा, और भाई साहब पूरा पानी की टंकी तक घूम के आ जाएंगे। और इसी बात पे एक शायरी भी है, गिरकर जो संभलना सीख जाए वह ज़िंदगी की राह समझ जाए, पहली साइकिल ने इतना सिखा दिया कि मुश्किलों से डरना ही भूल जाए। बहुत ही अच्छा मैसेज आया हमारे पास ये उदित जी का। चलिए आप अमरजीत जी की ख्वाहिश भी पूरी करते हैं और सुनते हैं उनका पसंदीदा गाना।

0: हम किसको जान बुलाएंगे मूवी का नाम है अचानक, और म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं इसके दिलीप सेन। जो गाना गाया है वो गाया है हरी हरन साहब और अलका याग्निक जी ने। फिल्माया गया था गोविंदा जी के ऊपर। और हमारे साथ अभी एक मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि मैंने जब पहली बार बाइक ली थी, आदिल जी का मैसेज है ये असालतपुरा से, कह रहे हैं अखिल भाई मैं पहली बार जब बाइक ली और मैं शोरूम से लेके अपने घर पे लेके आया, खूब उसको दोस्तों वोस्तों को देखे, सब देखने आ गए मेरी पहली पल्सर बाइक को। और उसके बाद जब मैंने उसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट किया, जब उसे बटन दबाया तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बहुत देर तक मैं भी असमंजस में था, वो भी असमंजस, सभी लोग घर वाले भी कि क्या ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो एक लिखा इन्होंने पूरा, मतलब एक दो घंटे बाद मेरे को किसी ने आगे बताया कि भैया इसका इग्निशन वाला ऊपर जो बटन है वो आप ऑन कर लीजिए, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। तो होता है, कभी कभी हो जाता है आदिल साहब, ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी हुआ है और कई लोगों के साथ हुआ है। कभी कभी जल्दबाजी ऐसी होती है, किसी एक्साइटमेंट ऐसा होता है कि बाइक का इग्निशन का आजकल जो सब चल रहा है नया, पहले तो किक आपने मारी और स्टार्ट हो गई थी बाइक, आपने इग्निशन ऑन किया, मगर आजकल ऊपर से इग्निशन का एक बटन आ जाता है, जब तक आप उसे ऑन नहीं करेंगे तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी सेल्फ स्टार्ट से भी। तो चलिए बात करते हैं अपने एक नए लिसनर से और देखते हैं उनकी क्या रही बात। इशरत जी हमारे साथ जुड़े हैं। इशरत जी नमस्कार। इशरत जी दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: हेलो, दिल से दिल तक सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार इशरत साहब, नमस्कार
1: सर। आपने शो का नाम बहुत अच्छा रखा, दिल से दिल तक,
0: इसलिए रखा है क्योंकि कम से कम कुछ बातें दिल से निकले और सामने पहुंचे, दूसरे दिल तक तो पहुंचे। साहब ये तो है, मगर दिल में कोई चीज रखनी नहीं चाहिए, दिल खोल के हंसना चाहिए, पता चला कि आपको दिल ही खोलना पड़ रहा है।
1: हाँ सर, क्लियर करना चाहिए ना, बोल सही नहीं है, दिल ही दिल में इंसान घुट जाए।
0: तो ईश्वर जी क्या करते हैं आप?
1: शेयर करना चाहिए सर, 5 जानवर पालता हूँ, खेती किसानी काम करता हूँ, 4 भाई हैं, 3 भाई मेरे अलग हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब हम 3 जने, अम्मी और बहन, हमें अलग हैं।
0: तो अभी हमारे साथ आदिल जी ने, हमारे पास एक मैसेज अभी भेजा था आदिल जी ने कि वो पहली बार जब बाइक लेके आए शोरूम से और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, उनका स्पार्क ऊपर से इग्निशन वाला बटन जो है ऑफ रह गया और तब भी किक पे किक मार रहे हैं, सोचे नई बाइक लेके आया हूँ और चल क्यों नहीं रही है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नई साइकिल आपने ली हो, अच्छे मार्क्स आए हों, या पापा ने वादा किया हो, या कभी किसी?
1: साइकिल तो बचपन में इतना शौक था मुझे, खाना पीना सभी बंद हो जा रहा सर, हम मेल और फीमेल हम सुबह निकलते थे, पढ़ाई लिखाई हमारी सभी बंद हो जा रही थी। इतना शौक था, कुछ याद है, हम बाग में चले जा कर रहे, हमारे पास में सवार है, चले जा कर रहे, मतलब घर वाले में देखते रह रहे थे, हर 8 दिन तोड़ना जोड़ना ये रहता था, घर वाले डांटते थे तुम्हें यही काम रहता है, कुछ और भी काम कर लो सर, बहुत ही ज्यादा शौक था साइकिल का तो सर।
0: चलो ये शौक ना, ये बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है हम लोगों के अंदर, अगर हमारे पास कोई भी नई चीज़ आ जाए और ख़ासकर साइकिल आ जाए तो साइकिल में तो चलाते रहो, पैडल मारते रहो, जितना आगे तक जितनी तेज चलाते रहो, बस ये रहता था कि बैलेंस बने और तेज़ी से जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँच जाए।
1: सर उस दौर में साइकिल रहती थी, हवाई जहाज, अब तो मतलब
0: अब तो साइकिल के भी बहुत सारे वो आ गए हैं, वेरिएंट आ गए हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल हो गई। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही अपनी भांजी की साइकिल चलाई थी तो मैं पैडल मारने लगा तो भांजी ने मेरे से बोला, अरे मामा इस पे ना ये इलेक्ट्रिक वाली साइकिल है, बस आप बटन दबाओ और जैसे बाइक चलाते हो वैसी ही चलाओ इसे बस।
1: सर पहले काफी मेहनत पड़ती थी, मेहनत से कोई काम नहीं रहा, सब आजाद काम हो गए सर, घर में भी बाहर भी।
0: ये बात तो आपने सही
1: कही सर, पहले का दौर सर कुछ और था, अब तो मतलब कुछ और है।
0: तो आज आपके
1: अब तो ये जोड़ी कपड़े भी है ना,
0: हाँ जी,
1: घर की औरतें मतलब ये चादनी के मशीन में धोने, नल पे बैठने नहीं चाहती हैं।
0: जितना आसान कर दिया है इसके जीने को, तरीके को जितना आसान कर दिया है, वो चाहते हैं कि उसी आसानी में सब निकल जाए आसान।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप बताइए आज क्या दिल से कौन सा गाना निकला है आपके, बताइए हमें।
1: सर अब तो दुनिया चेंज हो गई, मशीनें भी चेंज हो गई, इंसान भी चेंज हो गए, वो दौर भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज ही है।
0: कोई नहीं साहब, आप दिल वही रखिए, कुछ चेंज नहीं होने देंगे, पुराना दिल रखिए अपने साथ, वही वाला दिल ईश्वर साहब जो दिल खोल के हंसता।
1: तो मैं देख रहा हूँ कोई भी किसी का नहीं है इस दौर में, बस अपना हो जाए जो भी है।
0: चलिए कोई नहीं, अभी
1: देख ही
0: जो
1: नहीं रहा था,
0: जो
1: बहुत कम
0: जिसका
1: देख रहे
0: नहीं है
1: हैं
0: उसे वहीं
1: आजकल।
0: छोड़ दीजिए, हमें तो अपना देखना है ना अरशद साहब। तो अभी
1: अरे
0: बताइए,
1: अपनी
0: आप
1: अपना
0: अपने
1: अपनी अपना
0: अपने
1: हो
0: दिल
1: जाता
0: का
1: है, इंसान
0: गाना
1: अपना
0: बताइए।
1: देखेगा तो क्या देखेगा, पहले औरों को देखे इंसान फिर अपना देखे। मगर आज के दौर में अपना ज्यादा देख रहे हैं कि अपना हो जाए, दूसरा कहीं पे भी जावे,
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: है नहीं
0: अभी
1: है सर।
0: अभी आपके दिल से देखो, अब तो अभी हम आपके दिल का देख रहे हैं ना, तो अपने दिल का गाना बताओ, आप कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: सर मैं आज ये सुनूंगा, मूवी का नाम है ऐलान, सुनना
0: ऐलान।
1: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। सुबह हुई शाम हुई दिल ने तुझको याद किया।

चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर साहब हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बात शेयर करने के लिए। नमस्कार ईश्वर जी। तो श्रोताओं हमारे साथ थे ईश्वर साहब और आज उन्होंने अपने दिल से बात बोली कि क्या कहते हैं साइकिल जब वो चलाते थे तो उनका मन नहीं भरता था और मम्मी पापा से खूब डांट खाई है उन्होंने भी। सभी की तरह वो भी उस लाइन में रहे कि भैया कहाँ चला गया तू साइकिल लेके। उसी बात पे एक शायरी याद आई, हवा से बातें करती वो पहली राइड, हवा से बातें करती वो पहली राइड, दिल में भर देती नई सी प्राइड। रास्ते छोटे थे मगर एहसास थे बड़े, यादों में आज भी जिंदा है वो मेरी पहली राइड। तो आप सभी की वो अपनी अपनी पहली राइड याद रही होगी और आज भी। अभी एक मैसेज आया है दिलीप जी का। दिलीप जी कहते हैं कि मैंने अपनी बाइक जब ली थी और जब पहली बार टैंक उसका फुल कराया था तो मैं खुशी के मारे पगला सा गया था। हाँ साहब, आज भी अगर हम टैंक फुल करवा लेते हैं बाइक का या उसका तो हम भी खुशी से हमारे पगला जाते हैं। वो दौर में अभी कोई चेंज नहीं है। चलिए तब तक ईश्वर जी का ये गाना सुनते हैं, सुबह हुए शाम हुए दिल ने तुझको याद किया।

0: सुबह हुई शाम हुई दिल ने तुझको याद किया, मूवी का नाम था ऐलान और सिंगर थे इसके कुमार शानू साहब और साधना सरगम जी, म्यूज़िक दिया था अनु मलिक साहब ने। तो इशरत अली जी की फरमाइश थी, उनकी दिल से आवाज़ निकली थी। और अभी हमारे पास हमारे एक नए श्रोता हमसे जुड़े हैं, चलिए उनकी भी सुनते हैं दिल से दिल की बात। नमस्कार अनुज जी, कैसे हैं आप? दिल से दिल तक अखिल संग।
1: बहुत अच्छा अखिल भाई, आपका फोन आ गया,
0: और
1: बन गया मेरा।
0: और क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: इस समय मैं, आपको तो पता ही है कि बैंक का काम तो होता ही है, थोड़ा सा पेरेंटल बिजनेस भी है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो बैंक से थोड़ा समय मिलता है तो थोड़ा सा वो देखते हुए कहीं से आ रहा था, और अचानक आपकी FM पे आवाज सुनी, मैंने आपको फोन किया। And it's a great pleasure for me कि आपने तुरंत ही मुझे लाइव कर दिया।
0: तो अनुज जी, आज हमारी बात चल रही है नई राइड और नई, कहते हैं ना जब भी कभी नई साइकिल आए नई बाइक आए, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप जरूर अपना शेयर करें कि जब पहली बार साइकिल राइड करी थी या पहली बाइक राइड करी थी तो कैसा लगा था आपको?
1: मैं आपको क्या बताऊं कि आपने मुझे मेरे पिताजी की याद दिला दी।
0: बताइए साहब, हम सब सुनना चाहते हैं।
1: एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि बड़े भाई साहब के साथ हिंदू इंटर कॉलेज में जाते थे, आगे बैठ जाते थे, आपको तो पता ही हो वो जमाने क्या थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: आगे आराम से डंडे पे बैठ जाते थे, भाई साहब चलाते रहते थे, हम ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते रहते थे। जैसे कि 8वीं क्लास में आए हम।
0: हाँ जी।
1: तो 8वीं क्लास में जब आए तो हमें एहसास हुआ कि हमारे भाई साहब ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है।
0: अच्छा,
1: 12वीं की परीक्षा पास कर ली है।
0: अच्छा, वो तो सर एकदम, उस समय तो ऐसा होता था 12वीं की परीक्षा करने जैसे बहुत बड़ा, हमें सबको अवार्ड मिल जाए।
1: मतलब 12वीं की परीक्षा उन्होंने पास करी तो हमारी ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने बंद हो गए। अब आप समझिए क्यों?
0: क्यों?
1: क्योंकि तब तक हमने साइकिल चलाना
0: सीख लिया था।
1: तो हम बोले अपने भैया से,
0: हाँ जी,
1: कि बोले भैया आपने हमें धोखा दे दिया।
0: हाँ।
1: भैया बोले कि धोखा कैसे दे दिया।
0: हाँ।
1: धोखा कैसे दे दिया? धोखा धोखा ऐसे दे दिया कि बोले आप तो पास आउट कर गए और हमें कौन लेके जाएगा डंडे पे बिठा के,
0: अब आगे कौन डंडे पे बिठाएगा। हाँ जी।
1: तो बोले कि बेटा पापा ने अब हमें नई साइकिल दिला दी है, तो वाली जो नीली वाली साइकिल है वो आपके लिए अवेलेबल है।
0: ये तो मन मन में
1: आपको याद होगा कि पहले साइकिल चलाने से पहले, जैसे गद्दी पे बैठने से पहले क्या सीखी जाती थी अखिल भैया?
0: गद्दी पे
1: क्या बोलते थे उसे?
0: नहीं नहीं, गद्दी पे बैठने से पहले,
1: जैसे गद्दी पे तो बाद में बैठते थे।
0: हाँ हाँ।
1: गद्दी पे बैठने तो प्रमोशन माना जाता था। तो क्या चलाते थे? कैची।
0: कैची, हाँ।
1: मतलब कई लोगों ने पैर भी दे दिए अपने उसमें।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल पुरानी, आपसे बात करके वो सारी जो है।
1: तो अखिल भैया हमने क्या, अब तो हम बड़े हो गए अर्थ में, तो अब हम कैची नहीं चलाएंगे।
0: हाँ, हम सीधे साइकिल।
1: हम अपने लोकेलिटी में,
0: हाँ,
1: एक एक्सेप्शन थे, अपवाद थे। हाँ। कि हमने कैरियर पे बैठ के साइकिल चलानी सीखी।
0: अरे साहब,
1: लोग पीछे किसी को बिठा लेते थे या सामान रखते थे।
0: हाँ, वो भी
1: हमें देख के हंसते थे, बोले यार ये गद्दी पे बैठ के क्यों नहीं चलाता। लंबाई आपको पता ही है हमारी।
0: हाँ, लंबाई तो है ही आपकी।
1: तो ऐसे करके हमने साइकिल चलाना सीखा। फिर हमारे भाई साहब एक दिन आए, बोले कि भैया तुमने तो बहुत ही हमारी हंसी उड़वा रखी है। तो कह रहा है कि तुम्हारा भाई तो बड़ी अजीब तरीके से साइकिल चलाता है, इतना लंबा होने के बावजूद गद्दी पे नहीं बैठता। तो आप सुन के हंसोगे कि हम पहले कैरियर चलाते चलाते फिर गद्दी पे बैठते थे।
0: नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आज आपसे बात करके अनुज भैया एकदम ऐसी बातें याद, सबके मतलब जो भी सुन रहा होगा
1: हमारे मित्र साथ में।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: उनकी आवाज भी सुनाना चाहता हूँ।
0: हाँ जी,
1: शिवा वर्मा जी है हमारे साथ।
0: हाँ जी।
1: और मेरे छोटे भाई जैसे ही है।
0: अच्छा जी।
1: तो उन्हीं को पसंद है ये गाना।
0: अच्छा।
1: गुलामी पिक्चर का इन्हीं के बोल सुनवाना चाहूंगा, यही बोलेंगे कुछ। नमस्कार अखिल भाई।
0: नमस्कार सर। नमस्कार। सब बढ़िया सर, बढ़िया
1: सर। बड़े भाई ने आपने एक रिक्वेस्ट करी है, वो सिर्फ मेरी खातिर ही करी है।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर आप अपने बोल से एक आध लाइन गुनगुना दीजिए। शिवम जी
1: गुनगुना दो। शिवम जी गुला में मस्ती मुकुम्बर अंदेश, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
0: क्या बात है।
1: जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल। इनकी इनकी तरफ से अखिल भाई ना, मैं थोड़ा मनाना चाह रहा था।
0: नहीं नहीं सही, क्यों नहीं क्यों नहीं, गुनाही है।
1: शिवाजी कह रहे हैं कि मैं बेच रहा हूँ, तो उनके ब्याह पे मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ।
0: हाँ जी।
1: कभी कभी शाम ऐसे ढलती के जैसे घूंघट उतर रहा है, तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा
0: है। क्या बात है, क्या बात है।
1: तो मैं सुनना चाहता हूँ, और मैं आपको अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ कि आप ने मुझे फोन किया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमसे जुड़े, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पुरानी बातें ऐसी ही याद
1: जुड़ते रहेंगे। आप मेरे छोटे भाई हो, जब आपका मन आए मुझे फोन करो, आप मुझे कनेक्ट कर लो।
0: जरूर जरूर
1: कुछ सुनाएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे शेर।
0: धन्यवाद अनुज भैया, धन्यवाद।
1: ठीक है, आप गाना सुनवा दीजिए।
0: ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अनुज जी, जो आज जिन्होंने अपनी सारी पुरानी बातें हमें बताई, और कहीं ना कहीं वो हम सब से कहीं ना कहीं को रिलेट होती हैं। जो भी सुन रहा होगा वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी बातों में, यादों में खो गया होगा कि किस तरीके से साइकिल के आगे वाले डंडे में बैठ के जाने का मज़ा ही कुछ और होता। और बड़ा भाई अगर साइकिल चला रहा हो तो वो तो सोने पे सुहागा है एक तरीके से, कि हाँ भाई छोटे चल बैठ और चलते हैं। तो चलिए सुनते हैं अनुज जी की एक फरमाइश, आज उनके दिल से निकली हुई आवाज़ को।

तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, गाना गाया है लता मंगेशकर और शाबिर कुमार जी ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और इस गाने के बोल लिखे थे गुलजार साहब ने। तो दोस्तों, अभी हमारे पास एक मैसेज आया है, और ये है आदित्य जी रामगंगा विहार आशियाना से। उन्होंने एक शायरी लिखी है, पापा के कंधों का सहारा था, हर सफ़र में उनका इशारा था, आज गाड़ी अपनी है लेकिन सबसे प्यारा वो स्कूटर वाला ज़माना था। बहुत बढ़िया साहब कही है आपने आदित्य जी। हमारे पास और एक मैसेज आया हुआ है, वो कहते हैं कामिल रामपुर जी से, जिला रामपुर ग्राम खेड़ा, तुमको तो जान से प्यारा बना लिया, दिल का सुकून आँख का तारा बना लिया, अब तुम साथ दो या ना दो ये तुम्हारी मर्ज़ी, अब तुम साथ दो या ना दो ये तुम्हारी मर्ज़ी, हमने तो तुम्हें ज़िंदगी का सहारा बना लिया। क्या बात है कामिल साहब, आपने बहुत ही अच्छी शायरी लिख के भेजी। और ये कामिल साहब हमें मैसेज करते ही रहते हैं, जब भी हमारा शो होता है तो इनका एक मैसेज हम पे शायरी वाला आ ही जाता है। हमारे पास एक हमारी नन्ही सी लिसनर है गुंजन जी, बहुत छोटी सी लिसनर है, लीजिए अभी कॉल आ ही गया है उनका, उन्हें हम लाइन पे लेते हैं। हेलो, दिल से दिल तक गुंजन जी, कैसी हैं आप? साइकिल पे बैठी हैं आप अपनी? घर पे हो, साइकिल चलाती हो आप भी? तो कौन सा गाना सुनना है साइकिल पे बैठ के आपको? ठीक है, तो जब ये गाना प्ले होगा तो थोड़ा सा डांस भी करना होगा घर में, ठीक है? ठीक है, गुड नाइट। तो ये जुड़ी थी हमारे साथ छोटी सी गुंजन जी, जो बहुत देर से मेरे को कॉल कर रही थी, बाबा कह रही थी कि अखिल भैया मेरा ये वाला गाना कच्ची कली मासूम चेहरा साड़ा मासूम चेहरा प्ले कर दीजिएगा। तो गुंजन जी, ज़रूर आपका ये जो है गाना हम प्ले करते हैं, और छोटी सी साइकिल पर अपने घर के अंदर घूमते रहना और खूब मस्ती से इस गाने को एंजॉय करना। तो आज जाने से पहले, आज हमने जो बात करी, पहली राइड, जो अपनी पहली राइड होती है सिर्फ एक सफ़र ही नहीं होती, वो एक एहसास होती है, एक याद होती है, एक कहानी होती है हमारे लिए। किसी भी पहली राइड में आज़ादी थी, किसी में दोस्ती थी, किसी में प्यार, किसी में परिवार का साथ। आप भी अपनी गाड़ी में अगर कोई राइड कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारजन के साथ, तो हमेशा एक ये याद में रह जाती है और याद आती है। कई इसी राइड में हम बैठ के एक दूसरे से अपने दिलों की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है स्पेशल हर एक राइड में। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुँचाते हैं, कुछ सफ़र यादों में बस जाते हैं, कुछ सफ़र मंजिल तक पहुँचाते हैं, कुछ सफ़र यादों में बस जाते हैं। पहली राइड चाहे जैसी भी हो, दिल के सबसे करीब रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको शो और ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जितने भी श्रोता हैं उनका दिल से आभार, जो उन्होंने अपने दिल की बातें हमारे साथ रखी, हमारे साथ दिल से जुड़े। अगर आपको भी कोई यादगार आपकी पहली राइड रही हो तो हमें ज़रूर आप मैसेज करिएगा, हम उसे कभी ना कभी शेयर करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक। अब मिलते हैं कल ठीक इसी समय 9 बजे, और करेंगे दिल से दिल की बात। 9837896896 इस पर कॉल करें और मैसेज करें और हमसे ज़रूर जुड़ें। तो चलने से पहले अब सुनते हैं ये आखिरी गाना इस शो का, कच्ची कली साड़ो मासूम चेहरा, हमारी छोटी सी गुंजन जी के लिए, उनके दिल से हुई निकली बात सभी के पास पहुँचने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास हेनु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटरबॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशुजनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरण

0: करणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी, तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर
2: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
3: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए,

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।